ਨਗਰ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾ ਉਕਰਾਇਦਾ।

ਸਾਰਿਆ ਜੀ ਕਰਾ।

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस बुधरे 9870 किलोवाट से तंहिं खां सवाइ तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप एंड डिफरेंट डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो। प्रोग्राम शुरू थी चुको आहे, डिटेल्स कुझु हिन तरह आहिनि।

भगत करम साहब जन जी सदाबार आवाज में कलाम दिलाई आकाशवाणी जी सिंधी सरसा है हिंसर पेश है तबसरो भारत लगातार पैंजे डेही न्यूक्लियर एनर्जी इकोसिस्टम ते अगते वधी रहा है जैमें संदस खास मकसद है जदीद रिएक्टर टेक्नोलॉजी तंखा अलावा SMR यानी कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स डेही तैयार करण की कौत खांगी खेत्र की भाईवारी ए लंबे अरसे लाए मुल्क के बे इंतहा थोरियम जखीरन के कतब आण साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सूबाई वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ताजो चयो त भारत के लंबे अरसे में न्यूक्लियर एनर्जी हिकमत अमली है जेका मुल्क के न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के टर्मिनेशन में अगते वधाईंदी तंहिंजो मकसद है पंहिंजे बे इंतहा थोरियम जखीरन जो लंबे अरसे लाइ इस्तेमाल करण तवानाई इस्तेमाल लाइ इन हिकमत अमली के अगते हथी मिली है जो साल 2025-26 के मरकजी बजट में न्यूक्लियर एनर्जी मिशन बाबत ऐलान किया वो तंहिंमें साल 2047 ताईं भारत के न्यूक्लियर

सोलर तवानाई को तके वधाए करे 100 गीगावाट इलेक्ट्रिकल ताई आंदो वेंदो। इन समय सरकार इन तरफे एक अप्रोच अख्तियार कई है तई में अचे तो वड़ी समत ते डेही रिएक्टर्स के अख्तियार करण मुकरर करण जो के 700 मेगावाट इलेक्ट्रिकल प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर तक अलावा जदीद रिएक्टर डिजाइंस ग्रीनफील्ड हाइवे लगाई वेंदी इन खां अलावा ब्राउनफील्ड लोकेशन से स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स लगाया वेंदा इनमें जो वे खारिज फॉसल फ्यूल बिजली घर तीन ते ये लगाया वेंदा इन खां अलावा ऑफ ग्रिड एप्लीकेशंस बुरहान में लगाया वेंदा। इन सब जो मकसद है साल 2030 ताईं घट में घट 5 SMR यानी कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के बरपा करण उनके कार्रवाई में पण आण। डॉक्टर जितेंद्र सिंह इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च के लगातार हलंदड़ कम के पण रोशनी में आंदो जंहिं भारत जे बी स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के अमल में आंदो वेंदो तंहिं में बहुतरफ़ी साइंटिफिक खोजना हली रही है। इन खां अलावा जदीद इंजीनियरिंग डेवलपमेंट हली रही है सोडियम कोल्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ते। सरकार जे कारण के रोशनी में आने बुधा वो तो एक वसीयत डोमेस्टिक डेही न्यूक्लियर इकोसिस्टम के अडो पे वहीं डॉक्टर सिंह चाहे तो शांति एक्ट 2005 जिनका पूरा फॉर्म है फुल फॉर्म है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया तरीका बरपा किया हुआ है जहां न्यूक्लियर क्षेत्र में भी खानगी अवामी कंपनियों के हिस्सों वठन लाइ हिमथाईंदी एटॉमिक एनर्जी जो खातो भारतीय हुनर के ज्ञान डेई करे हिमथाय रहो है तो नवन SMR टेक्नोलॉजीज में शरीक थे और सागे वक्त डेही न्यूक्लियर वेंडर्स के पण अडे रहो है तो जी खानगी खेत्र जे रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम के वधिक पुख्तो बनाए वजे शांति कानून तहत जे सुधार आंदा पे वन तन में खानगी खेत्र के एटमी मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग सेवान खोजना एंड डेवलपमेंट में हाथी पे बताया वही है और सागे वक्त न्यूक्लियर जे सलामती सुरक्षा बाबत सख्त स्टैंडर्ड अख्तियार किया पाया इन कानून तहत शांति कानून तहत एटमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के कानूनी दर्जो दिनों वो है जैसा एक मजबूत रेगुलेटरी ढांचो रहो। फोरम ते डॉक्टर जितेंद्र सिंह चयो त भारत पंहिंजे ट्रिनिसन वारी न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम खे अॻिते वधाए रहियो आहे तंहिं में पंहिंजनि यूरेनियम जे ज़खीरनि खे सुठे नमूने तबाहु वेंदो। भारत में यूरेनियम जा ज़खीरा बे इंतिहा आहिनि इहो हिकड़ो फर्टाइल मटीरियल आहे जंहिंखे तवाणी में कतब आणण खां अॻु में फिसाइल यूरेनियम 233 में कन्वर्ट कयो वेंदो आहे। भारत थोरियम खे कदम आणण लाइ अॻु में ई लगातार R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट ते कम करे रहियो आहे। थोरियम ऑक्साइड पैलेट्स तंहिंखे इनिशियली शुरू में प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स में कदम आंदो वेंदो हुन थोरिया ते आधारित ॿारनि खे पिण बाबा एटमिक्स रिसर्च सेंटर में खोजना रिएक्टर्स में कमु पियो आंदो वञे। हिन खां अलावा इरेडिएटेड थोरिया पिन्स खे पिण तयार कयो पियो वञे त जीअं यूरेनियम 233 खे हासिल कयो वञे। तंहिं करे सरकार जी हालत आहे कि डेही टेक्नोलॉजी खे तयार करे पंहिंजी न्यूक्लियर कैपेसिटी कोद खे वधाइण जंहिंसां हुन खे वसी समत ते हथी ॾिनी वेंदी शुमार कयो वेंदो। तव्हां तबसरो ॿुधी रहिया हुआ।

0: हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।
1: पेशा जनाब डोलन राय जो लिखियलु संगीत रूपक जंहिंजो उनवान आहे देश पंहिंजो राज पंहिंजो।

0: आज़ादी दुनिया के हर इंसान के बुनियादी हक है।
1: जनचित अधिकार है।
0: स्वर्ग के गुलामी का बेहतर है नर्ग की आज़ादी।
1: आज़ादी इंसान लाए सब का बड़ी नियामत है।
0: आज़ादी अकीदन जी।
1: आज़ादी सामाजिक रीतन रस्मन रवाजन जी।
0: आज़ादी सभ्यता संस्कृति की रवायतन जी।
1: आज़ादी धार्मिक मतन मंताओं जी।
0: आज़ादी रिश्तन नाथन जी।
1: आज़ादी इज्जत सा जिंदगी गुजारें जी।

0: लेकिन इंसान जी आजादी सब का वो दुश्मन भी इंसान ही आए
1: समाजवादी हवस इंसान की अंधो ए विवेकहीन बनाए छी
0: हू वैशानी ताकत जोर से जालिम बन जी कमजोर जी आजादी जोरी लुटे थो
1: खेस पैंजो गुलाम बढ़ाए संदस मेहनतों जो हक हड़पे थो
0: जबरदस्ती है पैंजे जेर दस्त जी असमत लुटे थो
1: पैंजे तन मन धन ते गुलाम जो अधिकार न थो रहे
0: डाढ़ जो डहका ए जुल्म जो जोर गुलाम जे हसरत ए जज्बात के घुटे थो छड़े
1: संदस आजादी जे अरमान के ऊसाटे थो छड़े
0: ए पोए गुलाम जे सीने में बगावत ई चिंग दबजी दबजी आखिर भंभट बनी भड़की उठे थी
1: ए वो आजादी लाए सिर त्रिये ते खड़ी मुकाबलो करे तो जुल्म ए डाठ सा
0: अन्याय ए अत्याचार सा
1: हिंदुस्तान जी आजादी जो लंबो इतिहास अजब साखी आए तकिए देश भक्तन अमीर शहीदन पेंजे खून था उन इतिहास जे हर लफ्ज के रंगीन सूरत दिनी
0: माताओं ने भेनरुन पैंजा पुत्र ए भावर घूरिया
1: भारत माता के सुहागन दिसण लाए सुहागन पैंजा सुहाग लुटाया
0: हर एक देशवासी सूर शक्ति सही कष्ट ए तकलीफू बर्दाश्त करे डाढ़ मुसीबतू बरसर करे ए जानी कुर्बान करे देश के आजाद कराए
1: एक तरफ गांधी जी अहिंसा जो अटल अचूक हथियार खयो
0: तबी तरफ सुभाष चंद्र बोस भगत सिंह आजाद हेमू कलानी जड़न महावीरन क्रांति झंडो झूलायो
1: तिलक पटेल ए नेहरू
0: आचार्य कृपलानी ए चौथाम बिटवाणी
1: कस्तूरबा विजय लक्ष्मी ए सरोजनी नायडू
0: दादा भाई नेहरू जी गोखले ए राजेंद्र प्रसाद जड़न देश भक्तन पैंजो तन मन धन घोरे पैंजे मातृभूमि के फ्रेंगिन जे फंदे का मुक्त करायो
1: हर भारतवासी जी लबन ते जड़ ही नगमो रक्स करण लगो

0: सदन जी गुलामी जो जंजीरू टूटियों बंद खलास थिया ए बंधन का मुक्ति मिली
1: वतन जो वागू वतन के वेहचन के मिलो ए धारियन के जालिम हुकूमत का निजात हासिल थी
0: देश की जनता के जनता जो अधिकार मिलो
1: मुरछायल मुखड़न ते मुर्क अंदर सरहाई नजर आई
0: 15 अगस्त सन 1947 में देश के पूर्ण आजादी हासिल थी लेकिन मुल्की मुदवरन अग्या इहो अहम सवाल हो त मुल्क में कहड़े सियासी सिरिश्ते हेठ हुकूमत कायम कई वे
1: राज जो वागू कैसे हथन में सौंपजन
0: राजा ए प्रजा के विच में कहड़ो सिरिश्तो जारी कजे
1: नेठ देश के सभी सुजाग सियासी नेताओं यकरार फैसलो कयो त आजादी के यज्ञ में वित आहार हर एक देशवासी आहुति दिनी आए
0: इन करे देश ए हुकूमत में हर एक भारतवासी यो हिस्सो होन घुर्जे
1: उन लाए छोड़े प्रजा के राज कायम करण की इख्तियारी दिनी वने
0: याने भारत में लोकशाही जो हुकूमती सिस्टम कायम कयो वने
1: जै मुजिब जनता ते जनता लाए जनता जरिए जनता जो राज कायम कयो वने
0: याने जनता जरिए चूंडियल एवजी जनता जी भलाई लाए कम कन
1: पाण के हाकिम पर खातिर समझी खुल्क जी सेवा कन
0: ए इन नजरिए मुजिब देश जो संविधान जोड़ियो हो बाबा साहब अम्बेडकर की सरपरस्ती हेठ
1: ए 3 साल के सख्त ओख डोख का पोए अजो के महान गणतंत्र डीह ते यानी 26 जनवरी 1950 में देश में वो संविधान लागू करे भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्म निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य जाहिर कयो वियो
0: जै मुजिब असा जो देश पांजे हुकूमत जो पान मालिक है ए मथुस भी कहें भी मुल्क या धुर जो आर्थिक या राजनैतिक दबाव ना है
1: असा जो देश हर लिहाज का आजाद आए जैमें हर एक देशवासी की सामाजिक धार्मिक आर्थिक राजनैतिक आजादी आए
0: अलबत जनता जे एवजन जे अक्सरत पारा ठहल कुछ वैधानिक नियमन मुजिब हर कहीं के हलनो आए
1: बोली प्रांत धर्म जात पात जे भेदभाव बिना असा जो संविधान हर एक देशवासी के समानता जो अधिकार दे थो
0: अलबत थोड़ा ये वारन जातियों संदन तरक्की लाए कुछ खास हक दिना वे आए
1: जी उहे भी उन्नति करे पैंजन बियन देशवासी भावरन सा कुल्हे सा कुल्हो मिलाए हलन जी काबिल पहुंचन

0: कैद तरफदार नीतिए जो अगवान ए जबरदस्त हामी आए
1: असि सजी दुनिया में खैर ए अमन चाहिन था
0: सजी विश्व सा दोस्ताना रिश्ता कायम करने जा कांखी आई
1: असि अहिंसा जो पुजारी आए हूं ए जंग जी हर कोशिश खां असा की नफरत आए
0: पर अहिंसा जो अर्थ कायता हरगिज ना है देश ये आजादी के महफूज

0: रखण जे फर्ज़ खां असीं कॾहिं बि मुंहुं न मोड़ींदासीं।
1: देश जे चौमुखी उन्नतीअ लाइ जी जान सां जाखोड़ कंदासीं।
0: पंज साली योजनाऊं ठाहे असां ज़रई, एटॉमिक, बिजली ऐं विज्ञान जे ॿियनि खेत्रनि में शानदार कामयाबी हासिल करे दुनिया जे अज़ीम मुल्कनि में पंहिंजो नालो चमकायो आहे ऐं अॻिते बि असीं पंहिंजे रोशन आईंदे लाइ ॾींहुं राति महिनत कंदासीं। छाकाणि त
1: गीता असांखे कर्म जो पाठ पढ़ायो आहे,
0: रामायण असांखे फर्ज़, इख़लाक ऐं आदर्श जो सबक सेखारियो आहे।
1: असीं भारतवासी पंहिंजे धर्म, कर्म ऐं फर्ज़ ते अटल ऐं अडोल आहियूं।
0: असीं सभ खां पहिरीं हिंदुस्तानी आहियूं ऐं उन खां पोइ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई,
1: सिंधी, गुजराती, पंजाबी,
0: राजस्थानी ऐं बंगाली,
1: महाराष्ट्री ऐं मद्रासी आहियूं।
0: असांखे पंहिंजे प्राणनि खां वधीक प्यारी आहे तंहिंजी आज़ादी। अॼु असांखे फ़ख़ुरु आहे भारत जे महान इतिहास ते,
1: रामायण, गीता ऐं वेदनि जी वाणीअ ते,
0: राम कृष्ण, गौतम ऐं गांधीअ जे महान मातृभूमिअ ते,
1: गंगा, मानसरोवर ऐं हिमालय जी विशालता, महानता ऐं पवित्रता ते,
0: अजंता ऐं एलोरा जी कला ते,
1: महाकवि सूरदास ऐं तुलसीदास जे अमर काव्य ते,
0: टैगोर ऐं ग़ालिब जे लासानी शायरीअ ते,
1: राष्ट्रपिता महात्मा गांधीअ ते ऐं राष्ट्र नायक जवाहरलाल नेहरू ते,
0: जिन असांजी जनम भूमिअ जो शान सारी दुनिया में बुलंद कयो आहे।
1: अॼु हर हिंदुस्तानीअ जे हीअ मां हे चमझा झरणे जा फुटी निकितो आहे हे मधुर गीत।

जनाब डोनल जो लिखल संगीत रूपक बुधरिया जो उनवान हो देश पैंजो राज पैंजो तंखे प्रोड्यूस क चंद्र सिंह नावाणी इनमें भाग वठंदड़ कलाकार हुआ कमला केसवाणी कौशल्या किरपनाणी लता गुप्ता गुरदास मल किशन कुमार ए सोमन लाल आकाशवाणी की सिंधी सर्विस बुधरा 9870 किलोवाट से खास खास खबरों मामलन के वजीर डॉक्टर एस जयशंकर नई दिल्ली में पैंजे लैबरेंट सानी सारा बैसलर नैंती से मितरफियों गालू क्यों जमात सलामती काउंसिल की एक रिपोर्ट दिल्ली में लाल किले से थियल बम धमाके के अलकायदा के ऑफशोर से जुड़ो है। नेपाल में एक जमीन खिसकने के वाके में 7 मानू मार पंज गायब थी वह जमीन खिसकने जो वाक्य रोलपा जिले में दर्ज किया वो कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भारतीय टीम 35 ब्लॉक हटाया तहमें 13 सोने जा बिलाया

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस मुद्रे 9870 किलोवाट से तेखन सवे तमा आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस वॉइस ऑन एयर मोबाइल ऐप एंड डीडी फ्री डिश ते बुझी सघंदा आहियो। हींअर असांजे प्रोग्राम जो वक़्त पूरो थी रहियो आहे। वरी हुन सां मुलाक़ात थींदी सुभाणे सुबुह जो, यानी कि भारतीय वक़्त मुताबिक़ 6:30 बजे। तेसिताईं ॾींदा मोकल सदाईंकर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा, जिसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है। एक रिपोर्ट।
1: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। यह दिवस आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद दिलाता है। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया।

0: और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कल विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में विभाजन की त्रासदी झेलने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर कल हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृह मंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देशभर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। मुंबई के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के कैडेटों ने शहर के फोर्ट क्षेत्र में मार्च निकाला। भोपाल में 350 से अधिक नौकाओं पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि यह व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेन हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेगी। लालकिला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल के सबसे नजदीकी स्टेशन है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलो नयांती के बीच नई दिल्ली में कल द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा तथा तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने क्षमता निर्माण और लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने पर भी बल दिया। नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने कल विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस नई उड़ान से विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा अम्मा मंदिर और वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बीच तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस हवाई सेवा से दोनों धार्मिक शहरों के बीच यात्रा सुविधाजनक बनेगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। ये केंद्र भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को अनुभव करने, समझने और उससे जुड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड में चमोली जिले के पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना स्थल पर कल भूस्खलन और पानी के रिसाव से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 घायल हो गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सुरंग में 22 मजदूर फंसे थे। इनमें से 20 को बाहर निकाल लिया गया है और 2 की तलाश जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी एजेंसियों को राहत और बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा की संभावना है। पश्चिमी यूरोप का एक बड़ा हिस्सा भीषण गर्मी की चपेट में है। वहीं ब्रिटेन में इस असामान्य गर्मी की 5वीं लहर आने की आशंका है, जिसे अब तक की सबसे भीषण गर्मी माना जा रहा है। मौसम विभाग ने मध्य और दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड में पारा 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. President Draupadi Murmu will address the nation today on the eve of the 80th Independence Day. The President's address will be broadcast at 7 p.m. on the entire national network of Akashwani. It will also be telecast on all channels of Doordarshan in Hindi, followed by the English version. The telecast of the address in Hindi and English on Doordarshan will be followed by its broadcast in regional languages on the regional channels of Doordarshan. Akashwani will broadcast the regional language versions of the address at 9:30 p.m. on its respective regional networks. Today is Partition's Horrors Remembrance Day. The nation is paying homage to all those who sacrificed their lives and suffered unimaginable pains during the partition in 1947. We have a report.
0: To mark the Partition Horrors Remembrance Day, various programs are being organized across the country, including in the national capital. In a fitting tribute to all those who lost their lives due to the partition of the nation and were displaced from their roots, in 2021, the government had decided to observe 14th August every year as the day to come.

संगीतिका कार्यक्रम में आप सुन रही हैं अमृता जोशी के गाए भजन। आइए अब सुनते हैं स्वामी रैदास की रचना, बोल हैं दर्शन दीजिए राम।

सुनते हैं एक और पारंपरिक रचना, मैया चलो दीना पार हमारे अंगना, आवाज अमृता जोशी की।

संगीतिका कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अमृता जोशी के गाए भजन। आपका साथ दिया था सितार पर अकील अहमद ने और तबले पर आपके साथ संगत कर रही थी पशुपतिनाथ। इसके साथ ही संगीतिका कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर 7:30 हुए जाते हैं। अब वक्त है कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग का। आज के इस कार्यक्रम में आपका साथ दे रहा है आप ही का दोस्त नवीन सक्सेना। बहुत ही खूबसूरत गीतों के गुलदस्ते के साथ शुरू करते हैं आपका ये पसंदीदा प्रोग्राम।

न्यू ईयर आने से पहले हम भी एक कसम लेकर आते हैं कि बहुत ही खूबसूरत गीतों और बहुत मजेदार बातों के साथ आपका स्वागत करेंगे, आपसे बातें करेंगे। अच्छा, कभी आपने जादू के बारे में सुना है या जादू कभी आपने देखा है? पता है ना, कब कौन सा जादूगर चिड़िया बना दे, कब कौन सा जादूगर चिड़िया उड़ा दे। जिंदगी एक जादू की तरह है, कब कौन सी खुशी आपके पास आ जाए और कौन सी खुशी आपके सामने से फुर रोके उड़ जाए। तो जो है उसको खूबसूरत तरीके से जिए, मुस्कुरा के जिए, क्योंकि ये पल दोबारा नहीं मिलेंगे। बहुत ही खूबसूरत गीत आपके लिए, फिल्म मन मंदिर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, राजेंद्र कृष्ण के लिखा गीत है, आवाज किशोर और लता की।

ये है ना बहुत जादूगर होती हैं, इन्हें संभाल के रखिए, क्योंकि अगर इधर से कुछ बात निकल कर आ गई ना तो फिर देखिए बात बहुत आगे तक बढ़ती है। शायर भी क्या खूब कहती हैं, आंखें बोलती हैं, वाकई आंखें बोलती हैं, लेकिन इन आंखों को ठीक रखना भी तो आपकी जिम्मेदारी है। और आंखों को ठीक रखने के लिए बहुत बेसिक सी चीज है कि सुबह सुबह आप फ्रेश एकदम निकलिए, घूमिए, घास के ऊपर टहलिए, अपनी आंखों का ख्याल रखिए और देखिएगा ये आंखें बोल देंगी। और जब ये आंखें बोलेंगी ना तो बहुत कुछ कह जाएंगी किसी से। थोड़ी सी रोमांटिक बातें हो रही है ना, तो चलिए अब आपको हम मोहम्मद रफी की आवाज में एक बहुत ही रोमांटिक गीत सुनवाने जा रहे हैं। शंकर ये किशन का संगीत है, हसरत जयपुरी की कलम से ये शब्द निकले हैं। फिल्म बहुत ही शानदार फिल्म है, 1964 में बनी फिल्म जिंदगी का ये गीत मैं आपको सुनवाने जाऊंगा। राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला ने इस गीत में एक्टिंग की है और खूबसूरत सा गीत आपके लिए।

तो घर से निकलने से पहले आज थोड़ा सा सोच लीजिए कि मौसम कैसा होगा. आपको जो जो चीजें करनी है आपने उसकी एक लिस्ट बना ली है, और एट द एंड ऑफ द डे आप इन सब से कितना खुश हुए कितना दुखी हुए. तो एक लिस्ट बना लीजिए और उसी लिस्ट में कुछ और बातें ऐड कर लीजिए, क्योंकि आज का दिन बहुत खास है. जानते हैं हर दिन किसी न किसी एक खास व्यक्ति से जुड़ा होता है, और आज का दिन जिन व्यक्तियों से जुड़ा हुआ है उनमें नाम आता है अमृत राय, प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंधकार, समीक्षक और अनुवादक. आज इनका निधन हुआ था, आज इनकी पुण्यतिथि है, और आज ही पुण्यतिथि है. बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही चुलबुले कलाकार जिन्हें हम कभी नहीं भूल सकते, जिनके गीत, जिनकी अदाएं, जिनके ठुमके, जिनका मूड और जिनकी लचक आज भी हमारे गीतों में और हमारे साथ जिंदा है. मैं बात कर रहा हूं शमी कपूर की. आज ही के दिन उनका निधन हुआ था, तो आज का ये प्रोग्राम बिना उनके गीत के हम कैसे कैसे आगे बढ़ सकते. बहुत ही खूबसूरत गीत है फिल्म जंगली का, सुनते हैं, मोहम्मद रफी की आवाज है और शमी कपूर है इसमें.

किसी का एहसान लेना कितनी अच्छी बात है कितनी बुरी बात है ये तो आप ही जानते हैं, लेकिन अगर किसी से एहसान लिया है तो भाई उसे चुकाने की भी तो कोशिश करो ना। कुछ बातें, कुछ गीत, कुछ नगमे और कुछ वाकयात ऐसे होते हैं जो खुद ब खुद आपकी जिंदगी से जुड़ जाते हैं। ऐसे बहुत से वाकयात आपकी जिंदगी से जुड़े होंगे जिसमें ना चाहते हुए भी आपको किसी से थोड़ा सा फेवर लेना पड़ता होगा, है ना भाई। जिंदगी में फेवर बहुत जरूरी भी है क्योंकि बिना इसके आप आगे बढ़ भी नहीं सकते। अगर सारी चीजें आप खुद ही कर डालोगे तो फिर दूसरों की जरूरत क्या है। बहरहाल वक्त अब मुझे बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है, कह रहा है कि मुझे इस प्रोग्राम को यही वाइंड अप करना होगा। बहुत सी बातें करनी थी, बहुत से गीत सुनाने थे, लेकिन आपको एक बार फिर मोहम्मद रफी की मखमली आवाज के साथ छोड़े जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं ये गीत आपको बेहद पसंद आएगा। इजाजत दीजिए अपने दोस्त नवीन को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे गीत भरे गुड मॉर्निंग और आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। 8 बजने को है, थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में, फिर अंग्रेजी में और फिर उर्दू में।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य
2: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। देश के बंटवारे के दौरान पीड़ा झेलने वाले लोगों की याद में आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली में अग्निशमन और कारागार विभाग में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को उपराज्यपाल की मंजूरी। आयु सीमा में भी मिलेगी छूट। उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन सुरंग में भूस्खलन और जल रिसाव से 7 श्रमिकों की मौत, 14 घायल। और पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना को हराकर कनाडा ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज

0: राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा, जिसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है। एक रिपोर्ट।
1: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। यह दिवस आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद दिलाता है। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर करने तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि हम विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद करते हैं। इतिहास का वो क्षण जिसने कई जिंदगियों को तहस नहस कर दिया, अपनों को खो दिया गया और असहनीय पीड़ा भी सहनी पड़ी। श्री मोदी ने कामना की कि ये दिन हमारे राष्ट्र में सद्भाव और भाईचारे को बनाए रखने के हमारे संकल्प को और मजबूत करेगा और हम सब मिलकर एक विकसित भारत के निर्माण की दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर कल हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृहमंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देशभर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। भोपाल में आज एक तिरंगा रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली कोलार 6 लेन रोड पर मदर टेरेसा स्कूल के पास से शुरू होगी और इसमें लगभग 32 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। आयोजकों को रैली में 1 लाख से अधिक लोग शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी रैली में शामिल होंगे। यातायात, पार्किंग, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों और नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इंकार कर दिया है तथा सीबीआई जांच और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल परीक्षा रद्द करने की अपनी मांगों को दोहराया है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए कल तिरंगा यात्रा निकालने की भी घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
2: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 21 दिनों से जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ धरना दे रहे अभ्यर्थी स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर अपने आंदोलन को एक नया रूप दे रहे हैं। छात्र कल राजधानी रांची की सड़कों पर एक भव्य तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं, जिसमें पूरे राज्य से हजारों युवाओं के जुटने की उम्मीद है। स्वतंत्रता दिवस समारोह और इस भारी छात्र विरोध को देखते हुए रांची जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। संवेदनशील इलाकों और छात्रों के तिरंगा मार्च के रास्ते पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। छात्रों की मांगे हैं 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरह रद्द किया जाए, पूरे मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच के आदेश दिए जाएं। सरकार राज्य की सीआईडी से मामले की जांच करा रही है और इस संबंध में जेपीएससी के एक पूर्व अध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम करकेट्टा।
0: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू होंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि यह व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेन हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। लालकिला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल के सबसे नजदीकी स्टेशन है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने अग्निशमन सेवा में फायर ऑपरेटर और कारागार विभाग में वार्डन और मैट्रन पदों पर सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। गृह विभाग के आदेश में उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट का भी प्रावधान है। गृह मंत्रालय ने पहले ही सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में कांस्टेबल और राइफलमैन स्तर के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए हैं। उत्तराखंड में चमोली जिले के पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना स्थल पर कल भूस्खलन और पानी के रिसाव से 7 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी एजेंसियों को राहत और बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी के साथ बातचीत में आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि आपातकालीन संचालन केंद्रों से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।
3: टनल का कुछ पोर्शन धंस गया है, उसमें पानी आ गया था और पानी आने के कारण लगभग 30 से अधिक लोग थे, जिसमें से सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है। रेस्क्यू के लोगों में 14 लोग जिंदा हैं और 7 को मृत घोषित किया गया है। वर्तमान में रेस्क्यू काम में थोड़ी सी बाधा हो रही है क्योंकि पानी लगातार आ रहा है।
0: विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलो नियांती के बीच नई दिल्ली में कल द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा तथा तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कल विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस नई उड़ान से विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा अम्मा मंदिर और वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बीच तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस हवाई सेवा से दोनों धार्मिक शहरों के बीच यात्रा सुविधाजनक हो जाएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए डिजिटल मुद्रा आज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में शुरू की जाएगी। ये पहल भारत सरकार द्वारा कल्याणकारी वितरण में एक नए विकास का प्रतीक है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: यह पहल भारत सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में एक और कदम है। सब्सिडी वाले अनाज के भौतिक वितरण से लेकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT और अब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC के जरिए डिजिटल डिलीवरी तक। सूत्रों के अनुसार चंडीगढ़ देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश होगा जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों के लिए खाद्य सब्सिडी के लिए CBDC आधारित DBT को पूरी तरह से लागू करेगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी विशेष अतिथि होंगे। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री निमूबेन जयंती भाई के अलावा केंद्र और राज्य के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहेंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। ये केंद्र भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को अनुभव करने, समझने और उससे जुड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। ओडिशा में कम दबाव के क्षेत्र के कारण लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है। उत्तरी ओडिशा की कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस महीने की 20 तारीख के आसपास एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है।
5: उड़ीसा में कम दबाव वाले सिस्टम की वजह से लगातार हो रही बारिश से कई जगहों पर बाढ़ के हालत गंभीर हो गए हैं। भद्रक के अखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान 18.33 मीटर से ऊपर बह रही है और इसका जलस्तर लगभग 19.27 मीटर तक पहुंच गया है। भंडारी पोखरी समेत नदी के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आ गई है और कई इलाके अलग थलग पड़ गए हैं। चंपुआ में बाढ़ के पानी ने एक पुल को बह दिया है जिससे सड़क संपर्क टूट गया है। इसी महीने की 20 तारीख के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने केरलम के 6 जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट और पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में सूती के रघुनाथपुर में एक भयावह हमले में 4 से 11 वर्ष की आयु के 3 बच्चों की मौत हो गई है। आरोप है कि 21 वर्षीय एक व्यक्ति ने चार बच्चों को अपने घर के एक कमरे में ले जाकर उन पर हसीये से हमला किया। और अब खेल समाचार। पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कनाडा ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। टोरंटो में फाइनल में कल सातवीं वरीयता प्राप्त स्वियाटेक ने दूसरी वरीयता प्राप्त एलेना रायबाकिना को सीधे सेटों में हराया। इस जीत के साथ इन्होंने सीजन का अपना पहला खिताब जीत लिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
6: धन्यवाद विशाल। संसद के मानसून सत्र का समापन आज सभी अखबारों की पहली खबर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, हंगामे के बीच धुला संसद का मानसून सत्र। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, न चर्चा न मंथन, सत्ता और विपक्ष की अड़ाअड़ी में बर्बाद हो गए जनता के 171 करोड़ रुपए। अमर उजाला लिखता है, संसद में हंगामे का ग्रहण, 19 बैठकों में 19 घंटे भी न चल पाई लोकसभा। संसद सत्र से निराशा शीर्षक के साथ हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है, मॉनसून सत्र उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। बड़े अफसोस की बात है कि सत्र के दौरान हर दिन कार्यवाही बाधित हुई। प्रश्नकाल का न होना सबसे बड़ी त्रासदी है। दिल्ली के लाल किला धमाकों की साजिश रचने में के बड़े खुलासे को भी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। दैनिक भास्कर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, लाल किला धमाकों में अलकायदा का था हाथ, स्लीपर सेल के जरिए रची थी साजिश। पैक्ड फूड पर चेतावनी लेबल को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का कड़ा रुख, हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। न्यायालय ने कहा, ज्यादा चीनी नमक और फैट वाले पैक्ड फूड पर चेतावनी लेबल लगाने पर सरकार फैसला लेने में विफल रही तो खुद दिशा निर्देश जारी करेंगे। हरियाणा में महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप को 7 साल तक मिलेगी जीएसटी से छूट। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, राज्य मंत्रिमंडल ने हरियाणा स्टेट स्टार्टअप पॉलिसी 2022 में किए बदलाव, 25 लाख निवेश करने पर सरकार भी मिलाएगी इतनी ही रकम।
0: धन्यवाद मुकेश। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। देश के बंटवारे के दौरान पीड़ा झेलने वाले लोगों की याद में आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली में अग्निशमन और कारागार विभाग में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी। उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन सुरंग में भूस्खलन और जल रिसाव से 7 श्रमिकों की मौत, 14 घायल। और पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना को हराकर कनाडा ओपन टेनिस महिला सिंगल्स खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Nishit Kumar. The headlines. President Draupadi Murmu to address the nation today on the eve of 80th Independence Day. Partition Horrors Remembrance Day being observed today. Delhi government approves 20% quota for former Agniveers in fire services and prison department. Age limit relaxed. 7 workers killed and 14 injured following landslide and water seepage in under construction tunnel in Chamoli district of Uttarakhand. And Iga Swiatek beats Elena Rybakina to claim the women's singles title at Canadian Open Tennis. And now the news in detail. President Draupadi Murmu will address the nation today on the eve of the 80th Independence Day. The President's address will be broadcast at 7 PM on the entire national network of Akashwani. It will also be telecast on all channels of Doordarshan in Hindi, followed by the English version. The telecast of the address in Hindi and English on Doordarshan will be followed by its broadcast in regional languages on the regional channels of Doordarshan. Akashwani will broadcast the regional language versions of the address at 9:30 PM on its respective regional networks. Today is Partition Horrors Remembrance Day. The nation is paying homage to all of those who sacrificed their lives and suffered unimaginable pain during the partition in 1947. We have a report.
1: To mark the Partition Horrors Remembrance Day, various programs are being organized across the country, including in the national capital. In a fitting tribute to all those who lost their lives due to the partition of the nation and were displaced from their roots, in 2021, the government had decided to observe 14th August every year as the day to commemorate their sacrifice. It also ensures that future generations remember the pain and suffering endured by the people as the birth of independent India was marked by the violent partition which left lasting scars on millions. The Partition Horrors Remembrance Day keep reminding people of the need to remove the poison of social divisions, disharmony and further strengthen the spirit of oneness, social harmony and human empowerment. The partition caused among the largest migrations in human history, affecting about 20 million people. While celebrating the independence, a grateful nation also salutes those people who had to sacrifice their lives in the frenzy of violence. Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
7: On Partition Horrors Remembrance Day, Prime Minister Narendra Modi has remembered the courage of all those who were impacted by partition. In a social media post, Mr. Modi termed the partition as a moment in history that tore apart several lives, where families were uprooted, loved ones were lost, and immense suffering was endured. Mr. Modi added that at the same time, people overcame this and rebuilt their lives from nothing, turned adversity into achievement, and contributed immensely to the nation's progress. Union Home Minister Amit Shah has paid homage to all those who lost their lives in the partition and to those who struggle against the atrocities on Partition Horrors Remembrance Day. In a social media post, Mr. Shah said that the day of 14th August 1947 stands witness to one of the most brutal chapters in history in which millions of people had to lose their lives and endure inhuman sufferings. A grand tricolor rally will be held in Bhopal today under Prime Minister Narendra Modi's Har Ghar Tiranga campaign. The rally will start at 10 a.m. from near Mother Teresa School on Kolar 6-lane road. It will cover around 32 kilometers and end at Bhaisa Khedi Mandi in Santanagar. Organizers expect more than 1 lakh people to take part in the rally. Chief Minister Dr. Mohan Yadav and BJP State President Hemant Khandelwal will join the rally. Special arrangements have been made for traffic, parking, security and crowd management. Arrangements have also been made keeping the possibility of rain in mind. Selfie points have been set up at several places including Chuna Bhatti. Services of the Delhi Metro will commence from all terminal stations across its network at 4 a.m. on Independence Day. The Delhi Metro Rail Corporation, DMRC, said that the decision has been taken to facilitate the movement of special guests, invitees and the general public attending the Independence Day celebrations. The DMRC said that the metro services will operate at a 30-minute frequencies on all lines until the commencement of regular revenue services as per the scheduled timetable for the day. The Lal Qila, Jama Masjid and Delegate metro stations are the nearest stations to the Independence Day celebrations venue. Delhi government has approved 20% horizontal reservation for ex-Agni Veers in direct recruitment to fire operator posts in Delhi Fire Services and warden and matron posts in prison department. The Home Department order also provides age relaxation for eligible candidates. It fits in with the policy of Government of India for rehabilitation of ex-Agni Veers. Union Home Ministry has already reserved 50% of the posts at the constable general duty and rifleman level in all the Central Armed Police Forces CAPFs and Assam Rifles for ex-Agni Veers. Squadron leader Bhavana Kant has scripted history by becoming the first woman officer of the Indian Air Force to qualify as a fighter combat leader at the Tactics and Air Combat Development Establishment, Gwalior. In a social media post, the Indian Air Force said it is a landmark achievement reflecting professional excellence, combat acumen, and the IAF's commitment to nurturing leaders in the air. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back to the morning news. In Uttarakhand, 7 people died and 14 sustained injuries following landslide and water seepage in an under-construction tunnel at a hydroelectric project site in Chamoli district yesterday evening. 21 people have been brought out of the tunnel. Of them, 7 were declared dead, while 14 others have sustained injuries and are undergoing treatment at a nearby hospital. We spoke to Vinod Kumar Suman, Secretary of the Disaster Management and Rehabilitation Department, about the latest update on the incident.
3: In Chamoli district, some portion of the tunnel was collapsed. There were around 21 persons in tunnel. All are rescued. 14 are alive and 7 are dead. District collector, SP Chamoli, senior officers of district administration, senior officers of TSDC and SCC, NDRF, SDRF, DDRF, CISF, persons are rescue, continuous work of rescue. Rescue work is going on. Situation is normal in the tunnel.
7: Our correspondent reports that the incident occurred at the Tehri Hydro Development Corporation's project site in Peepalkoti area.
2: Soon after the accident was reported, teams from the district administration, police, SDRF, NDRF, fire services and medical departments reached the spot. Chamoli district magistrate Gaurav Kumar also reached the site and supervised the rescue operations. The injured workers have been admitted to the district hospital in Gopeshwar. In view of their condition, base hospital Srinagar and AIIMS Rishikesh have also been kept on alert. Meanwhile, Chief Minister Pushkar Singh Dhami reached the State Emergency Operations Center in Dehradun late night and reviewed the relief and rescue operations. He directed officials to continue the rescue mission on a war footing with the safe evacuation of every trapped worker as top priority. The Chief Minister said that the state government stands firmly with the affected workers and their families and will provide all possible support. Sakshi Singh, Akashwani News, Dehradun.
7: The central bank digital currency CBDC Digital Rupee for the Direct Benefit Transfer DBT under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana will be launched in the Union Territory of Chandigarh today. We have more from our correspondent.
4: The initiative marks the next evolution by the Government of India in welfare delivery, from physical distribution of subsidized food grains to direct benefit transfer, DBT, and now to purpose-bound digital delivery through central bank digital currency, CBDC. According to official sources, Chandigarh will be the first union territory in the country to undertake a full-fledged rollout of CBDC-based DBT for food subsidy under Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana. Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan will be the chief guest. Union Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Prahlad Joshi, will be the special guest. Rajesh Bali, Akashwani News, Jalandhar.
7: Odisha remains on high flood alert as incessant rains triggered by low pressure system continues to swell major rivers, with the Baitarani and Bura Balanga posing a fresh threat in the northern districts. At Akuapara in Bhadrak, the Baitarani has crossed the danger mark, inundating downstream areas and marooning several villages in Bhandari Pokhare. Our correspondent reports that with another low pressure system likely around the 20th of this month, authorities are bracing for a further deterioration of the flood situation.
5: The flood situation in Odisha has turned critical at several places following incessant rain under the influence of a low-pressure system. The Baitarani is flowing above the danger level at Akuapada in Bhadrak, touching around 19.27 meters against the danger mark of 18.33 meters. Downstream areas, including Bhandari Pokhari, are witnessing fresh flooding, with several areas marooned. The rise of Budha Valanga River is also creating panic among the people living downstream of Mayurbhanj and Valeswar districts. Meanwhile, reports of flood-related diseases are emerging from marooned areas. Another low pressure area is likely over the Bay of Bengal around the 20th of this month, raising concern over a further worsening of the situation. Prakash Das for Akashwani News, Bhubaneswar.
7: The deep depression over the West Bengal coast is gradually moving west-northwestwards towards Gangetic West Bengal. We have more from our correspondent.
8: The deep depression over the West Bengal coast is gradually moving west-northwestwards towards Gangetic West Bengal. According to the latest reports, the system was located around 60 kilometers west of Kolkata and 50 kilometers east-northeast of Bednipur. The weather system is likely to bring heavy rainfall to several districts today. A yellow warning has been issued for east and west Midnapur, Jhargram, South 24 Parganas, Puglia and Pashchim Bardhaman. Squally winds of 40 to 50 kilometers per hour may occur at isolated places in South 24 Parganas and East Midnapur. Other districts of South Bengal are also likely to receive scattered rainfall. Fishermen have been advised not to venture to the sea until tomorrow. In North Bengal, heavy rainfall is focused in Jalpaiguri and Alipurduar district today. Shondipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
7: The agitation by students and job aspirants in Jharkhand over alleged irregularities in recruitment examinations entered its 21st day today. Protesters have refused to call off the stir and reiterated their demands for a CBI probe and cancellation of the Jharkhand Staff Selection Commission combined graduate level examination. The protesters have also announced a Tiranga Yatra on the 15th of August to strengthen their agitation. In Canadian Open Tennis, 7-seed Iga Swiatek of Poland defeated 2nd-seed Elena Rybakina in straight sets to claim the women's singles title in Toronto last night. Swiatek captured her first title of the season with a swift 6-2, 6-3 win, giving her a confidence boost heading into the US Open. In men's singles, American tennis player Ben Shelton won the title in Montreal by defeating fellow American Brandon Nakashima with a score of 6-3, 7-6. With this victory, the 5th-seeded Shelton successfully defended his tournament crown and captured his second career ATP Masters 1000 trophy. This victory marks his 4th tournament win of the 2026 season following earlier titles in Dallas, Munich and Stuttgart, bringing his total career tour level titles to 7. India emerged as the overall champion of the Commonwealth Fencing Championship by winning an impressive 35 medals after 4 days of competition held at Lagos in Nigeria. And now for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
2: Thank you, Nishit. News of monsoon session of parliament ending with record low productivity is carried prominently by all the leading dailies. Parliament clears Mines and Minerals Amendment Bill, restricts states' powers, writes the statesman. Akali Dal leader Sukhbir Badal attacked in Nanded, Maharashtra, sustains hand injury, is the front page story in the Indian Express. All Air India pilots to undergo mandatory dope test, says the Asian Age. Jharkhand cops file FIR over August 10th march of students to the assembly, says a report in Hindustan Times. Delhi Metro to start services at 4 a.m. on Independence Day, says a report in the Tribune. Succession search starts at Tata Sons after Chandrasekhar's exit, headlines Financial Express. And finally, historian Sumit Sarkar passes away, reports the Times of India. And with that, it's back to you, Nishit.
7: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu to address the nation today on the eve of 18th Independence Day. Partition Horrors Remembrance Day being observed today. Delhi government approves 20% quota for former Agniveers in fire services and prison department. Age limit relaxed. 7 workers killed and 14 injured following landslide and water seepage in under construction tunnel in Chamoli district of Uttarakhand. And Iga Swiatek beats Elena Rybakina to claim the women's singles title at Canadian Open Tennis. For details of this stories and more, you log on to our website newsonair.gov.in and newsonair app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 80वें यौमे आजादी से कबल आज शाम मुल्क के लोगों से खिताब करेंगी। आज मुल्क की तकसीम की हौलनाकी की याद का दिन मनाया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने फायर सर्विसेज और जेल महकमे में साबिक अग्निवीरों के लिए 20% कोटे की मंजूरी दी है और उम्र की हद में रियायत दी गई है। उत्तराखंड के चमोली जिले में सिरेतामी टनल में पानी के रिसाव और चट्टानों के टुकड़े गिरने के वाकये में 7 कारकुनों की मौत हो गई जबकि 14 जख्मी हुए। और कनाडा ओपन टेनिस में इगा श्यांटेक ने एलेना रिबाकिना को हराकर खवातीन सिंगल्स का टाइटल जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 80वें यौमे आजादी से कबल आज शाम मुल्क के लोगों से खिताब करेंगी। सदर जमहूरिया का ये खिताब आकाशवाणी के पूरे कौमी नेटवर्क पर शाम 7 बजे से नश्र किया जाएगा। दूरदर्शन के सभी चैनलों पर पहले ये खिताब हिंदी में टेलीकास्ट किया जाएगा और इसके बाद अंग्रेजी में होगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में इस खिताब के टेलीकास्ट के बाद दूरदर्शन के इलाकाई चैनलों पर इसे इलाकाई जबानों में नश्र किया जाएगा। इधर आकाशवाणी से भी सदर जमहूरिया का ये खिताब मुतालिका इलाकाई नेटवर्क पर रात 9:30 बजे इलाकाई जबानों में नश्र किया जाएगा। आज मुल्क की तकसीम की हौलनाकी की याद का दिन है। आज उन सभी लोगों को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है जिन्होंने साल 1947 में मुल्क की तकसीम के दौरान नाकाबिल तसव्वुर दुख और तकलीफ का सामना किया और अपनी जान कुर्बान कर दी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: तकसीम की हौलनाकी को याद करने के दिन के मौके पर कौमी राजधानी समेत मुल्क भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनाकिद किए जा रहे हैं। मुल्क की तकसीम के सबब अपनी जान गंवाने वाले और अपने आबाई वतन से बेघर हुए लोगों को खराज अकीदत पेश करने और उनकी कुर्बानियों को याद करने के लिए हुकूमत ने साल 2021 में हर साल 14 अगस्त को यह दिन मनाने का फैसला किया था। यह दिन इस बात को यकीनी बनाता है कि आइंदा नस्लें आजाद भारत के वजूद में आने के वक्त हुए तशद्दुद के दौरान लोगों के दर्द और मुश्किलात को याद रखें। आज का दिन लोगों को माशरती तकसीम इंतशार की लानत को खत्म करने और यकजहती समाजी हम आहंगी और लोगों को बाइख्तियार बनाने के जज्बे को मजीद मजबूत बनाने की जरूरत की याद दिलाता है। मुल्क की तकसीम के सबब इंसानी तारीख की सबसे बड़ी नकल मकानी हुई जिससे तकरीबन 20 मिलियन लोग मुतासिर हुए। आजादी का जश्न मनाकर मुल्क उन लोगों को भी सलाम पेश कर रहा है जिन्होंने तशद्दुद के दौरान अपनी जानें कुर्बान कर दी। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: तकसीम की हौलनाकियों को याद करने के दिन के मौके पर वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने उन लोगों की हिम्मत और हौसले को याद किया जो मुल्क की तकसीम से मुतासिर हुए थे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने मुल्क की तकसीम को तारीख का एक ऐसा लम्हा करार दिया जिससे लोगों की जिंदगियां बिखर गईं, खानदान उजड़ गए, लोगों ने अपने अजीजों को खो दिया और इंतहाई मुश्किलात का सामना किया। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि इसके साथ ही लोगों ने इस मुश्किल को बर्दाश्त किया और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू की, सख्तियों को कामयाबी में बदला और मुल्क की तरक्की में बेपनाह तआवुन पेश किया। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी की हर घर तिरंगा मुहिम के तहत आज भोपाल में एक बड़ी तिरंगा रैली का एहतमाम किया जा रहा है। ये रैली सुबह 10 बजे कोलार 6 लेन रोड से शुरू होगी और तकरीबन 32 किलोमीटर का फासला तय करते हुए संत नगर में खत्म होगी। इस रैली में 1 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। वजीर आला डॉ मोहन यादव और बीजेपी के रियासती सदर हेमंत खंडेलवाल भी इस रैली में शिरकत करेंगे। बारिश के इम्कान के मद्देनजर रैली के लिए इंतजाम किए गए हैं। चूना भट्टी समेत कई मकाम पर सेल्फी प्वाइंट भी बनाए गए हैं। इन मकाम के जरिए मनुष्यात की लानत के खिलाफ नौजवानों में बेदारी पैदा करने के पैगाम की तशहीर की जाएगी। कल यौम आजादी पर दिल्ली मेट्रो की खिदमत पूरे नेटवर्क पर सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह सवेरे 4 बजे शुरू हो जाएंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी ने कहा है कि यौम आजादी तकरीबात में शिरकत करने वाले खसूसी मेहमानों, मदू किए गए अफराद और आम लोगों की सहूलत की खातिर यह फैसला किया गया है। डीएमआरसी ने यह भी कहा है कि मामूल की खिदमत शुरू होने तक सभी लाइनों पर मेट्रो खिदमत आधे घंटे के वक्फे से चलेंगी। दिल्ली सरकार ने फायर सर्विसेज के शोबे में फायर ऑपरेटर ओहदों और जेल के महकमे में वार्डन और मेट्रन ओहदों पर सीधे भर्ती में साबिक अग्निवीरों के लिए 20% रिजर्वेशन की मंजूरी दी है। उम्र दाखिला के महकमे के हुक्म में अहल उम्मीदवारों के लिए उम्र की हद में रियायत भी दी गई है। यह कदम साबिक अग्निवीरों की बाजाबादकारी की मरकजी सरकार की पॉलिसी के अहम मुताबिक है। उम्र दाखिला की मरकजी वजारत ने साबिक अग्निवीरों के लिए पहले ही जनरल ड्यूटी पर काम करने वाले कांस्टेबल और सभी मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेज नीज आसाम राइफल्स में राइफलमैन सतह पर 50% ओहदे रिजर्व कर दिए हैं। ग्वालियर में टैक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ ने फायर कॉम्बैट लीडर के तौर पर क्वालिफाई किया है। इस तरह उन्होंने भारतीय फजाइया की पहली खातून अफसर बनकर तारीख रकम की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारतीय फजाइया ने कहा कि ये एक तारीखी कामयाबी है जिससे पेशावराना महारत, जंगी समझबूझ और लीडर्स की हौसला अफजाई के तई फजाइया के अजम का इजहार होता है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। उत्तराखंड के चमोली जिले में एक पनबिजली प्रोजेक्ट के मकाम पर जेर तामीर टनल में पानी के रिसाव और चट्टानों के टुकड़े गिरने के वाकये में 7 कारकुनों की मौत हो गई जबकि 14 जख्मी हुए। नजदीक के अस्पताल में जख्मियों का इलाज किया जा रहा है। हमारे नामा निगार ने बताया है कि ये वाकया पीपल कोटी इलाके में टिहरी हाइड्रोजन डेवलपमेंट कारपोरेशन प्रोजेक्ट मकाम पर पेश आया।
2: इस हादसे की इत्तला मिलते ही जिला इंतजामिया, पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर सर्विसेज और तिब्बी महकमे की टीमें वहां पहुंच गई। चमोली के जिला मजिस्ट्रेट गौरव कुमार ने वहां बचाव कार्रवाई की निगरानी की। जख्मी कारकुनों को गोपेश्वर के जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। इधर रियासत के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कल रात देर गए देहरादून में रियासत के एमरजेंसी ऑपरेशन मरकज में राहत और बचाव कार्रवाईयों का जायजा लिया।
3: जितने भी लोग हैं उनका रेस्क्यू जल्दी से जल्दी किया जाए, उसके लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन की टीम, हमारे यहाँ की पुलिस की टीम, स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन, सभी लोग मौके पर हैं। उसके साथ साथ सभी जो मशीनरी है वो मशीनरी भी वहाँ पहुंच गई है, वहाँ काम चल रहा है और जल्दी से जल्दी निकालने की सभी कार्रवाई चल रही है।
2: शमीर इरफान।
0: हवा के कम दबाव का हल्का बनने के तनाजुर में ओडिशा में लगातार बारिश होने से बड़े दरियाओं में तुगयानी आ गई है और शिमाली जिलों में बैतरणी और बूढ़ा बलंगा दरियाओं से फिर से सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। भद्रक में बैतरणी दरिया खतरे के निशान को पार कर गया है जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है और भंडारी पोखरी में कई गांव पानी से घिर गए हैं। हमारे नामा निगार ने बताया है कि हुक्काम सैलाब की सूरत हाल मजीद खराब होने के अंदेशे के तनाजुर में जरूरी इकदाम कर रहे हैं।
2: ओडिशा में कई मकामात पर लगातार बारिश होने से सैलाब की सूरत हाल संगीन हो गई है। हवा के कम दबाव का हल्का बनने के जेर असर वहां बारिश हो रही है। कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। केंझार जिले में आनंदपुर के मकाम पर भी बैतरणी दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। इस तनाजुर में हुकाम ने आसपास के कस्बों और गांवों के लोगों को चौकस कर दिया है और लोगों से कहा गया है कि वो महफूज मकाम पर चले जाएं। इधर चंपुआ में सैलाब के पानी से एक पुल बह गया है जिससे सड़क राबते में रुकावट पड़ गई है। बूढ़ा बलंगा दरिया में पानी चढ़ने की वजह से मयूरभंज और बालासोर जिले के निचले इलाकों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: मगरबी बंगाल के साहिल पर हवा के गहरे दबाव का हल्का मगरब शिमाल मगरब में रफ्ता रफ्ता गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल की समत बढ़ रहा है। फिलहाल ये कोलकाता के तकरीबन 60 किलोमीटर मगरब और मिदनापुर के 50 किलोमीटर मशरक शिमाल मशरक में मरकूज है। इसके जेर असर आज कई जिलों में तेज बारिश होने का इम्कान है। मशरकी और मगरबी मिदनापुर, झारग्राम, जनूबी 24 परगना, पुरुलिया और पश्चिम बर्धमान के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। माहीगीरों को सलाह दी गई है कि वो कल तक समंदर में न जाएं। इधर शिमाली बंगाल में भी आज जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार जिले में तेज बारिश होने की पेशगोई की गई है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज छत्तीसगढ़ में शदीद से लेकर इंतहाई शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। इधर गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी कहीं तेज और कहीं बहुत तेज बारिश होने के इम्कान के तनाजुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसमियात महकमे ने शिमाल मशरकी भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होने की पेशगोई की है। जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में भी इसी तरह का मौसम रहने की पेशगोई की गई है। उधर अंडमान निकोबार जजायर, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों में भी शदीद बारिश होने की पेशगोई की गई है। झारखंड में भर्ती इम्तिहानात में मुबैना बेजाबतगियों के मामले पर तलबा और मुलाजमत के उम्मीदवारों का एहतजाज आज 21वें दिन भी जारी है। मुजाहिरीन ने अपना एहतजाज खत्म करने से इनकार किया है और सीबीआई जांच और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेएसएससी के कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल इम्तिहान को मनसूख करने के मुतालबे का इरादा किया। मुजाहिरीन ने 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकालने का भी ऐलान किया है ताकि इस मुजाहिरे को मजीद मजबूत बनाया जा सके। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में उम्मीदवारों का धरना जारी है। तलबा कल एक बड़ी तिरंगा यात्रा निकालेंगे जिसमें रियासत भर के हजारों नौजवानों के इकट्ठा होने की तवक्को है। यौम आजादी की तकरीबात और इस बड़े तलबा मुजाहिरे के पेश नजर रांची जिला इंतजामिया पूरी तरह चौकस है। तलबा की तिरंगा यात्रा के रास्ते पर और हसास मकाम पर बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। कनाडा ओपन टेनिस में ईगा श्यांटेक ने एलेना रिबाकिना को हराकर खवातीन सिंगल्स का टाइटल जीत लिया है। कल रात टोरंटो में खेले गए फाइनल में सातवें नंबर की ईगा श्यांटेक ने दूसरे नंबर की खिलाड़ी एलेना रिबाकिना को 6-2 और 6-3 से हराकर सीजन का अपना पहला टाइटल हासिल किया। इस तरह वो अब पूरे इतमाद के साथ यूएस ओपन टेनिस में कदम रखेंगी। इधर अमरीका के बेन शेल्टन ने मर्दों का सिंगल्स टाइटल जीता है। उन्होंने मॉन्ट्रियल में खेले गए फाइनल में अपने हमवतन ब्रेंडन नाकाशिमा को 6-3 और 7-6 से शिकस्त दी। भारत नाइजीरिया के लागोस में मुनक़िदा दौलत मुश्तरका फेंसिंग चैंपियनशिप में शानदार 35 तमगे जीतकर मजमूई तौर पर चैंपियन बनकर उभरा है। भारतीय दस्ते ने अंडर 23 और सीनियर मुकाबलों में 13 सोने के, 8 चांदी के और 14 कांसे के तमगे हासिल किए हैं। भारत ने अपनी शानदार कारकर्दगी की बदौलत विल्किंसन सोच ट्रॉफी भी जीत ली है जो मजमूई तौर पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले मुल्क को कॉमनवेल्थ फेंसिंग फेडरेशन की जानिब से की जाती है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया नीतिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास के आखिरी दिन से मुताल्लिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इंकलाब की शह सुर्खी है, मानसून इजलास हंगामे की नजर, गैर मुयना मुद्दत के लिए मुलतवी, नीट पेपर लीक मामला छाया रहा। सभी जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की जानिब से मुल्क के मौजूद फनकारों को साल 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप और अवार्ड्स तफवीज किए जाने से मुताल्लिक खबर को अखबारात ने अहमियत के साथ पहले सफे पर जगह दी है। रोजनामा प्रताप ने इस दौरान दिए सभी जमहूरिया के इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि अवार्ड हासिल करने वाले फनकार मिलकर मुल्क का एक ऐसा सकाफती नक्शा पेश करते हैं जिसमें मुल्क की मिट्टी की कहानियां और गीत जुड़े हैं।
0: और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। सभी जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 80वें यौम आजादी से कबल आज शाम मुल्क के लोगों से खिताब करेंगी। आज मुल्क की तकसीम की हौलनाकी की याद का दिन मनाया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने फायर सर्विसेज और जेल महकमे में साबिक अग्निवीरों के लिए 20% कोटे की मंजूरी दी है और उम्र की हद में रियायत दी गई है। उत्तराखंड के चमोली जिले में जेर तामीर टनल में पानी के रिसाव और चट्टानों के टुकड़े गिरने के वाकये में 7 कारकुनों की मौत हो गई जबकि 14 जख्मी हुए। और कनाडा ओपन टेनिस में ईगा श्यांटेक ने एलेना रिबाकिना को हराकर खवातीन सिंगल्स का टाइटल जीता है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर 8:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुर गंगा। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं शहनाई वादन। कलाकार हैं लोकेश आनंद और साथी। आइए इनसे सुनते हैं शहनाई पर बजाया राग बैरागी।

0: sunt rohitei. Shihanai vadan, kalakarthi, Lokesh Anandorsati. Abhi aapne in kapil Shihanai par bajaya raag bairagi suna. Iske saath hi Swarganga karyakram ab sampann hota hai. Hum Akashvani Delhi ke Indraprastha channel se bol rahe hain. Medium wave 366.3 meter arthat 819 kilohertz par 9:15 minute hone ko hai. नीचे अब प्रस्तुत है गांधी चर्चा. इसमें आज आप सुनेंगे वार्ता सामाजिक कुरीतियों और उनके उन्मूलन पर गांधी जी के विचार. वार्ताकार हैं शुभांगी पवार.
1: ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है. प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा.

0: चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में आज की वार्ता का विषय है सामाजिक कुरीतियां और उनके उन्मूलन पर गांधी जी के विचार। आलेख एवं स्वर शुभांगी पवार।
1: जब तक समाज अन्याय, भेदभाव और अंधविश्वास जैसी बुराइयों से मुक्त नहीं होगा, तब तक किसी भी राष्ट्र का वास्तविक विकास संभव नहीं है। यह विचार महात्मा गांधी के जीवन और दर्शन का मूल संदेश था। गांधी जी केवल भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराना नहीं चाहते थे, बल्कि वे भारत को सामाजिक बुराइयों से भी मुक्त देखना चाहते थे। उनका मानना था कि राजनीतिक स्वतंत्रता तभी सार्थक होगी जब समाज समानता, न्याय, सत्य और मानवता के मूल्यों पर आधारित होगा। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि सामाजिक कुरीतियाँ क्या होती हैं। सामाजिक कुरीतियाँ वे बुराइयाँ हैं जो समाज के विकास में बाधा बनती हैं और लोगों के बीच असमानता, अन्याय तथा शोषण को बढ़ावा देती है। इनमें जाति भेद, छुआछूत, दहेज प्रथा, बाल विवाह, लैंगिक असमानता, नशाखोरी, अशिक्षा, अंधविश्वास और सांप्रदायिकता जैसी समस्याएं प्रमुख हैं। गांधी जी ने इन सभी कुरीतियों को समाज की कमजोरी माना और इनके विरुद्ध जीवन भर संघर्ष किया। गांधी जी छुआछूत को मानवता पर सबसे बड़ा कलंक मानते थे। उनका विश्वास था कि सभी मनुष्य ईश्वर की संतान हैं, इसलिए किसी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर ऊंचा या नीचा मानना अन्याय और अधर्म है। उस समय समाज का एक बड़ा वर्ग मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकता था, सार्वजनिक कुओं से पानी नहीं भर सकता था और उसे सम्मान पूर्वक जीवन

देने का अधिकार भी नहीं मिलता था। गांधी जी ने इस अमानवीय व्यवस्था का खुलकर विरोध किया। उन्होंने तथाकथित अस्पृश्य लोगों को समाज में सम्मान दिलाने के लिए अनेक अभियान चलाए। वे स्वयं उनके बीच रहते थे, उनके साथ भोजन करते थे और लोगों से आग्रह करते थे कि जाति के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव न करें। उनका मानना था कि जब तक समाज का अंतिम व्यक्ति सम्मान और समान अवसर प्राप्त नहीं करेगा, तब तक भारत का विकास अधूरा रहेगा। दूसरा महत्वपूर्ण विषय था महिलाओं की स्थिति। गांधी जी का विश्वास था कि महिलाओं और पुरुषों के अधिकार समान हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी समाज की प्रगति का सही आकलन वहाँ की महिलाओं की स्थिति से किया जा सकता है। उस समय महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता था, उन्हें निर्णय लेने का अधिकार नहीं था और अनेक सामाजिक बंधनों में बांध दिया जाता था। गांधी जी ने महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि महिलाएं केवल परिवार की जिम्मेदारी निभाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे समाज और राष्ट्र के निर्माण में समान रूप से सक्षम हैं। उनके नेतृत्व में हजारों महिलाओं ने सत्याग्रह, विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार और अन्य आंदोलनों में भाग लिया। इससे महिलाओं में आत्मविश्वास और जागरूकता दोनों का विकास हुआ। इसके साथ ही गांधी जी बाल विवाह और दहेज प्रथा के भी कट्टर विरोधी थे। बाल विवाह बच्चों के बचपन, शिक्षा और भविष्य को छीन लेता है। गांधी जी का मानना था कि विवाह तभी होना चाहिए जब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व हो। इसी प्रकार उन्होंने दहेज प्रथा को समाज के लिए अभिशाप बताया। उनका कहना था कि विवाह कोई व्यापार नहीं, बल्कि दो व्यक्तियों और दो परिवारों का पवित्र संबंध है। यदि विवाह धन और संपत्ति के आधार पर होने लगे तो यह समाज की नैतिकता पर प्रश्न चिन्ह है। आज भी दहेज के कारण अनेक परिवार आर्थिक बोझ झेलते हैं और कई महिलाओं को मानसिक तथा शारीरिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। इसलिए गांधी जी के विचार आज भी पूरी तरह प्रासंगिक हैं। गांधी जी शराब और अन्य नशीले पदार्थों को व्यक्ति, परिवार और समाज तीनों के लिए घातक मानते थे। उनका विश्वास था कि नशा केवल स्वास्थ्य को ही नहीं, बल्कि व्यक्ति के चरित्र, परिवार और आर्थिक स्थिति और सामाजिक वातावरण को भी नष्ट कर देता है। उन्होंने लोगों से आत्म संयम अपनाने और नशा मुक्त जीवन जीने की अपील की। गांधी जी अंधविश्वास के भी विरोधी थे। वे धर्म में आस्था रखते थे, लेकिन अंधविश्वास में नहीं। उनका मानना था कि किसी भी बात को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करना चाहिए। मनुष्य को सत्य, तर्क और विवेक के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। उनका जीवन इस बात का उदाहरण था कि सच्चा धर्म मानव सेवा, प्रेम और सत्य में है, न कि रूढ़ियों और अंधविश्वासों में। इसी प्रकार गांधी जी ने सांप्रदायिक सौहार्द पर भी विशेष बल दिया। भारत अनेक धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों का देश है। गांधी जी का विश्वास था कि सभी धर्म हमें प्रेम, करुणा और मानवता का संदेश देते हैं। इसलिए धर्म के नाम पर हिंसा और घृणा फैलाना किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं है। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक राष्ट्रीय एकता के लिए कार्य किया। अब प्रश्न यह उठता है कि गांधी जी ने इन सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए कौन से उपाय बताए। सबसे पहला उपाय था शिक्षा। गांधी जी का मानना था कि शिक्षा केवल परीक्षा पास करने या नौकरी पाने का साधन नहीं है। वास्तविक शिक्षा वह है जो व्यक्ति में अच्छे संस्कार, नैतिकता, आत्मनिर्भरता और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करे। उनका नई तालीम का सिद्धांत इसी विचार पर आधारित था कि शिक्षा जीवन से जुड़ी हुई हो और व्यक्ति के संपूर्ण विकास में सहायक बने। दूसरा उपाय था सत्य और अहिंसा।
गांधी जी का मानना था कि हिंसा से केवल भय पैदा किया जा सकता है, लेकिन स्थायी परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। सत्य और अहिंसा के माध्यम से लोगों के विचार बदले जा

0: सकते हैं और समाज में स्थायी सुधार लाया जा सकता है। उनका पूरा जीवन इस सिद्धांत का प्रमाण है। तीसरा उपाय था स्वयं से परिवर्तन की शुरुआत करना। गांधी जी कहते थे, आप स्वयं वह परिवर्तन बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। वे मानते थे कि समाज बदलने की शुरुआत किसी और से नहीं बल्कि स्वयं से होती है। यदि हम जाति, धर्म, भाषा या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, यदि हम ईमानदारी, अनुशासन और मानवता का पालन करेंगे तो समाज भी धीरे धीरे बदलने लगेगा। चौथा उपाय था स्वच्छता और श्रम का सम्मान। गांधी जी स्वयं सफाई करते थे और दूसरों को भी प्रेरित करते थे कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, प्रत्येक व्यक्ति को श्रम का सम्मान करना चाहिए। उनका विश्वास था कि स्वच्छता केवल वातावरण की नहीं बल्कि विचारों और चरित्र की भी होनी चाहिए। आज 21वीं सदी में भी गांधी जी के विचार अत्यंत प्रासंगिक हैं। भले ही छू अछूत कानूनी रूप से अपराध है, लेकिन सामाजिक भेदभाव अभी भी कई स्थानों पर दिखाई देता है। दहेज प्रथा पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध आज भी चिंता का विषय है। नशाखोरी युवाओं के सामने एक गंभीर चुनौती है। गांधी जी आज हमारे बीच होते तो वह निश्चित रूप से सत्य, सहिष्णुता, विवेक और मानवीय संवेदनाओं को अपनाने का संदेश देते। गांधी जी का सपना केवल एक स्वतंत्र भारत का नहीं था बल्कि एक ऐसे भारत का था जहां पर व्यक्ति को समान सम्मान मिले, जहां किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव ना हो, जहां सत्य, प्रेम और अहिंसा जीवन के आधार बने और जहां प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करे। सामाजिक कुरीतियों का अंत केवल कानून बनाने से नहीं होगा, इसके लिए समाज की सोच बदलनी होगी, शिक्षा का प्रसार करना होगा, नैतिक मूल्यों को अपनाना होगा और प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं से शुरुआत करनी होगी। यही गांधी जी का संदेश था और यही उनके विचारों की सबसे बड़ी विशेषता है। आइए हम सभी यह संकल्प लें कि हम किसी भी प्रकार के भेदभाव का समर्थन नहीं करेंगे, महिलाओं का सम्मान करेंगे, दहेज और नशा जैसी कुरीतियों का विरोध करेंगे, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे तथा अपने आचरण से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। यही महात्मा गांधी के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी और यही एक सशक्त तथा विकसित भारत के निर्माण की दिशा में हमारा महत्वपूर्ण योगदान होगा।
1: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, जिसका विषय था सामाजिक कुरीतियां और उनके उन्मूलन पर गांधी जी के विचार। आलेख एवं स्वर शुभांगी पवार।

इसके साथ गाड़ी चर्चा कार्यक्रम का ये अंक अब संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग श्रीनाथ दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता थे वी के तोमर।

इसी के साथ आप अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा और ये कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीएनएम 810 किलो हर्ट्ज पर सुबह के ठीक 9:30 होने को है और ये वक्त होता है अपने श्रोताओं को पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक सुनवाने का।

0: साढ़े दस बजे प्रोग्राम पेश किया जाएगा कंट्री वाइड और 10:45 पर हर घर तिरंगा मुहिम के तहत आप सुनेंगे एक खुसूसी प्रोग्राम और उसके बाद नहीं पसंद प्रोग्राम पेश किया जाएगा। दिन में 11:30 आप सुनेंगे आजादी का सफर, ये फीचर तहरीर डॉक्टर मेहनाज अनवर की। बारह बजे खबरें नशी की जाएंगी और 12:10 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम जारी रहेगा 12:45 तक दौरान प्रोग्राम 12:30। तारीख साज प्रोग्राम में आज का मौजू है आजादी। पर प्रोग्राम पेश होगा सुर्खियों में। दिन में 1:00 आलमी खबरें नशी की जाएंगी और 1:15 पर उर्दू सर्विस की पहली मजलिस की नशियात इख्तिताम पसीर हो जाएंगी। सामने एक मुख्तसर तारुफ इस मजलिस में नशों नाले प्रोग्रामों के हवाले से। खिदमत प्रोग्राम सुबगाही प्रोग्राम में आज समाप्त कीजिए हमदे बारी ताला और नाते रसूल करीम।
1: उर्दू सर्विस के सामने की खिदमत में मैं डॉक्टर माजिद देवबंदी आदाब पेश कर रहा हूँ। हमदे बारी ताला पेश करता हूँ, समाप्त फरमाए।
2: हवा करे है बयान

तकरीबन आप सभी की नजर करता हूं। फकत बहार खजां पर नहीं है कुछ मौकूफ, ये कायनात के बनते बिगड़ते सारे हुरूफ, ये न

इनके बारे में क्या बात की जाए, इनके गाने ही अपने आप में इनकी शख्सियत को बयां करते हैं। शमा हिंदी सिनेमा के 1950-60 के दशक में सदाबहार अभिनेता थे। शमा का वास्तविक नाम शमशेर राज कपूर था। अपनी विशिष्ट याहू शैली के कारण बेहद लोकप्रिय रहे हिंदी फिल्मों के पहले सिंगिंग डांसिंग स्टार शमा कपूर रंगमंच के जाने माने अदाकार और फिल्म अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के दूसरे बेटे थे। शमा कपूर ने वर्ष 1953 में फिल्म ज्योति जीवन से अपनी फिल्मी पारी की शुरुआत की। वर्ष 1957 में नासिर हुसैन की फिल्म तुमसा नहीं देखा में यहाँ अभिनेत्री अमिता के साथ उन्होंने काम किया। वहीं 1968 में आई फिल्म

साथ भी वे नजर आए। उनकी मुख्य फिल्में हैं ब्रह्मचारी, प्रोफेसर, चार दिन चार राहें, रात की राहें, चारों टांगे, दिल तेरा दीवाना, कश्मीर की कली और ब्लफ मास्टर।

0: Today is also the birthday of Munish Behl, an Indian actor working in Indian film industry, and he is the only son of actress Nutan. He has he debuted in the film Bekarar, and the films Hum Aapke Hain Kaun and Hum Saath Saath Hain are considered landmarks films that transformed his career. He starred in over 100 films. Let's hear a dialogue from his film Hum Aapke Hain Kaun.
1: रूप रंग में गोरी हो चाहे काली हो, खुश नसीब वो जीजा है जिसकी साली हो. जिसकी साली हो वो डेढ़ गुना सुख पाए, नैन रखे साली पर पीवी संग बतियाए.
2: आगे
1: कहत कवि राजेश अमृत सुख रस की प्याली, साली होती है प्यारे आधी घर वाली.
3: मैं अहमदाबाद से बजोड़िया सेठ बोल रहा हूँ, डब्बा बाल्टी टम्बलर वाला. आप कौन बोल रहे हैं?
4: बैल घर का एक्सीडेंट बाबूलाल बोल रहा हूँ.
3: तुम चोपड़ा साहब को फोन दियो.
4: एक मिनट. मोटू
3: क्या
4: चोपड़ा कौन है अपने यहाँ?
3: बाबूलाल चोपड़ा साहब हमारे मालिक हैं. हेलो चोपड़ा साहब, एक मिनट ठहरिए, मैं भी ढूंढ के लाता हूँ.
5: उम्मीद है कि अब तक आप हंस हंस के लोटपोट हो गए होंगे और जरूर पहचान भी गए होंगे कि इस मशहूर अभिनेता को ये कौन है. जी हाँ श्रोता, आज जन्मदिन है जॉनी लीवर का. उनका पूरा नाम जॉन प्रकाश राव है. अगर इनकी बात करें तो फिल्म अभिनेताओं के मिमिक्री करने में उनको महारत हासिल है. वो हिंदी सिनेमा में अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए प्रसिद्ध है.
6: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है. अब खबरें नशे की जाएंगी.
7: ये आकाशवाणी है, अब आप नीतिका त्यागी से खबरें सुनिए. सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू 80वें यौम आजादी से कबल आज शाम मुल्क के लोगों से खिताब करेंगी. आज मुल्क की तकसीम की हौलनाकी की याद का दिन मनाया जा रहा है. दिल्ली सरकार ने फायर सर्विसेज और जेल महकमे में साबिक अग्निवीरों के लिए 20% कोटे की मंजूरी दी है और उम्र की हद में रियायत दी गई है. उत्तराखंड के चमोली जिले में सिरे तामीर टनल में पानी के रिसाव और चट्टानों के टुकड़े गिरने के वाकये में 7 कारकुनों की मौत हो गई जबकि 14 जख्मी हुए. और कनाडा ओपन टेनिस में ईगा श्यांटेक ने एलेना रिबाकीना को हराकर खवातीन का सिंगल्स का टाइटल जीत लिया है. अब खबरें तफसील से. सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू 80वें यौम आजादी से कबल आज शाम मुल्क के लोगों से खिताब करेंगी. सदर जमहूरिया का ये खिताब आकाशवाणी के पूरे कौमी नेटवर्क पर शाम 7 बजे से नश्र किया जाएगा. दूरदर्शन के सभी चैनलों पर पहले ये खिताब हिंदी में टेलीकास्ट किया जाएगा और इसके बाद अंग्रेजी में होगा. दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में इस खिताब की टेलीकास्ट के बाद दूरदर्शन के इलाकाई चैनलों पर इसे इलाकाई जबानों में नश्र किया जाएगा. इधर आकाशवाणी से भी सदर जमहूरिया का ये खिताब मुतालिका इलाकाई नेटवर्क पर रात 9:30 बजे इलाकाई जबानों में नश्र किया जाएगा. आज मुल्क की तकसीम की हौलनाकी की याद का दिन है. आज उन सभी लोगों को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है जिन्होंने साल 1947 में मुल्क की तकसीम के दौरान नाकाबिले तसव्वुर दुख और तकलीफ का सामना किया और अपनी जान कुर्बान कर दी. तकसीम की हौलनाकियों को याद करने के दिन के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उन लोगों की हिम्मत और हौसले को याद किया जो मुल्क की तकसीम से मुतासिर हुए थे. एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने मुल्क की तकसीम को तारीख का एक ऐसा लम्हा करार दिया जिससे लोगों की जिंदगियां बिखर गईं, खानदान उजड़ गए, लोगों ने अपने अजीजों को खो दिया और इंतहाई मुश्किल का सामना किया. जनाब मोदी ने मजीद कहा कि इसके साथ ही लोगों ने इस मुश्किल को बर्दाश्त किया और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू की, सख्तियों को कामयाबी में बदला और मुल्क की तरक्की में बेपनाह तावुन पेश किया. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हर घर तिरंगा मुहिम के

तहत आज भोपाल में एक बड़ी तिरंगा रैली का एहतमाम किया जा रहा है। ये रैली सुबह 10 बजे कोलार 6 लेन रोड से शुरू होगी और तकरीबन 32 किलोमीटर का फासला तय करते हुए संतनगर में खत्म होगी। इस रैली में 1 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। वजीर आला डॉ मोहन यादव और बीजेपी के रियासती सदर हेमंत खंडेलवाल भी इस रैली में शिरकत करेंगे। दिल्ली सरकार ने फायर सर्विसेज के शोबे में फायर ऑपरेटर ओहदों और जेल के महकमे में वार्डन और मेट्रन ओहदों पर सीधे भर्ती में साबिक अग्निवीरों के लिए 20% रिजर्वेशन की मंजूरी दी है। उम्र दाखिला के महकमे के हुक्म में अहल उम्मीदवारों के लिए उम्र की हद में रियायत भी दी गई है। ये कदम साबिक अग्निवीरों की बाजाबादकारी की मरकजी सरकार की पॉलिसी के ऐन मुताबिक है। उम्र दाखिला की मरकजी वजारत ने साबिक अग्निवीर के लिए पहले ही जनरल ड्यूटी पर काम करने वाले कांस्टेबल और सभी मरकजी जिला पुलिस फोर्सेस नीज आसाम राइफल्स में राइफलमैन सतह पर 50% ओहदे रिजर्व कर दिए हैं। ग्वालियर में टैक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ ने फायर कॉम्बैट लीडर के तौर पर क्वालिफाई किया है। इस तरह उन्होंने भारतीय फजाइया की पहली खातून अफसर के तौर पर तारीख रकम की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारतीय फजाइया ने कहा कि यह एक तारीखी कामयाबी है जिससे पेशावराना महारत, जंगी समझबूझ और लीडर्स की हौसला अफजाई के तई फजाइया के अज़्म का इजहार होता है। उत्तराखंड के चमोली जिले में एक पनबिजली प्रोजेक्ट के मकाम पर जेर तामीर टनल में पानी के रिसाव और चट्टानों के टुकड़े गिरने के वाकये में 7 कारकुनों की मौत हो गई जबकि 14 जख्मी हुए। नजदीक के अस्पताल में जख्मियों का इलाज किया जा रहा है। हमारे नामानिकार ने बताया है कि यह वाकया पीपलकोटी इलाके में टिहरी हाइड्रोजन डिवेलपमेंट कारपोरेशन प्रोजेक्ट के मकाम पर पेश आया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हवा के कम दबाव का हल्का बनने के तनाजुर में ओडिशा में लगातार बारिश होने से बड़े दरियाओं में तुगयानी आ गई है और शिमाली जिलों में बैतरनी और बूढ़ाबलंगा दरियाओं से फिर से सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। भद्रक में बैतरनी दरिया खतरे के निशान को पार कर गया है जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है और भंडारी पोखरी में कई गांव पानी से घिर गए हैं। हमारे नामानिकार ने बताया है कि हुक्काम सैलाब की सूरतेहाल मजीद खराब होने के अंदेशे के तनाजुर में जरूरी इकदामात कर रहे हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज छत्तीसगढ़ में शदीद से लेकर इंतहाई शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। इधर गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी कहीं तेज और कहीं बहुत तेज बारिश होने के इम्कान के तनाजुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली, मशरकी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पंजाब में भी तेज बारिश होने का इम्कान है। मौसमियात महकमे ने केरलम के 6 जिलों में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश के इम्कान के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया है। रियासत के शिमाली जिलों में बारिश का जोर कम हो गया है। मगरबी बंगाल के साहिल पर हवा के गहरे दबाव का हल्का मगरिब शुमाल मगरिब में रफ्ता रफ्ता गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल की समत बढ़ रहा है। फिलहाल ये कोलकाता के तकरीबन 60 किलोमीटर मगरिब और मिदनापुर के 50 किलोमीटर मशरिक शुमाल मशरिक में मरकूज है। इसके जेर असर आज कई जिलों में तेज बारिश होने का इम्कान है। मशरिकी और मगरबी मिदनापुर, झारग्राम, जनूबी 24 परगना, पुरुलिया और पश्चिम बर्धमान के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर और लाइबेरिया की उनकी हम मनसब सारा बेसोलो न्यांती ने कल नई दिल्ली में दो तरफा बातचीत की। उन्होंने टेक्नोलॉजी, ज़िराअत, कानकनी, तवानाई, तिजारत व सरमायाकारी, तालीम, सलाहियत साजी और अवामी रवाबित समेत भारत लाइबेरिया दो तरफा ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे का जायजा लिया।
उन्होंने बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और कसीर जहती मामलात पर भी तबादला ख्याल किया। डॉ जयशंकर ने नई दिल्ली में लाइबेरिया के सिफारतखाने के इफ्तिताह के लिए लाइबेरिया के वजीर खारिजा को मुबारकबाद पेश की। दोनों वजरा ने अमन, तरक्की और आलमी खित्ताए जनूब की मजबूत आवाज को आगे ले जाने की

0: के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से अल्लूरी सीताराम राजू भोगापुरम हवाई अड्डे के इफ्तिताह के बाद अब विजयवाड़ा राजा मुंद्री और कपड़ा हवाई अड्डे के नए टर्मिनलों में काम जल्द पूरा हो जाएगा। कनाडा ओपन टेनिस में ईगा श्यांटेक ने एलेना रिबाकिना को हराकर खवातीन सिंगल्स का टाइटल जीत लिया है। कल रात टोरंटो में खेले गए फाइनल में सातवें नंबर की ईगा श्यांटेक ने दूसरे नंबर की खिलाड़ी एलेना रिबाकिना को 6-2 और 6-3 से हराकर सीजन का अपना पहला टाइटल हासिल किया। इस तरह वो अब पूरे एतमाद के साथ यूएस ओपन टेनिस में कदम रखेंगी। इधर अमेरिका के बेन शेल्टन ने मर्दों का सिंगल्स टाइटल जीता है। उन्होंने मॉन्ट्रियल में खेले गए फाइनल में अपने हमवतन ब्रेंडन नाकाशिमा को हराया। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू 80वें यौम आजादी से कबल आज शाम मुल्क के लोगों से खिताब करेंगी। आज मुल्क की तकसीम की खौलनाकी की याद का दिन मनाया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने फायर सर्विसेज और जेल महकमे में साबिक अग्निवीरों के लिए 20% कोटे की मंजूरी दी है और उम्र की हद में रियायत दी गई है। उत्तराखंड के चमोली जिले में सिरे तामीर टनल में पानी के रिसाव और चट्टानों के टुकड़े गिरने के वाकये में 7 कारकुनों की मौत हो गई जबकि 14 जख्मी हैं। और कनाडा ओपन टेनिस में ईगा श्यांटेक ने एलेना रिबाकिना को हराकर खवातीन सिंगल्स का टाइटल जीत लिया है। अमेरिका के बेन शेल्टन ने मर्दों का सिंगल्स टाइटल जीता है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारी नशा जारी है मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। पेश खिदमत है अकवाल सर्रे पर मबनी शम फरोजा।
2: खुदा की कुदरत के लातादाद नमूने इसरो जमीन पर मौजूद हैं। उसी ने आसमान को उठाया, जमीन को बिछाया, सूरज को तमाजत, चांद को हुस्न, तारों को चमक, दरियाओं को रवानी, शहद को मिठास और गुलों को खुशबू बख्शी। उसी ने बेशुमार अजीब व गरीब मखलूकात पैदा की जमीन के ऊपर समंदरों की तह में, जिनकी साख्त अलग, बोली अलग, रंग अलग, कैफियत अलग। खुद इंसान को ले लीजिए, कुदरत का अजीम शाहकार। हर एक का चेहरा दूसरे से जुदा, हर एक की शक्ल व सूरत दूसरे से मुख्तलिफ। गर्ज पूरी दुनिया खुदा के सन्नाई व कारीगरी की ताबनाक तस्वीर है। इसी कारीगरी को देखकर यह यकीन मजीद पुख्ता हो जाता है कि कोई बड़ी जबरदस्त ताकत व कुव्वत वाला है, जो कौन व मका का मालिक है, जिसके हाथ में कायनात की कुंजियां हैं, जो इस निजाम हस्ती को चला रहा है, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि खुदा की जात है। खुदा की जात, उसकी सिफात, उसकी रुबूबियत और उसकी उलूहियत के बारे में बहुत सी अजीम शख्सियात ने कहा और लिखा है। आज हम गांधी जी के एक कौल के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। गांधी जी का कौल है, मुझे जो खुदा भगवत गीता में नजर आता है वही इंजील और कुरान में भी नजर आता है। इस कौल के मुख्तलिफ मानी हो सकते हैं, जिनमें से एक मुख्तलिफ मजाहिब में खुदा के इलाही होने, माबूद होने और रब होने का तस्वुर है। इस दुनिया में पाए जाने वाले बहुत से मजाहिब में खुदा ताला का वजूद, उसकी उबूबियत और उलूहियत का तस्वुर मौजूद है। खुदा के होने को जहां कुरान बयान करता है वहीं गीता और बाइबल भी इसका इकरार करते हैं। खुदा के खालिक व मालिक होने को जहां मजहब इस्लाम ने माना है वहीं हिंदू मजहब ने और ईसाई मजहब ने भी इसका इकरार किया है। कुरान खुदा की खुदाई के मुतालिक गवाही देता है, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। एक दूसरी जगह कुरान ने कहा वो अल्लाह है जिसका कोई शरीक नहीं। एक जगह कुरान कहता है वो अल्लाह तमाम आसमानों और जमीन का रब है, हर चीज को पैदा करने वाला है। इसी तरह हिंदू मजहब, जो कि हिंदुस्तान के कदीम तरीन मजाहिब में से एक है, इस मजहब में भी खुदा का तस्वुर शुरू से मौजूद है। हिंदू मजहब की किताबों भगवत गीता और वेद में खुदा का तस्वुर मौजूद है। मसलन ऋग्वेद में मजकूर है कि अक्लमंद लोग उसी अजीम हस्ती

0: इसी को ही इंद्र, वरुण और अग्नि कहते हैं। वो सुंदर पंखों और अच्छी रफ्तार वाला है। वो एक ही है। अहले इल्म उसको मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं। कठोपनिषद में है कि तमाम वेदों में जिसकी अजमत का बयान है, तमाम रियाजतें जिसके जिक्र पाक की तस्वीरें हैं, जिसके कुर्ब के लिए ब्रह्मचारी आश्रम की पाबंदी की जाती है, वो पाक नाम ओम है। इसी तरह सिख मत में खुदा का तस्वुर बिल्कुल वाज़े अंदाज में मौजूद है। वो मानते हैं कि खुदा ताला अजली, अबदी, खालिक, मालिक, अजीम और रहीम है। ईसाई मजहब आसमानी मजाहिब में शामिल है। ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक खुदा एक है, लेकिन तीन में एक है। वो अल्लाह, इब्नुल्लाह और रूहुल कुद्स के तसलीस को खुदा मानते हैं, इसलिए उनमें वाज़े तौर पर एक खुदा की बात कही गई है। मसलन किताब खुरूज में है, मेरे अलावा कोई खुदा नहीं, मैं ही तुम्हारा खुदा हूँ। नीज इंजील में इस तरह के जुमले हैं। तकरीबन हर मजहब में खुदा के होने का तस्वुर मौजूद है। गांधी जी के कौल, मुझे जो खुदा भगवत गीता में नजर आता है वो इंजील और कुरान में नजर आता है, इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि खुदा से मुराद हुक्म खुदा, यानी कुरान में खुदा ताला ने गरीबों, यतीमों, बेसहाराओं, माजूरों और मजबूरों की मदद और ताउन का जो हुक्म दिया है, बिल्कुल वैसा ही हुक्म भगवत गीता में भी मौजूद है, बाइबल में भी मौजूद है और तमाम मजाहिब में मौजूद है। नीज हर मजहब और दीन हुस्ने अखलाक, हुस्ने मामला, हुस्ने नीयत, बुलंद किरदारी, हमदर्दी, इंसानियत परवरी और इंसानियत नवाजी का दर्स देता है।
1: अभी आप सुन रहे थे अख़बार ज़र्रे पर मबनी शम फरोज़ा, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTV डिश पर आप हमारी नशियात सुन रहे हैं। हुस्ने ग़ज़ल इस प्रोग्राम में आज आप महजूज होंगे श्रीराम और उमा गर्ग की आई चंद गैर फिल्मी आवाज़ों से। हुस्ने ग़ज़ल प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं रिफत सरोज के इस कलाम के साथ।

0: जिगर मुरादाबादी का कलाम पेश कर रही थी उमा गर्ग और इस गजल के साथ ही हुस्न गजल प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप हमारी नशियात सुन रहे हैं। पेश है प्रोग्राम कंट्री वाइड।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए शाइन 2026 युवाओं को स्वास्थ्य अनुसंधान से जोड़ने की पहल पर स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग में सचिव एवं ICMR महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल के साथ हर्ष रंजन की विशेष बातचीत।
2: भारत में स्वास्थ्य अनुसंधान को नई दिशा देने और देश के युवाओं को विज्ञान तथा अनुसंधान से जोड़ने की दिशा में ICMR लगातार महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में शाइन 2026, शाइन मतलब साइंस एंड हेल्थ इनोवेशन फॉर नेक्स्ट जनरेशन एक्सप्लोरर्स का दूसरा संस्करण 11 और 12 अगस्त को देश भर में आयोजित किया गया। देश के 83 ICMR केंद्रों पर स्कूली बच्चों को प्रयोगशालाओं में जाने, वैज्ञानिकों से बातचीत करने और स्वास्थ्य अनुसंधान को सीधे तौर पर समझने का मौका मिला। हिमाचल प्रदेश के केलोंग से लेकर केरल तक और दमन दीव से लेकर नागालैंड तक देश के अलग अलग हिस्सों से लगभग 30,000 बच्चे इस पहल से जुड़े हैं और इसी के बारे में हम आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और ICMR के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल। डॉक्टर बहल, आपका आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: डॉक्टर बहल, सबसे पहले शाइन 2026 के सफल समापन पर आपको ढेर सारी बधाई हो। दो दिनों तक ये चला, देश भर के 83 केंद्रों पर हजारों स्कूली बच्चों ने ICMR की प्रयोगशालाओं और अनुसंधान गतिविधियों को करीब से देखा। आपके लिए इस पूरे कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण अनुभव क्या रहा?
3: ये कार्यक्रम हमने पिछले साल शुरू किया था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया था कि हर युवा को, हर स्कूली बच्चे को एक मौका मिलना चाहिए कि वो एक दिन एक साइंटिस्ट की तरह व्यतीत करे, कम से कम साल में एक बार। तो इससे प्रेरित होकर हमने ये प्रोग्राम पिछले साल शुरू किया था, जिसमें 10,000 से ज्यादा बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया था। इस साल 30,000 से ज्यादा बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया है। और जो मेरा अनुभव अपना रहा इसमें, जो सबसे ज्यादा जिसने मुझे इम्प्रेस किया, वो ये था कि बच्चों की जिज्ञासा जो हमने देखी और जिस तरह के सवाल उन्होंने पूछ रहे थे मुझसे भी, क्योंकि मैंने भी पर्सनली दिल्ली

0: में कुछ बच्चों से इंटरेक्ट किया और जिस तरह के सवाल वो प्रयोगशाला में और जो एग्जीबिशन लगी थी उनमें और जो साइंटिस्ट के साथ इंटरेक्शन में जिस तरह से सवाल पूछ रहे थे उसको पूछ के बहुत ही प्रसन्नता हुई कि बच्चों में इतनी जिज्ञासा है, इतना कुछ वो जानना चाहते हैं और इतने अच्छी तरह से उन्होंने इसको लिया और बहुत अच्छा फीडबैक भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये हमें दिया है कि उनको इस प्रोग्राम से आने से उनको कितना अच्छा इस बारे में लगा और आगे उनकी सोच पे इसका क्या असर।
1: बच्चे यानी नेक्स्ट जनरेशन ही हमारे देश के असली भविष्य हैं। डॉक्टर वहल, क्या बच्चों ने कोई ऐसा सवाल पूछा जो आपको अभी तक याद है?
0: एक्चुअली 3 बच्चों ने मुझसे ऐसे सवाल पूछे जो मुझे लगा कि कोई बड़ा साइंटिस्ट भी पूछ सकता है ऐसे सवाल, इतने अच्छे सवाल थे। जैसे एक बच्चे ने पूछा कि हम आईसीएमआर कैसे आगे आने वाले किसी भी महामारी के लिए तैयारी कर रहा है, कैसे हम जल्दी वैक्सीन बना पाएंगे, कैसे हम जल्दी कोई डायग्नोसिस बना पाएंगे, इसके लिए आईसीएमआर क्या कर रहा है। तो इतना अच्छा सवाल था क्योंकि इतना महत्वपूर्ण है ये और आईसीएमआर इस एरिया में इतने अच्छे काम कर रहा है पहले से ही। तो मैंने अच्छे से बच्चों को इस बारे में समझाया कि किस तरह हम महामारियों को और कोई भी आने वाली बीमारी को, नई बीमारी को किस तरह से ढूंढेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि हमारे देश के होने वाले नागरिक जो विकसित भारत के शायद पहले नागरिक होंगे वो बच्चे इस तरह का बहुत ही जिम्मेवारी वाला सवाल पूछा हमने। इसी तरह एक बच्ची ने पूछा कि वायरस और कैंसर का क्या रिलेशनशिप है, और जैसा आपको पता है कि अभी ही हाल ही में HPV वैक्सीन लॉन्च हुई है और ना मुझे अच्छा लगा कि बच्ची पूछ रही है कि कैसे वायरस जो है वो कैंसर करता है और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। फिर उसने ये भी पूछा कि क्या कैंसर की कोई नई तरह की वैक्सीन बन रही है। तो मुझे ये सब चीजें तो कटिंग एज है और बच्चों की ऐसी जिज्ञासाएं हैं तो ये सुन के बहुत ही अच्छा लगा और उनको इसका जवाब देने में मुझे अति प्रसन्नता हुई कि किस तरह से हम कैंसर को, जैसे सर्वाइकल कैंसर या हिपैटिक कैंसर को वैक्सीन के जरिए हम रोक सकते हैं, किस तरह से जो इम्यूनिटी हमारी है, इम्यून सिस्टम है, वो हमारे को कैंसर से बचाता है और हम किस तरह से उसके ऊपर नए नए ट्रीटमेंट्स कैंसर के ला रहे हैं और पूरे विश्व में कैंसर पे किस तरह का रिसर्च हो रहा है, ये बताने का मुझे मौका मिला ऐसे प्रश्न को पूछ सुनने से। और भी कई तरह के क्वेश्चन मैंने उनके देखे जब मैं प्रयोगशाला में गए और वहां पर पूछ रहे थे कि जिस तरह मस्कीटो का लाइफ साइकिल है इसका क्या मतलब होता है, क्या ये सिर्फ जो अंडे हैं ये सिर्फ पानी में पनपते हैं, उस तरह उन्होंने देखा कि किस तरह से ये होता है। तो ये सब चीजें देख के बहुत अच्छा।
1: बिल्कुल। आपसे अगला सवाल हमारा ये है कि शाइन में कक्षा 9 से कक्षा 12 के विद्यार्थियों को वैज्ञानिकों के साथ सीधी बातचीत का अवसर मिला। क्या आपका मानना है कि ऐसी पहल से बच्चे साइंस को केवल अब एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं बल्कि करियर और नेशन बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी के रूप में भी देखना शुरू कर चुके हैं?
0: जब किसी चीज को बच्चा देखता है और एक अपने स्कूल में एक विषय की तरह देखता है, एक किताब पढ़ के देखता है और कुछ छोटे मोटे प्रयोग करता है, लेकिन जब वो आके ये देखता है कि किस तरह से रिसर्च जो चीजों को चेंज कर रही है, कोई नई चीज, नया डायग्नोस्टिक या नई वैक्सीन बनाने में मदद कर रही है, तो उस एज पे, उसके दिमाग पे उसका एक बहुत अच्छा और बहुत गहरी छाप पड़ती है और उससे उसकी ना सिर्फ जिज्ञासा बढ़ती है बल्कि उसको ये भी समझ आने लगता है कि ये भी एक ऐसा चीज है जो हम कर सकते हैं। ये नहीं कि हम सिर्फ डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या हम सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट बने या कुछ और इस तरह की अपने प्रोफेशन करें, बल्कि हम साइंटिस्ट भी बन सकते हैं।
1: और इस काम में आईसीएमआर, जैसा कि आप बता रहे हैं, बच्चों को मदद करने के लिए बेहद तत्पर है। डॉक्टर राजीव बहल, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। जीनोमिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, प्रेसिजन मेडिसिन और डिजिटल हेल्थ बड़ी तेजी से स्वास्थ्य क्षेत्र को बदल रहे हैं। क्या AI और नई टेक्नोलॉजीज के आने से आने वाले सालों में भारत के हेल्थ रिसर्च को कोई इसमें फंडामेंटल चेंजेस, बदलाव आ सकता है?
0: बदलाव आ सकता है और अवश्य ही आएगा। क्योंकि ये सब टेक्नोलॉजीज भारत ने अपने आप भी विकसित किए हैं, अपनी हमारी जिस तरह की कैपेसिटीज डेवलप हुई हैं इस देश में पिछले सालों में जब से हम आजाद हुए हैं, तब से हम अपनी एजुकेशन, हायर एजुकेशन और रिसर्च में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन पिछले एक दशक में खासतौर एक तरह का कॉन्फिडेंस जो आया है कि हम इस नई टेक्नोलॉजी में ना सिर्फ इसको यूज करेंगे बल्कि हम इसमें अग्रसर रहे। जिस तरह से भारत ने डिजिटल टेक्नोलॉजी में उदाहरण के तौर पे UPI को यूज करके जिस तरह से डिजिटल पेमेंट्स और डिजिटल उसमें अपना सिक्का जमाया पूरे विश्व में, इसी तरह से भारत डिजिटल हेल्थ में बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से हम हेल्थ केयर को इम्प्रूव करेंगे, ये ऑलरेडी हो रहा है। और मेरा ये मानना है कि जिस तरह जीनोमिक्स इंडिया में हो रहा है, ऐसा इस तरह की चीज जो आज हम कर रहे हैं वो हम वही सब कर रहे हैं जो विश्व में कहीं भी ऐसी फैसिलिटीज उपलब्ध है वो हमारे पास भी उपलब्ध है।
1: डॉक्टर साहब, क्लाइमेट चेंज भी स्वास्थ्य से एक तरीके से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है और क्लाइमेट चेंज के कारण नई तरह के की हेल्थ चैलेंजेस, इन्फेक्शियस डिजीजेस का खतरा बढ़ रहा है। ICMR इन इमर्जिंग हेल्थ थ्रेट्स के लिए अपनी रणनीति में, खासतौर पर रिसर्च की रणनीति में किस तरीके की बदलाव ला रहा है या क्या तैयारी कर रहा है?
0: क्लाइमेट चेंज इसी रफ्तार से होता रहा, इसी रफ्तार से ग्लोबल वार्मिंग होती रही, तो ये हमारे लिए कई तरह की प्रॉब्लम्स करेगा। हेल्थ उसमें से एक प्रमुख प्रॉब्लम है जिसको क्लाइमेट चेंज से हमें देखें तो बहुत मुश्किल होने वाली है अगर इस तरह से क्लाइमेट चेंज होता रहा। तो रिसर्च क्या कर रहा है और रिसर्च इस बारे में क्या हम कर रहे हैं? सबसे पहले तो हमने ये एस्टैब्लिश किया है कि इस तरह की वार्मिंग से, इस तरह के क्लाइमेट चेंज से क्या असर आएंगे और क्या असर हो रही है। जैसे कि कम्युनिकेबल डिजीजेज में अब डेंगू जिसको कहा जाता है, जो बुखार आता है, डेंगू होता है, वह बीमारी जो है वो उन इलाकों में भी बढ़ रही है जहां पहले कभी नहीं थी, क्योंकि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है ऐसे ऐसे जो वेक्टर है डेंगू का, जो मच्छर है, वो वैसे वैसे उसका प्रकोप बढ़ रहा है। इसी तरह से जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है जैसे कि कार्डियक डिजीज और हाइपरटेंशन, ये बीमारियां जो हैं इनका प्रभाव जो है वो बढ़ जाता है जब क्लाइमेट चेंज होता है। ऐसे ही जो किडनी फेलियर है देश में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ये भी डिहाइड्रेशन, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड काफी इसका प्रभाव रहता है। तो पहली चीज तो हम ये कर रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज के प्रभाव हो रहे हैं उसको समझ के वो हम सामने लाए। जो हमारी रणनीति है वो है इनकी एमिलियोरेशन, यानी कि इनको किस तरह से एक मल्टी डायमेंशनल, एक मल्टी सेक्टोरल इंटरवेंशन को रखते हुए इनको किस तरह से हम इन प्रभावों को कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा काम करने का समय है क्या हम उसमें बदलाव ला सकते हैं? क्या हम भरी दोपहर में लोगों को बाहर काम ना करना पड़े इसके ऊपर कुछ कर सकते हैं? क्या हम इस तरह के घर बना सकते हैं कि जो उस तरह से गर्म ना हो जैसे कि हमारे ऑर्डिनरी घर होते हैं, तो उसमें क्या चेंजेस ला सकते हैं?
1: आप मतलब ये समझाना चाह रहे हैं कि उपचार के साथ साथ बचाव यानी प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन पर भी ICMR ध्यान केंद्रित कर रहा है और उसके बारे में भी लोगों को जागरूक बना रहा है।
0: बिल्कुल, ये इंटरवेंशन जो प्रिवेंशन के हैं और हेल्थ के जो दुष्प्रभाव क्लाइमेट चेंज के हैं उससे बचना सबसे ज्यादा जरूरी है, और उसका इलाज जैसे अगर हीट स्ट्रोक और दूसरी तरह की जो तकलीफें होती है उसका इलाज करना भी उतना ही जरूरी है। लेकिन सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी हमारी यही रहेगी कि हम किस तरह से एक तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसको रोकें और दूसरा कि उसके प्रभावों को कम करें।
1: डॉक्टर राजीव बहल, यदि शाइन में शामिल कोई 15-16 साल का बच्चा ये कार्यक्रम सुन रहा है और आपसे ये सवाल पूछता है कि मैं अभी से वैज्ञानिक बनने के लिए क्या कर सकता हूँ, तो आप उसे क्या सलाह देंगे?
0: तो मेरी सबसे पहली सलाह तो ये है कि अपनी क्यूरियोसिटी, अपनी जिज्ञासा को बढ़ाइए, उसको सोचिए। ये मत सोचिए कि मुझे सिर्फ सब्जेक्ट को याद करना है, ये सोचिए कि जो चीज मैं पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, अगर बच्ची है तो वो क्यों होता है, इसको किस तरह से हम सोचें कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको इन डेप्थ उसको जाके समझ के और कोशिश करें।

0: ये जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके पीछे क्या है और उसको कैसे साइंटिस्ट ने पहचाना। दूसरी चीज ये है कि अपने मन को खुला रखिए। अपने को इस वक्त आप 9वीं 10वीं 11वीं में पढ़ते हैं, आप अपने को एक क्यूरियस स्टूडेंट के रूप में, जैसे कि आपने देखा हमारा मैस्कॉट है डॉक्टर क्यूरियो, और उसका नाम ही हमने इसलिए रखा है कि यह आपकी क्यूरियोसिटी को आप रखें। और आज आपके पास अपने पेरेंट्स के अलावा, अपने टीचर्स के अलावा, आपके पास और भी बहुत संसाधन हैं, जैसे कि आप एआई अपने किसी पेरेंट्स की मदद से या अपने किसी बड़े की मदद से भी एआई के जरिए भी सीख सकते हैं, आप इंटरनेट के जरिए सीख सकते हैं। तो आप अपने सारे रिसोर्सेस को यूज करके अपने मन को इस तरह से अगर आप सीखेंगे तो आगे जाके आपका वैज्ञानिक बनने का जो सपना है वो अवश्य पूरा होगा।
1: डॉक्टर राजीव बहल, आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए और शाइन के बारे में जानकारी देने के लिए, देश के युवा बच्चे कैसे इससे जुड़ सकते हैं, कैसे वैज्ञानिक अनुसंधान में जा सकते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे शाइन 2026, युवाओं को स्वास्थ्य अनुसंधान से जोड़ने की पहल पर स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग में सचिव एवं आईसीएमआर महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल के साथ हर्ष रंजन की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम कंट्री वाइड, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडिश पर हमारी नशा जारी है। हर घर तिरंगा मुहिम के सिलसिले में एक खसूसी प्रोग्राम सुनिए।
4: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
5: तिरंगा सिर्फ तीन रंगों में सिमटा हुआ एक परचम नहीं, बल्कि करोड़ों हिंदुस्तानियों के फख्र, खुददारी और हुब्बुल वतनी की पहचान है। जब भी तिरंगा आसमान में लहराता है, हर हिंदुस्तानी का सर फख्र से बुलंद हो जाता है। और जब यही तिरंगा हर घर की छत पर लहराता है तो पूरा मुल्क एक लड़ी में बंधा हुआ नजर आता है। यौमे आजादी के मौके पर मुल्क एक बार फिर हुब्बुल वतनी के रंग में रंगने के लिए तैयार है। इसी जज्बे को घर घर पहुंचाने के लिए मरकजी हुकूमत ने 9 अगस्त से मुख्तलिफ प्रोग्रामों और इकदामात का आगाज किया है। इनमें हर घर तिरंगा मुहिम सबसे नुमाया है। एक ऐसी मुहिम जिसमें तिरंगे को महज एक कौमी अलामत से आगे बढ़ाकर हर हिंदुस्तानी के जज्बाती रिश्ते का हिस्सा बना दिया है। हर घर तिरंगा मुहिम का आगाज आजादी के अमृत महोत्सव के तहत किया गया था। इसका मकसद था कि लोग तिरंगे को अपने घरों तक लाएं और यौमे आजादी के मौके पर इसे लहराकर मुल्क के प्रति अपने एहतराम और अहद का इजहार करें। इस मुहिम के पीछे एक इंतहाई जज्बाती ख्याल कार फरमा है। अब तक हमारा कौमी परचम ज्यादातर सरकारी और इदारा जाती तकरीबात का हिस्सा रहा है। हर घर तिरंगा मुहिम ने इस रस्मी रिश्ते को एक जाती और जज्बाती रिश्ते में बदलने की कोशिश की। जब तिरंगा घर घर पहुंचा तो ऐसा महसूस हुआ जैसे मुल्क के हर खानदान का रिश्ता कौमी फख्र से मजीद गहरा हो गया हो। ये मुहिम हुब्बुल वतनी के जज्बे को मजबूत करने के साथ साथ लोगों को हिंदुस्तानी कौमी परचम की तारीख, इसकी अहमियत और इसकी अजमत से वाकिफ कराने का भी जरिया बनी है। इस साल हर घर तिरंगा मुहिम का इनकाद खास तौर पर अहम है। ये मुहिम वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने के मौके पर वक्फ की गई है। मुल्क के कौमी गीत वंदे मातरम में मादरे वतन के तई मोहब्बत, कुर्बानी और ईसार का जो जज्बा पोशीदा है, उसे इस बार

हर घर तिरंगा मुहिम के साथ जोड़ा गया है। मुहिम के पांचवें एडिशन के तहत मुल्क भर में कई रंगारंग प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। इनमें तिरंगा यात्राएं, तिरंगा रैलियां, तिरंगा कॉन्सर्ट्स और वंदे मातरम की इज्तमाई गायकी खास तौर पर काबिले जिक्र हैं। गुज़श्ता चार बरसों में हर घर तिरंगा एक सरकारी पहल से आगे बढ़कर एक अवामी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर चुका है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रहने वाले और समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने इस मुहिम को पूरे जोशो खरोश और गर्मजोशी के साथ अपनाया है। ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोग्रामों में अवाम की शिरकत ने इस तहरीक को मजीद वसी और मुअसर बनाया है। आज तिरंगा सिर्फ सरकारी इमारतों या अवामी तकरीबात तक महदूद नहीं है, वो मुल्क के करोड़ों घरों तक पहुंच चुका है और हर घर में लहराता हुआ तिरंगा मुल्क के तई एहतराम, इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम दे रहा है। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत एक और मुनफरिद पहल शुरू की गई है, सूर्यपथ तिरंगा। मरकजी वजीर सकाफत और सियाहत गजेंद्र सिंह शेखावत ने गुज़श्ता हफ्ते नई दिल्ली में इस पहल का ऐलान किया। सूर्यपथ तिरंगा को एक अलामती आलमी तिरंगा रिले के तौर पर पेश किया गया है। इसका रास्ता सूरज के तुलू होने की समत की पैरवी करेगा। हिंदुस्तान के मशरकी सिरे पर वाके उस हिंदुस्तानी मिशन या पोस्ट से जहां सबसे पहले सूरज तुलू होता है, कौमी परचम को बाकायदा तौर पर लहराया जाएगा। इसके बाद ये सिलसिला मशरक से मगरिब की जानिब आगे बढ़ेगा। गोया तिरंगा दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में सूरज की रोशनी के साथ साथ सफर कर रहा हो। इस पहल के जरिए दुनिया भर में मौजूद हिंदुस्तानी मिशनों और बैरून मुल्क मुकीम हिंदुस्तानी बिरादरी को भी यौम आजादी की तकरीबात से जोड़ा जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए मुल्क के अवाम से हर घर तिरंगा मुहिम में पूरे जोश व खरोश के साथ हिस्सा लेने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि तिरंगा हिंदुस्तान के फख्र की अलामत है और हर शहरी के लिए मुल्क की तामीर में अपना बेहतरीन किरदार अदा करने की मुसलसल तहरीक है। वजीर आजम ने इस बात पर भी खुशी का इजहार किया है कि इस साल की हर घर तिरंगा मुहिम वंदे मातरम के 150वें साल के नाम वक्फ है। हिंदुस्तान का कौमी परचम सिर्फ एक परचम नहीं है, ये हिंदुस्तान की आजादी की कहानी है, ये हमारे जाबाजों की कुर्बानियों की याद है, ये मुल्क के फख्र, इत्तेहाद और सालमियत की अलामत है। जाफरानी रंग हिम्मत और कुर्बानी के जज्बे का पैगाम देता है। सफेद रंग अमन और सच्चाई की अलामत है। सब्ज रंग खुशहाली और तरक्की की उम्मीद को जाहिर करता है और इन तीनों रंगों के दरमियान मौजूद अशोक चक्र हमें मुसलसल आगे बढ़ते रहने की तहरीक देता है। हिंदुस्तानी कौमी परचम, जिसे हम प्यार से तिरंगा कहते हैं, आवाम के जज्बात और कौमी शऊर में एक खास मुकाम रखता है। कौमी परचम की मौजूदा शक्ल मशहूर मुजाहिदे आजादी, माहिर तालीम और कई जबानों के आलिम पिंगली वेंकैया ने डिजाइन की थी। पिंगली वेंकैया की पैदाइश 2 अगस्त सन 1876 को हुई थी और उनका इंतकाल 4 जुलाई सन 1963 को हुआ। उन्होंने 1 अप्रैल सन 1921 को विजयवाड़ा में महात्मा गांधी से मुलाकात के दौरान कौमी परचम का डिजाइन पेश किया था। इसके बाद 22 जुलाई सन 1947 को दस्तूर साज असेंबली के इजलास में हिंदुस्तान के कौमी परचम को इसकी मौजूदा शक्ल में इख्तियार किया गया। यौम आजादी और यौम जमहूरिया जैसे कौमी त्योहारों पर तिरंगे को पूरे एहतराम और वकार के साथ लहराया जाता है। आज हर घर तिरंगा सिर्फ एक मुहिम नहीं है, ये उस जज्बे का जश्न है जो हमें अलग अलग जबानों, सकाफतों और रवायात के बावजूद एक कौम के तौर पर जोड़ता है। जब किसी घर की छत पर तिरंगा लहराता है तो वहां सिर्फ एक परचम नहीं लहराता, वहां हिंदुस्तान का फख्र लहराता है। आइए इस यौम आजादी पर
ترنگے کو اپنے گھر لائیں، اس کی عظمت کو سمجھیں اور ملک کی تعمیر میں اپنے کردار کا عہد کریں، کیونکہ ترنگا ہمارا فخر ہے، ترنگا ہماری پہچان ہے، اور ترنگا ہی ہمارے ملک کے تئیں ہمارے احترام اور عہد کی شان ہے۔ ہر گھر ترنگا، ہر دل ترنگا، اور ہر ہندوستانی کے دل میں ہندوستان کے لیے اٹوٹ محبت اور فخر۔

हर तिरंगा मुहिम सिलसिले के तहत अभी आप एक खसूसी प्रोग्राम सुन रहे थे। तरतीब पेशकश नवीन कुमार की थी, रावी थी सबीहा फजल। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। लीजिए सुनिए फिल्मी नाम में प्रोग्राम है मेरी पसंद।

क्लर्क फिल्म का ये हुब्बुल वतनी का नगमा आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में। और लीजिए अब सुनिए मुकेश और साथियों का गाया हुआ हम हिंदुस्तानी फिल्म का ये नगमा।

इंदिवर का लिखा हुआ नगमा कल्याण जी आनंद जी की मौसीकी में आप सुन रहे थे। महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में फिल्म थी पूरब और पश्चिम। ओली जी, प्रोग्राम के आखिर में सुनिए काबुलीवाला फिल्म का नगमा मन्नाडे का गाया हुआ।

0: गया और मुल्क के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले की ऊंची फसीलों पर खड़े होकर आजादी की मुबारकबाद दी और मुस्तकबिल के मंसूबे बनाए।
1: हमने एक बाजी लगाई थी, एक इकरार किया था, प्रतिज्ञा की थी, अब वक्त आया कि हम इसको पूरा करें। बिल्कुल पूरी तो शायद अब भी न हो, लेकिन फिर भी एक बड़ी मंजिल पूरी हुई, हम वहां पहुंचे। चंद मिनट में ये असेंबली एक पूरी तौर से आजाद खुदमुख्तार असेंबली होगी। ये असेंबली नुमाइंदगी करेगी एक आजाद खुदमुख्तार मुल्क की। नाचे इसके ऊपर जबरदस्त जिम्मेदारियां आती हैं। अच्छा है कि हम इस वक्त खास तौर से इस बात को याद रखें, इस आजादी के दरवाजे पर जब हम खड़े हैं, कि हिंदुस्तान किसी एक फिरके का मुल्क नहीं है, एक मजहब वालों का नहीं है, बल्कि बहुत सारे बहुत किस्म के लोगों का है, बहुत धर्म और मजहबों

0: आजाद हिंदुस्तानियों ने अपनी खुशी का जश्न अभी मनाया भी न था कि मुल्क का बंटवारा हो गया। खून, हंगामा, फिसाद और लूट खसूट के बाद दो मुल्कों ने अपनी आंखें खोली और तरक्की के मंसूबे बनने लगे।
1: अब हिंदुस्तानी एक ऐसे मुल्क का ख्वाब देख रहे थे जहां गरीबी, जहालत, बीमारी और बेइंसाफी का हमेशा के लिए खात्मा किया जा सके।
0: लेकिन अभी भी हिंदुस्तान को एक लंबा सफर तय करना था, आजादी का एक ऐसा सफर जिसमें ऐसी मशाल जलाई जा सके जो हमारी निजामे हयात की निशानदेही कर सके, और वो मशाल है हमारा आईन।
1: इस अहम दस्तावेज में वो तमाम बातें और कवानीन महफूज कर दिए गए जो आजाद हिंदुस्तान को एक सेक्युलर और जमहूरी मुल्क होने का मर्तबा अता करते हैं।
0: सन 1947 में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो उस वक्त हमारे मुल्क की तकरीबन 35 करोड़ आबादी थी, मगर आज हिंदुस्तान की आबादी लगभग 100 करोड़ है। पिछले 50 बरस से ज्यादा अरसे में हमारी आबादी में 65 करोड़ का इजाफा हुआ है, जबकि अनाज उगाने वाली जमीन तो और भी छोटी हो गई।
1: हमारे सियासी रहनुमाओं और साइंसदानों ने इस मसले पर संजीदगी के साथ गौर किया और हमारी हुकूमत ने पहले 5 साला मंसूबे में सबसे ज्यादा तरजीह खेतीबाड़ी को दी, जिसमें 19 अरब 60 करोड़ के खर्च से दरियाओं पर बांध तामीर किए गए, कुएं और तालाब बनवाए ताकि खेतों को मुनासिब पानी मिल सके और अनाज की पैदावार में इजाफा हो सके।
0: इस तरह आजादी के बाद पहले 5 सालों को सब्ज इनकलाब या ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से याद किया जाता है। बिजली, कारखानों, रसलो रसाइल, पक्की सड़कें, सेहत, तालीम और अच्छी रिहाइश, ऐसे मसले थे जिनको अब खुद इसी मुल्क को तय करना था।
1: दूसरे 5 साला मंसूबे में नुमाया तौर पर फौलाद, बिजली, सीमेंट, कीमियावी खाद और दूसरी मशीनों को बनाने में 47 अरब रुपए खर्च किए गए,
0: जिससे हमारा मेयार जिंदगी भी बेहतर हुआ और इक्तिसादी सूरत हाल भी सही हुई और पूरे मुल्क में खुशहाली की हल्की सी लकीर दिखाई देने लगी।
1: इसी तरह तीसरे 5 साला प्लान में 85 अरब 76 करोड़ रुपए के खर्च से एक तरफ तो मुल्क की बढ़ती हुई आबादी को काबू में लाने की कोशिश की गई और साथ में अस्पताल, दवाखाने, दवाएं और आला डॉक्टरों की तादाद में इजाफा हुआ और मेयारी तिब्बी इमदाद का इंतजाम किया गया।
0: तालीम के लिए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां कायम की गईं। साइंस, टेक्नोलॉजी और सनत व हिरफत की तरक्की के लिए चौथे मंसूबे में 1 खरब 59 अरब 2 करोड़ रुपए सर्व किए गए।
1: आज का ये हिंदुस्तान सामाजिक, इक्तसादी और मुआशी नुक्ते नजर से हर शोबे में खुद कफील हो गया है।
0: मुल्क ने खवातीन की हालत इजार को बेहतर बनाने के मंसूबे तैयार किए। अब औरत घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर स्कूल, कॉलेज, दफ्तर और अस्पतालों, तजर्बे गाहों और खेल के मैदानों में अपनी पहचान बना रही है।
1: मंसूबे बनते रहे और भारत की धरती अपने सीने से अनाज उगलती रही, नदियां अपने प्यासे हमवतनों की प्यास बुझाती रही और हिंदुस्तान दुनिया के दूसरे मुल्कों के साथ मुकाबले की दौड़ में जमीन से आसमान तक बुलंदियों में परवाज करता रहा।
0: हमारे तजुर्बेकार इंजीनियर और साइंसदान समंदर के तहों में नई दुनिया आबाद करने के सुराग लगाने लगे और कुछ लोग आसमानों की बुलंदियों को फलांग कर चांद पर हिंदुस्तान का झंडा लहरा आए।
1: धीरे धीरे हमारे मुल्क के मंसूबे बरुएकार हुए और दुनिया की बड़ी ताकतों में हमारा भी शुमार होने लगा।
0: हमने अमन और जंग दोनों में जीने का सलीका सीख लिया है। हमें मिसाइल जैसे तेज रफ्तार और जबरदस्त हथियार बनाना भी आता है और प्यार और मोहब्बत के साथ किसी से हाथ मिलाना भी।
1: रेलगाड़ियों, हवाई जहाज, मोटरों और बसों में हैरत अंगेज इजाफा हुआ है और दूरियां दिनों से घंटों में तब्दील होने लगी हैं। कंप्यूटर, टीवी और रेडियो की मांग और जरूरत ने इंसान को इंसान से करीब तर कर दिया है।
0: मोबाइल और सेलफोन ने इंसानी रिश्तों को और भी मजबूत कर दिया है। अब मोहब्बत करने के तरीके और अंदाज बदलने लगे हैं
1: और हर इंसान लम्हों की कद्र करने लगा है।
0: खबरों का जाल पूरी दुनिया में इस तरह फैल गया है कि पलक झपकते ही दुनिया मुट्ठी में कैद हो जाती है।
1: जी हाँ, क्योंकि ये 21वीं सदी है और इस आजाद हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा इंटरनेट पर अपनी उंगलियां रखकर कुछ भी करने की अहलियत रखता है।
0: हमारा मेयार जिंदगी पहले से बहुत ऊंचा हुआ है। अब हम ज्यादा आरामदेह मकानात और ज्यादा सेहतमंद मकामात में रहने लगे हैं।
1: अब दुनिया की बड़ी ताकतों और खुशहाल ममालिक में हमारा भी शुमार होता है
0: और अमरीका जैसे ताकतवर मुल्क भी हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी का एहतराम करते हैं।
1: इसके बावजूद अब भी बहुत कुछ हमें करना है, ढेर सारे काम अब भी बाकी हैं।
0: अपने मुल्क की उस आजादी की हिफाजत करना जो हमारे बुजुर्गों ने हमें अपने सीनों पर गोलियां खाकर और सौबत झेल कर दी है।
1: हमें अपनी उन रवायात की पासबानी करना है जो हमारे मुल्क की हजारों साल पुरानी तहजीब का हिस्सा है।
0: हमें नफरत, दुश्मनी, अदावत और बम धमाकों की आवाजों को हमेशा के लिए नेस्तो नाबूद कर देना है
1: और मोहब्बत, दोस्ती, अमन और शांति के उस जज्बे को बेदार करना है जो हिंदुस्तान की आन बान शान और पहचान रहा है। हम जंग नहीं, अमन के पुजारी हैं।
0: आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने जहन के दरीचों को खोलकर आने वाले मुस्तकबिल और नई नस्लों को लब्बैक कहें। हम एक वतन के आजाद शहरी हैं और आजादी के साथ तमाम

0: मिशन को हाथ में आगे लेकर बढ़ना है, जहां आने वाले आजाद हिंदुस्तान की नई नस्लें हमारा इंतजार कर रही हैं।
1: वो नस्लें हमारा ख्वाब भी हैं, हमारी ताबीर भी और मुस्तकबिल भी।
0: हमें उनसे और सिर्फ उनसे ये कहना है कि हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे।
2: सुन रहे थे डॉक्टर मेहनाज अनवर का तहरीर कदर फीचर आजादी का सफर। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशे की जाएंगी।
3: ये आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद कौनैन हैदर से खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 80वें यौम आजादी से कबल आज शाम मुल्क के लोगों से खिताब करेंगी। वजीर खारजा एस जयशंकर और लाइबेरिया की उनकी हम मनसब सारा बेसोलोव नयंती ने नई दिल्ली में दो तरफा बातचीत की। पहले भारत इसराइल हैकाथन में हिजानी सेहत और बाजाबादकारी से मुतालिक चैलेंजों का हल तकनीक के जरिए निकालने में दोनों मुल्कों के नौजवान इख्तिराकारों ने सरगर्मी के साथ हिस्सा लिया। और कनाडा ओपन टेनिस में इगा श्वाटिक ने खवातीन सिंगल्स का टाइटल जीता है, जबकि अमेरिका के बेन शेल्टन ने मर्दों का सिंगल्स टाइटल हासिल किया। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 80वें यौम आजादी से कबल आज शाम मुल्क के लोगों से खिताब करेंगी। सदर जमहूरिया का यह खिताब आकाशवाणी के पूरे कौमी नेटवर्क पर शाम 7 बजे से नशर किया जायेगा। दूरदर्शन के सभी चैनलों पर पहले यह खिताब हिन्दी में टेलीकास्ट किया जाएगा और उसके बाद अंग्रेजी में होगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में इस खिताब के टेलीकास्ट के बाद दूरदर्शन के इलाकाई चैनलों पर इसे इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। इधर आकाशवाणी से भी सदर जमहूरिया का यह खिताब मुतल्लिका इलाकाई नेटवर्क पर रात 9:30 बजे इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। आज मुल्क की तकसीम की हौलनाकी की याद का दिन है। आज उन सभी लोगों को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है जिन्होंने 1947 में मुल्क की तकसीम के दौरान नाकाबिले तसव्वुर दुख और तकलीफ का सामना किया और अपनी जान कुर्बान कर दी। तकसीम की हौलनाकी को याद करने के दिन के मौके पर कौमी राजधानी समेत मुल्क भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनाकिद किए जा रहे हैं। मुल्क की तकसीम के सबब अपनी जान गंवाने वाले और अपने आबाई वतन से बेघर हुए लोगों को खिराज अकीदत पेश करने और उनकी कुर्बानियों को याद करने के लिए हुकूमत ने साल 2021 में हर साल 14 अगस्त को यह दिन मनाने का फैसला किया था। यह दिन इस बात को यकीनी बनाता है कि आइंदा नस्लें आजाद भारत के वजूद में आने के वक्त हुए तशद्दुद के दौरान लोगों के दर्द और मुश्किलात को याद रखें। आज का दिन लोगों को माशरती तकसीम इंतशार के जहर को खत्म करने और यकजहती समाजी हम आहंगी और लोगों को बाख्तियार बनाने के जज्बे को मजीद मजबूत बनाने की जरूरत की याद दिलाता है। मुल्क की तकसीम के सबब इंसानी तारीख की सबसे बड़ी नकल मकानी हुई जिससे तकरीबन 20 मिलियन लोग मुतासिर हुए। आजादी का जश्न मनाकर मुल्क उन लोगों को भी सलाम पेश कर रहा है जिन्होंने तशद्दुद के दौरान अपनी जानें कुर्बान कर दी। तकसीम की हौलनाकियों को याद करने के दिन के मौके पर वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने उन लोगों की हिम्मतों हौसले को याद किया जो मुल्क की तकसीम से मुतासिर हुए थे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने मुल्क की तकसीम को तारीख का एक ऐसा लम्हा करार दिया जिससे लोगों की जिंदगियां बिखर गईं, खानदान उजड़ गए, लोगों ने अपने अजीजों को खो दिया और इंतहाई मुश्किलात का सामना किया। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि इसके साथ ही लोगों ने इस मुश्किल को बर्दाश्त किया और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू की, सख्तियों को कामयाबी में बदला और मुल्क की तरक्की में बेपनाह तआवुन पेश किया। वजीर खाजा डॉक्टर एस जयशंकर और लाइबेरिया की उनकी हम मनसब सारा बेसोलोव नयंती ने कल नई दिल्ली में दो तरफा बातचीत की। उन्होंने टेक्नोलॉजी, ज़राअत, कानकनी, तवानाई, तिजारत और सरमायाकारी, तालीम, सलाहियत साजी और अवामी रवाबित समेत भारत लाइबेरिया दो तरफा ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे का जायजा लिया। उन्होंने बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और कसीर जहती मामलों पर भी तबादले ख्याल किया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा नई दिल्ली में लाइबेरिया के सिफारतखाने के इफ्तिताह के लिए लाइबेरिया की वजीर खारजा को मुबारकबाद पेश की। दोनों वुजरा ने अमन, तरक्की और आलमी खित्ते जनूब की मजबूत आवाज को आगे ले जाने की खातिर मुख्तलिफ फोरमों में तआवुन को मजबूत

0: करने पर भी बातचीत की। पहले भारत इसराइल हैकाथन में हिफ्जान सेहत और बाज़ाबादकारी से मुतालिक चैलेंजों का हल तकनीक के जरिए निकालने में दोनों मुल्कों के नौजवान इख्तिराकारों ने सरगर्मी के साथ हिस्सा लिया। इस हैकाथन का एहतमाम कुव्वत बख्श हिफ्जान सेहत के मौजू पर किया गया था। इसमें भारत और इसराइल के 1300 तलबा और दीगर अफराद ने हिस्सा लिया। इसराइल में भारत के सफीर जेपी सिंह ने हैकाथन जीतने वालों की इज्जत अफजाई की। मज़कूरा पहल से मुआशरे में वसीतर असरात के साथ हल निकालने के लिए नौजवान तलबा की तख्लीकी और तकनीकी काबिलियत को बरूएकार लाते हुए भारत और इसराइल के दरमियान अवाम से अवाम के राब्तों को मुस्तहकम बनाने का एक वसीला फराहम हुआ। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पाकिस्तान के शिमाल मगरबी खैबर पख्तूनख्वा सूबे में सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ एक तसादुम में कम अज कम 15 मिलिटेंट मारे गए जबकि कई जख्मी हुए। एक पुलिस एहलकार ने बताया कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज का एक मुश्तरका काफिला दुबांदू जांच चौकी की तरफ जा रहा था कि बालाई दिर जिले में बारीकोट गांव के नजदीक मिलिटेंट्स ने उस पर घात लगाकर हमला करने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई में 15 मिलिटेंट हलाक और कई जख्मी हुए। इस तसादुम के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा कर लिया और बकिया मिलिटेंट्स का पता लगाने के लिए तलाश की कार्रवाई शुरू कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रोन्स और उनके हिस्से पुर्जों की दरामद पर 100% तक के नए टैरिफ का ऐलान किया है और कहा है कि इस कदम का मकसद मस्कूरा सनत में गैर मुल्की सप्लायर्स पर अमरीका का इन्हिसार कम करना है जबकि बड़ी हद तक इस सनत में चीन का गलबा है। व्हाइट हाउस के एक बयान के मुताबिक कौमी सलामती वजूहात से यह फैसला किया गया है। आलमी सतह पर ड्रोन मार्केट में चीन का बड़ा रोल है। कई मुतालियात के मुताबिक ड्रोन तैयार करने वाली चीन की कंपनी DJI ने हालिया बरसों में आलमी ड्रोन मार्केट के 2/3 से ज्यादा हिस्से पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है। ये कंपनी 2006 में कायम की गई थी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने आज पहली बार जजायर कुरिल का दौरा किया। ये जजायर रूस के कंट्रोल में हैं जबकि जापान भी इन पर अपना दावा करता है। इनके इस कदम पर टोक्यो ने शदीद एहतजाज दर्ज कराया है। सदर पुतिन ने जजायर के सबसे जनूबी जजीरों में से एक इतुरूप जजीरे पर वाकई एक मछली के प्रोसेसिंग प्लांट, एक अस्पताल और एक स्कूल का दौरा किया। उन्होंने मकामी रिहायशियों से मुख्तसर बातचीत भी की और सखालिन खित्ते के गवर्नर वालेरी लेमारेंकू से मुलाकात की। जापान कोरल जजायर के चार सबसे जनूबी जजीरों पर अपने हक मिल्कियत का दावा करता है। दूसरी जंग अजीम के आखिरी दिनों में सोवियत यूनियन ने यह जजायर जापान से छीन लिए थे। इंग्लैंड में ईस्ट सुसेक्स में सियाहत टाउन लेविस के नजदीक एक मुसाफिर रेलगाड़ी के पटरी से उतर जाने के वाकये में 20 लोग जख्मी हुए हैं। बरतानवी नकलो हमल के पुलिस चीफ सुपरिंटेंडेंट डोमिनिक ने बताया कि इस हादसे में 2 अफराद बुरी तरह जख्मी हुए हैं जबकि 18 अफराद को हल्की चोटें आई हैं। तमाम मुसाफिरों को ट्रेन से बाहर निकाल लिया गया है। इस ट्रेन में तकरीबन 150 अफराद सवार थे और ये लंदन विक्टोरिया से ईस्ट बोर्न जा रही थी। उत्तराखंड के चमोली जिले में एक पनबिजली प्रोजेक्ट के मकाम पर जेर तामीर टनल में पानी के रिसाव, चट्टानों के टुकड़े गिरने के वाकये में 7 कारकुनों की मौत हो गई जबकि 14 जख्मी हुए। नजदीक के अस्पताल में जख्मियों का इलाज किया जा रहा है। हमारे नामा निगार ने बताया कि यह वाकया पीपलकोटी इलाके में टहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन प्रोजेक्ट मकाम पर पेश आया। इस हादसे की इत्तला मिलते ही जिला इंतजामिया, पुलिस, SDRF, NDRF, फायर सर्विस और तिब्बी महकमे की टीमें वहां पहुंच गई। चमोली के जिला मजिस्ट्रेट गौरव कुमार ने वहां बचाव कार्रवाई की निगरानी की। नेपाल में रोल्पा जिले में जमीनी तोदे खिसकने की वजह से कम अज कम 7 अफराद हलाक हुए हैं और 5 दीगर लापता हुए हैं। जमीनी तोदे खिसकने का यह वाकया बुध की शाम काठमांडू से 450 किलोमीटर मगरिब में थावांग देही म्यूनिसपैलिटी के कोटलबारा गांव में भारी बारिश के बाद पेश आया। कनाडा ओपन टेनिस में इगा श्वातिक ने एलेना राबिकाना को हराकर खवातीन सिंगल्स का टाइटल जीत लिया है। कल रात टोरंटो में खेले गए फाइनल में 7वें नंबर की इगा श्वातिक ने दूसरे नंबर की खिलाड़ी एलेना राबिकाना को 6-2 और 6-3 से हराकर सीजन का अपना पहला टाइटल हासिल किया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 80वें यौम आजादी से कबल आज शाम मुल्क के लोगों से खिताब करेंगी। वजीर खारजा एस जयशंकर और लाइबेरिया की उनकी हम मनसब सारा बेसोलोव नयंती ने नई दिल्ली में दो तरफा बातचीत की। पहले भारत इसराइल हैकाथन में हिफान सेहत और बाजाबादकारी से मुतालिक चैलेंजों का हल तकनीक के जरिए निकालने में दोनों मुल्कों के नौजवान इख्तिराकारों ने सरगर्मी के साथ हिस्सा लिया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस मिले स्वर मेरा तुम्हारा। इस प्रोग्राम में आज सुनिए हुब्बुल वतनी के चंद नगमे। आगाज द लेजेंड ऑफ भगत सिंह फिल्म के नगमे से, आवाजें एआर रहमान और सुखविंदर सिंह की, नगमा निगार समीर, मौसीकी एआर रहमान की।

वाणिज्य सुनिए बोस द फॉरगेटन हीरो फिल्म का नगमा सोनू निगम और अनुराधा श्रीराम का गाया हुआ, मौसीकी ए आर रहमान की।

0: मैं यसुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से। ये प्रोग्राम अभी जारी है, आइए पहले सुनते हैं तारीख साज प्रोग्राम। आज का मौजू है आजादी।
1: हिन्दुस्तान की आजादी की तारीख 15 अगस्त 1947 से शुरू होती है, लेकिन अगस्त की 15 तारीख को एक नए आजाद और वसीतर मफहूम की अलामत बनने के लिए जिद्दोजहद की एक तवील तारीख के मंजरनामे से गुजरना पड़ा है। इस गुजरी हुई तारीख का सिलसिला सन 1857 और इससे भी बहुत पहले से शुरू होता है, लेकिन आजादी की इस तवील जिद्दोजहद की दास्तान बहुत तवील है और इस दास्तान में ऐसे लाफानी नामों की शमूलियत है जो खुद अपने तौर पर और अपनी जात में एक मुकम्मल तारीख है। माजी करीब के आईने में देखा जाए तो दूसरी जंग अजीम के खात्मे तक हिन्दुस्तान की तहरीक आजादी एक फैसला कुल मोड़ तक पहुंच चुकी थी और इन मराहल में हिन्दुस्तानी आवाम एक नई सुबह के मुंतजर थे और फिर इस सुबह की ताबानी में हिन्दुस्तान की वसी और अरीज धरती पर आजादी के फूल महकने लगे। दूसरी जंग अजीम के इख्तिताम तक बरतानवी साम्राज्य को भी यकीन हो चुका था कि अब हिन्दुस्तान एक नए और तारीख साज दौर में दाखिल होने वाला है। चुनाचे बरतानवी हुकूमत ने उन सियासी रहनुमाओं को कैद खानों से बाहर निकाला जो कई बरसों तक कैदोबंद की सौबतें झेल रहे थे और जिनके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर हिंदुस्तानी आवाम अपनी आजादी के लिए हर सतह पर जिद्दोजहद में मसरूफ थे। जून सन 1945 में लॉर्ड वेवल ने हिंदुस्तान की खास खास सियासी जमातों की एक कॉन्फ्रेंस शिमला में बुलाई। लॉर्ड वेवल एक ऐसी मजलिस मुंतजिम को कबूल करने पर रजामंद था जिसमें हिंदुस्तानियों को अक्सरियत हासिल हो, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगुशुनीद का सिलसिला उस वक्त टूट गया जब मुस्लिम लीग ने यह मतालबा किया कि वो मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है और मुस्लिम मेंबरान को वही नामजद करेगी। इस दौरान में बरतानिया में लेबर पार्टी बरसरे इख्तदार आ गई और दूसरी जंग अजीम के खत्म हो जाने के सबब हिन्दुस्तान में अंग्रेजों ने इमरजेंसी को भी खत्म कर दिया। इसके बाद सूबाई और मुल्की मजालिस आईन के लिए इंतखाबात कराए गए, लेकिन सियासी बेइत्मीनानी बराबर बढ़ती रही जिसका नुमाया इजहार आईएनए के अफराद के मुकदमे, हिंदुस्तानी समुद्री बेड़े के लोगों की बगावत और हिंदुस्तानी हवाई फौज की हड़ताल की सूरत में हुआ। इस सूरत हाल को बरतानवी हुक्मरानों ने जाबिराना अंदाज से बदलने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। लेबर पार्टी की बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तान की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक पार्लिमानी वजीर को भेजा। इसके बाद मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन हिन्दुस्तान आया और हिन्दुस्तानी लीडरों से तबादला ख्याल किया। ये मिशन नाकाम हो गया, लेकिन लेबर हुकूमत ने हिंदुस्तान में एक उबूरी हुकूमत कायम करने का फैसला किया ताकि दस्तूर साज असेंबली के जरिए आजाद हिंदुस्तान का दस्तूर तैयार हो सके। सन 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जेर क्यादत उबूरी हुकूमत बनी। इसमें बाद में मुस्लिम लीग भी शामिल हो गई, लेकिन उसने दस्तूर साज असेंबली में शिरकत से इंकार कर दिया। फिर लंदन में बरतानवी वजीरों के साथ हिन्दुस्तानी रहनुमाओं की एक मीटिंग हुई, लेकिन मसाइल का फैसला कुन हल बरामद नहीं हो सका। ताहम बरतानवी वजीर आजम मिस्टर एटली ने 20 फरवरी 1947 को ऐलान कर दिया कि बरतानिया जून 1948 तक हिंदुस्तान छोड़ देगा। इसके बाद इख्तदार की मुंतकली के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को नया वायसराय बनाकर हिंदुस्तान भेजा गया। 3 जून 1947 को वो एक मुत्तफिका मंसूबा पेश करने में कामयाब हो गए। मुस्लिम लीग का मतालबा पाकिस्तान तस्लीम कर लिया गया और ये तय पाया कि 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद कर दिया जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन तारीखी लम्हात के तकाजों और जज्बात की तर्जुमानी करते हुए दस्तूर साज असेंबली में 14 अगस्त 1947 को आधी रात से कुछ ही पहले अपनी तकरीर में कहा था, बहुत जमाना गुजरा, हमने मुकद्दर से पैमान किया था और आज उस वक्त की आमद आमद है जब हम कुल्ली या मुकम्मल तौर पर तो नहीं मगर एक माकूल हद तक अपने अहद को पूरा करेंगे। रात के 12 बजे जबकि दुनिया महवे ख्वाब होगी, हिंदुस्तान अपनी नई जिंदगी और आजादी के साथ बेदार होगा। ये उन लम्हात की आमद है जो तारीख में शाज़ो नादिर ही आते हैं, वो लम्हात जब हम एक नई दुनिया में कदम रखते हैं, जब एक अहद खत्म होता है और जब एक तवील मुद्दत की जाबिराना जुबान बंदी के बाद एक कौम की रूह की गोयाई नसीब होती है। ये मुनासिब वक्त है कि इन अजीम मुकद्दस लम्हात में हम इस बात का अहद करें कि हम हिंदुस्तान और इसके आवाम की खिदमत के लिए और इससे भी वसीतर मकासिद यानी दुनिया भर के इंसानों की भलाई के लिए खुद को वक्फ कर देंगे। 15 अगस्त जवाहरलाल नेहरू के इन अल्फाज और हिंदुस्तान की आजादी के नए अहद की तारीख साज अलामत है।
0: ابھی آپ سن رہے تھے تاریخ ساز پروگرام، موضوع تھا آزادی، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، پروگرام جاری ہے ملے سر میرا تمہارا۔

0: करवा फिल्म के इस नगमे के साथ ही मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए निजी निवेश और विकास के लिए ब्रिक्स देशों में बढ़ते सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रही है पूर्व राजदूत जितेंद्र कुमार त्रिपाठी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अम्बरीश सक्सेना।
2: आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे निजी पूंजी जुटाने और विकास के वित्त पोषण के लिए ब्रिक्स सहयोग, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भूतपूर्व राजदूत जितेंद्र कुमार त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: नमस्कार
2: त्रिपाठी जी। जैसा हमें पता है कि अभी ब्रिक्स के जो वित्त मंत्री हैं और जो केंद्रीय बैंक्स के गवर्नर्स हैं उनकी मीटिंग जयपुर में हुई, जिसमें बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, और खास तौर से जो हम वित्त विकास की जब हम बात करते हैं और विकास के लिए जो पूंजी के मोबिलाइजेशन को या पूंजी को जुटाने की बात करते हैं, और इसमें ब्रिक्स की मीटिंग थी, तो निश्चित रूप से इस दिशा में ब्रिक्स के देशों के बीच में किस तरह का तालमेल, कैसा सहयोग हो सकता है, इस बारे में विशद चर्चा हुई। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा त्रिपाठी जी कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि ये पूरा विषय क्या है, जब हम विकास के लिए वित्त जुटाने की बात करते हैं और पूंजी की हमें जरूरत होती है विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, तो ये पूरा विषय, पूरा संदर्भ क्या है, आप सरल भाषा में हमारे श्रोताओं को बताएं।
3: धन्यवाद अमरीश जी। ऐसा है कि किसी भी देश के विकास के लिए पूंजी की जरूरत होती है। ब्रिक्स प्लस में जितने भी देश हैं सभी विकासशील देश की श्रेणी में हैं, और इन देशों में विकास के लिए तरह तरह की परियोजनाएं, सड़क परियोजना, जल मार्ग परियोजना, एयरपोर्ट के तटीय परियोजनाएं, बिजली, पानी, कम्युनिकेशन, इन सब की जो परियोजनाएं होती हैं उनकी जरूरत होती है, और इस परियोजना के लिए हर काम के लिए जैसे पूंजी की जरूरत होती है वैसे ही इन सब परियोजनाओं के लिए जरूरत होती है। अब ये पूंजी कहाँ से जुटाई जाए, इसके तीन तरीके होते हैं। एक तो देश की सरकार के पास जो इनकम टैक्स से, जो कस्टम से, कलेक्शन से जो रेवेन्यू आती है उससे खर्चा किया जाए। दूसरा खर्चा किया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर के किया जाए, और तीसरा है कि प्राइवेट पार्टी से वित्त पोषण कराया जाए, चाहे वो पूरी तरह प्राइवेट हो, चाहे वो पीपीपी में हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हो। अब देखिए जो धनी सरकारें हैं या जो बड़ी सेंट्रलाइज सरकारें हैं जैसे चीन की हुई या रूस की या कहीं डिक्टेटरशिप की सरकार है, वो तो सरकार जो है वो पैसे पर बैठी रहती है, उसको जितना चाहे जिस हिसाब से चाहे खर्च करती है, अपने नागरिकों की भले ही भलाई ना हो उसमें डायरेक्टली, लेकिन फिर भी वो खर्च करती है, उसको तो दरकिनार करके भी उनकी बेसिक जरूरत हो, जैसे स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा हुआ, इन सबको दरकिनार करते हुए भी करीब करीब। लेकिन डेमोक्रेटिक सरकारें जो होती हैं, लोकतांत्रिक सरकारें, उनके सामने सिर्फ विकास परियोजनाएं नहीं होती बल्कि कई और चीजें होती। एक तो सरकार का खर्चा, दूसरा उनके जो संस्थान हैं, उनकी संसद है, उनके सभाएं हैं, सरकारी खर्चे हैं, उनके जो अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो उनके रेलवे वगैरह चल रही, उनके लोगों की तनख्वाहें वगैरह, तो विकासशील देशों के पास इतना पैसा नहीं होता सरकारों के पास कि वो स्वयं इसमें सारा कुछ कर सके। इसलिए आपने देखा होगा कि उनका बजट हमेशा घाटे का बजट होता है। अब अगर उनके पास ये पैसा नहीं है तो वो या तो कुछ हद तक विश्व की संस्थाओं से, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से, लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से जुटाएंगे या कुछ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से जुटाएंगे। हमारे यहाँ अभी तक समस्या ये थी कि हमारे यहाँ पिछले 20-25 साल पहले तक तो प्राइवेट पार्टनरशिप की बात ही नहीं थी। प्राइवेट जो है वो ये माना जाता था कि प्राइवेट बिजनेस है वो सिर्फ अपनी भलाई के लिए काम करेगा और उससे किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन बाद में ये समझा जाने लगा कि बिजनेसमैन भले ही अपना प्रॉफिट ले, अपना लाभ हो, लेकिन अगर वो एक प्रोजेक्ट करता है तो उससे टर्शियरी एम्प्लॉयमेंट भी होता है, उससे और भी तरह के फायदे होते हैं। अगर वो सड़क बनाता है तो सड़क बनाने का मतलब ये नहीं है, सड़क बनाता है या सड़क है बस चलाता है समझिए, तो बस चलाने वाला जो है वो सिर्फ बस से किराया वसूल करेगा, उसका फायदा तो होगा लेकिन उससे भी मोबिलिटी बढ़ जाएगी लोगों में, लोग एक जगह दूसरी जगह जाएंगे, व्यापार बढ़ेगा, ये एक दूसरा फायदा होता। तो अब इस चीज को समझा गया है।
2: इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे आपने जिक्र किया बाद में ऐसा होने लगा, तो मैं समझता हूँ कि जो आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई 1990 के दशक में, उसके बाद से जिस तरह से अर्थव्यवस्था भारत की और तमाम जो विकासशील राष्ट्र हैं उनकी खुली, तो ये जो निजी पूंजी का प्रवाह उसके साथ ही बढ़ा। अगर आप इसके बारे में और कोई जानकारी देना चाहें, और साथ ही जो ये निजी पूंजी जब आती है या जो पूंजीपति हैं वो अपना धन लगाते हैं, तो सरकार और निजी पूंजीपति के बीच में जो विकास के लिए सहयोग है उसके क्या मुख्य ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिसमें दोनों एक साथ आते हैं?
3: जो भी ऐसी विकास परियोजनाएं हो रही हैं उसका एक पहले प्रारूप एक खाका होता है कि ये सड़क ऐसे बनेगी या एयरपोर्ट ऐसे डेवलप होगा या रेलवे ट्रैक ऐसे डेवलप होगा या ये स्टेशन ऐसे डेवलप होगा या बिजली घर ऐसा डेवलप होगा। तो जो वो डेवलपमेंट होता है तो एक तो ये परियोजना का होता है कि जितना काम कहा गया है उतना होना चाहिए, उतने समय में होना चाहिए और उतनी गुणवत्ता के साथ होना चाहिए। ये पैरामीटर, इसके साथ ही ये पैरामीटर है कि अगर आप वो कार्य कर रहे हैं तो काम में गुणवत्ता में कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, कोई समझौता नहीं होना चाहिए। वर्कर्स जो हैं उनके हित को भी ध्यान में रखना चाहिए, उनके स्वास्थ्य पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज ये भी है कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल अब्रॉड नहीं होनी चाहिए इतनी। ठीक है, आप अगर बाहर से आ रहे हैं इन्वेस्ट करने तो ठीक है, आप उसका पैसा ले जा सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप सारे का सारा पैसा वहां ले जाएं और यहां पर इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ ना हो। ये भी इसमें ये पैरामीटर में होता है कि आपकी जितनी अर्निंग होगी, जितनी आपकी आय होगी, उसका इतना प्रतिशत आपको यहीं पे फिर से निवेश करना होगा। तो ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके अंतर्गत सरकारें और व्यक्तिगत या कॉर्पोरेट समझौता करते हैं।
2: जी, और चूंकि ये हम बात कर रहे हैं जो ब्रिक्स के अभी मीटिंग हुई, जो बैठक हुई उसके संदर्भ में, तो अगर मैं ये जानना चाहूँ आपसे कि जो निजी क्षेत्र है, जैसे हम भारत की बात करें तो भारत में ही निजी क्षेत्र सरकार के साथ सहयोग करके विकास की परियोजनाओं में भागीदारी करेगा, या जो ब्रिक्स के और देश हैं वहाँ के जो निजी पूंजी वाली संस्थाएं हैं, क्या उनके साथ भी आपस में किसी सहयोग की बात है?
3: हाँ, देखिए, मेरे ख्याल से तो सहयोग द्विपक्षीय होगा, सिर्फ एक देश के लोगों के बीच में नहीं होगा, पूरे ग्रुप के बीच में होना चाहिए कि न सिर्फ भारत में सरकार और प्राइवेट निवेशक सहयोग करेंगे या न सिर्फ भारत में सरकार और बाहर के प्राइवेट निवेशक करेंगे, बल्कि सरकारें और प्राइवेट निवेशक ब्रिक्स के समूह के एक दूसरे देशों में भी निवेश करेंगे।
2: जी, तो क्या इस तरह का भी कोई प्रस्ताव है कि ब्रिक्स के देश आपस में मिलकर कोई ऐसी बैंकिंग प्रणाली विकसित करें जिससे कि जिस भी देश को विकास के लिए धन की जरूरत है तो उस बैंक से उसको मुहैया कराया जा सके?
3: देखिए, 2012 में एक न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी जिसका अभी 100 अरब डॉलर के करीब उसका कोष है, और उसकी स्थापना इसीलिए हुई थी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कि वो डेवलपमेंट या विकास की बातों में ब्रिक्स के सदस्यों के बीच में जो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक स्थापित हुआ 100 अरब डॉलर की, उससे ये परियोजनाएं ब्रिक्स के देशों में, एक देश में या एक देश द्वारा दूसरे देश में की जाने वाली या ब्रिक्स के देशों में से किसी द्वारा ब्रिक्स के बाहर के देशों में की जाने वाली कामों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। इसके साथ ही साथ अब ये भी है कि कुछ और चीजें की गई हैं, जैसे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ने बहुत क्रिटिकल रोल पैदा किया है, मल्टीलेटरल गारंटी मैकेनिज्म की बात ये कर रहा है। फिर एक और इम्पोर्टेंट एरिया जिसमें ब्रिक्स के लिए कॉपरेशन में है कि डेवलपमेंट में लोकल करेंसी फाइनेंसिंग, कि आप ऐसा न करें कि अगर आप डेवलपमेंट के लिए पैसे दे रहे हैं तो उसको डॉलर में या युआन में दे, आप लोकल करेंसी में दे, ताकि लोकल करेंसी उस फ्लक्चुएशन से बची रहे जो फॉरेन करेंसी के साथ उसका होता है। तीसरा ये कि आप ग्रीन और सस्टेनेबल फाइनेंस करें, उस पर ज्यादा जोर दें जो पर्यावरण को दूषित न करे, जो प्रोजेक्ट उस पर ज्यादा जोर दिया जाए। ये मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक है,
2: इसमें जो हमारी सेंट्रल बैंक हैं, केंद्रीय बैंक हैं किसी भी देश में, जो सारे हमारे ब्रिक्स प्लस देश हैं, तो वो जो सेंट्रल बैंक है उनकी क्या भूमिका है?
3: देखिए, किसी भी देश की सेंट्रल बैंक की भूमिका ये होती है कि अगर उस देश में कोई प्रोजेक्ट कहीं से बाहर से इन्वेस्टमेंट से लाया जा रहा है तो वो इन्वेस्टर किस टर्म्स एंड कंडीशंस पे इन्वेस्ट करने को तैयार है, कितने दिन में वो जेस्टेशन पीरियड होगा उस प्रोजेक्ट का, कितने दिन बाद उससे आपको पैसा मिलना या उसका उत्पादन करना शुरू होगा, कितने दिन बाद उसका पूरा पैसा जो है इन्वेस्टर का उसको मिल जाएगा। जैसे सड़कें बनती हैं, सड़कें बनती हैं तो

0: नहीं होता कि टोल टैक्स लिया जाता। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, प्राइवेट आदमी ने सड़कें बनाई, टोल टैक्स लिया, लेकिन वो हमेशा के लिए टोल टैक्स नहीं ले सकता, एक सर्टेन पीरियड तक के लिए टोल टैक्स ले सकता। तो जहाँ विदेशी इन्वेस्टमेंट की बात आती है, वहाँ पर सेंट्रल बैंक यानी हमारे हिसाब से भारत के संदर्भ में ये रिजर्व बैंक करता है। तो वो रिजर्व बैंक ये सब चीजें देखेगा कि ये जो पैरामीटर जिनके आधार पर किया गया है, कोई प्रोजेक्ट मंजूर किया गया है, वो उनके हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और इतना ही नहीं, इस मीटिंग के द्वारा जो वित्त मंत्रियों की है, इसमें एक चीज ये भी सुनिश्चित की जा रही है कि ब्रिक्स समूह के विभिन्न देशों के जो रिजर्व बैंक हैं, सेंट्रल बैंक हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो, वो एक ऐसी यूनिफाइड पॉलिसी बनाए जो कि ब्रिक्स के सारे देशों में कम से कम लागू हो, ताकि किसी भी देश को दूसरे देश में जाकर कोई प्रोजेक्ट करने में या कुछ इन्वेस्ट करने में कोई समस्या का सामना न करना पड़े।
1: जी, जब हम एतिहासिक विकास की बात करते हैं तो एक पूरे जैसे हम ढांचागत परिवर्तन की बात करते हैं, एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो बड़ी पूंजी की जरूरत है, तो ऐसे जो क्षेत्र है वहां पर निजी पूंजी की निश्चित रूप से जरूरत पड़ती है। तो सड़क निर्माण के अलावा और मुख्य रूप से कौन से क्षेत्र है जिनमें विकास के लिए हमें बड़ी पूंजी की जरूरत है?
0: देखिए, हमें सड़क निर्माण में बड़ी पूंजी चाहिए, हमें शिप बिल्डिंग में चाहिए, हमें बंदरगाहों के निर्माण में चाहिए, तटों के निर्माण में चाहिए, हमको सिविल एविएशन जहाज के निर्माण में चाहिए, जहाज के उत्पादन में चाहिए, हमको स्टील वगैरह के उत्पादन में चाहिए, हमको गैस पेट्रोल इसके रिफाइन और डाउन स्टीम दोनों में इसके इन्वेस्टमेंट के लिए हमें पैसा चाहिए। इसके साथ ही आप डिफेंस सेक्टर खुला तो डिफेंस के लिए भी हमें डिफेंस में कई चीजें बनाने के लिए पैसा चाहिए, अंतरिक्ष के अनुसंधान के लिए चाहिए, तो देखिए अभी उसमें प्राइवेट सेक्टर आ रहा है धीरे धीरे। कई ऐसी चीजें हैं
1: जी,
0: खनन के लिए हमें
1: जी चाहिए। जी, खासतौर से अगर हम बात करें जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है वो आजकल की है, कोई भी विकास का काम करे, तो इन क्षेत्रों में किस तरह की और संभावनाएं दिखती हैं आपको निजी क्षेत्र की भागीदारी की?
0: डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अपरिमित संभावनाएं हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर आप डिजिटल पेमेंट एक जगह से दूसरी जगह कर रहे हैं, आपने देखा अभी कितनी बार आ गई है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की
1: जी,
0: तो एक बार आप खोलिए रास्ता तो देखिए लोग आएंगे। और टेली कम्युनिकेशन में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके डिजिटल डेटा के प्रोटेक्शन में, जिसमें हम अभी काफी पीछे हैं, उसमें बड़ी पूंजी की जरूरत है। ऐसे कंप्यूटर्स, ऐसे सुपर कंप्यूटर्स बनाएं, ऐसे प्लेटफॉर्म बनाएं जिससे कि हमारा डिजिटल डेटा बाहर न जा सके, वो डिजिटल डेटा यहाँ पर सुरक्षित
1: जी। तो पंडित जी, अगर हम भारत की खासतौर से बात करें, भारत सरकार ने बहुत सारे इस तरह के कदम उठाए हैं जहाँ पर विकास की परियोजनाओं को निजी भागीदारी के साथ आगे बढ़ाया जा सके, जैसे हम पीएम गति शक्ति की अगर बात करें, या हम जो इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की बात करें, तो इस तरह के जो कदम भारत सरकार ने उठाए हैं, इनके बारे में आप कुछ और जानकारी देना चाहेंगे?
0: इस क्षेत्र में भारत सरकार ने काफी कदम उठाए हैं, जैसे आपने कहा गति शक्ति योजना प्रधानमंत्री की है, वो इस मामले में काफी सफल रही है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट करने के मामले, जहाँ रोड है वहाँ ठीक है, जहाँ रेल है वहाँ तक ठीक, अगर नहीं है तो तीसरा मॉडल वाटरवेज अगर आप उससे भी शुरू करें। आपको ध्यान होगा कि शायद ये योजना है अभी पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं हुई है कि कलकत्ता से और प्रयाग तक
1: जी
0: गंगा बड़ी हो जाती है तो
1: जलमार्ग का विकास
0: किया जाए। हम म्यांमार के लिए जलमार्ग का विकास कर रहे हैं, मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कालाधन योजना, ये जो है सरकार काम कर रही है, लेकिन कई इसमें क्षेत्र हैं जिसमें हम उतनी तेजी से नहीं काम कर रहे हैं जितनी तेजी से काम करना चाहिए।
1: जैसे कि हम अगर जिक्र करें जो फ्रेट का जो सामान इधर से उधर ले जाया जाता है, उस क्षेत्र में भी आपको लगता है अभी और काफी संभावनाएं हैं पूंजी की?
0: हाँ, देखिए अभी जैसे फ्रेट कॉरिडोर्स बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ बनना ही ठीक नहीं है, बनने के साथ साथ आपको ये भी करना चाहिए कि जैसे अगर उस पर फ्रेट लेकर के कोई वहां जा रहा है तो जगह जगह पे उसकी चेकिंग की भी संभावना होनी चाहिए, और ये भी होना चाहिए कि कहीं से पिलफरेज की कोई वो न हो, कहीं परेशानी हो, कोई इमरजेंसी हो, तो उसके लिए भी सहायता दी जाए।
1: त्रिपाठी जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे निजी निवेश और विकास के लिए ब्रिक्स देशों में बढ़ते सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत जितेंद्र कुमार त्रिपाठी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अम्बरीश सक्सेना। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप

0: और लाइबेरिया की उनकी हम मनसब सारा बेसोलो न्यांती ने कल नई दिल्ली में दोतरफा बातचीत की। उन्होंने टेक्नोलॉजी, जरात, कनकनी, तवानाई, तजारत और सरमायाकारी, तालीम, सलाहियत साजी और आवामी रवाबित समेत भारत लाइबेरिया दोतरफा ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे का जायजा लिया। उन्होंने बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और कसीर जहती मामलों पर भी तबादला ख्याल किया। डॉ जयशंकर ने नई दिल्ली में लाइबेरिया के सफारतखाने के इफ्तिताह के लिए लाइबेरिया की वजीर खारजा को मुबारकबाद पेश की। दोनों वजरा ने अमन, तरक्की और आलमी खित्ते जुनूब की मजबूत आवाज को आगे ले जाने की खातिर मुख्तलिफ फोरमों में ताउन को मजबूत करने पर भी बातचीत की। इस तनाजुर में उन्होंने अक़वामे मुत्तहिदा की इस्लाहशुदा सलामती कौंसिल समेत इस्लाहशुदा कसीर जहती निजाम की अहमियत के बारे में भी बातचीत की। पहले भारत इसराइल हैकाथन में हिफ्जान सेहत और बाज़ाबादकारी से मुतालिक चैलेंजों का हल तकनीक के जरिए निकालने में दोनों मुल्कों के नौजवानों इख्तराकारों ने सरगर्मी के साथ हिस्सा लिया। इस हैकाथन का एहतमाम कुव्वत बख्श हिफ्जान सेहत के मौजू पर किया गया था। इसमें भारत और इसराइल के 1300 तलबा और दीगर अफराद ने हिस्सा लिया। इसराइल में भारत के सफीर जेपी सिंह ने हैकाथन जीतने वालों की इज्जत अफजाई की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रोन्स और उनके हिस्से पुर्जों के दरामद पर 100% तक के नए टैरिफ का ऐलान किया है और कहा है कि इस कदम का मकसद मजकूरा सनात में गैर मुल्की सप्लायर्स पर अमरीका का इन्हिसार कम करना है, जबकि बड़ी हद तक इस सनत में चीन का गलबा है। व्हाइट हाउस के एक बयान के मुताबिक कौमी सलामती वजूहत से यह फैसला किया गया है कि आलमी सतह पर ड्रोन मार्केट में चीन का बड़ा रोल है। कई मुतालात के मुताबिक ड्रोन तैयार करने वाली चीन की कंपनी डीजेआई ने हालिया बरसों में आलमी ड्रोन मार्केट की 2/3 से ज्यादा हिस्से पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है। यह कंपनी 2006 में कायम की गई थी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने आज पहली बार जजायर कुरील का दौरा किया। ये जजायर रूस के कंट्रोल में है, जबकि जापान भी उन पर अपना दावा करता है। उनके पास इस कदम पर टोक्यो ने शदीद एहतजाज दर्ज कराया है। सदर पुतिन ने जजायर के सबसे जनूबी जजीरों में से एक उतुरूप जजीरे पर वाकई एक मछली के प्रोसेसिंग प्लांट, एक अस्पताल और एक स्कूल का दौरा किया। पाकिस्तान के शुमाल मगरबी खैबर पख्तूनख्वा सूबे में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक तसादुम में कम से कम 15 मिलिटेंट मारे गए, जबकि कई जख्मी हुए। एक पुलिस एहलकार ने बताया कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का एक मुश्तरका काफिला डुआंदो जांच चौकी की तरफ जा रहा था कि बालाई डिर जिले में बड़ीकोट गांव के नजदीक मिलिटेंट्स ने उस पर घात लगाकर हमला करने की कोशिश की। नेपाल में रोल्पा जिले में जमीनी तोदे खिसकने की वजह से कम अज कम 7 अफराद हलाक हो गए और 5 दीगर लापता हैं। जमीनी तोदे खिसकने का यह वाकया बुध की शाम काठमांडू से 450 किलोमीटर मगरिब में थवांग देही म्यूनिसपैलिटी के कोतलबारा गांव में भारी बारिश के बाद पेश आया। नायब सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस शैलेन्द्र थापा के मुताबिक आज सुबह जाए वकूफ से 7 लाशें बरामद की गई हैं। इंग्लैंड में ईस्ट ससेक्स में सियाह टाउन लुइस के नजदीक एक मुसाफिर रेलगाड़ी के पटरी से उतर जाने के वाकये में 20 लोग जख्मी हुए हैं। बरतानवी नकलो हमल के पुलिस चीफ सुपरिंटेंडेंट डोमिनिक ने बताया कि इस हादसे में 2 अफराद बुरी तरह जख्मी हो गए हैं, जबकि 18 अफराद को हल्की चोटें आई हैं। कैनेडा ओपन टेनिस में ईगा स्वायटेक ने एलेना रुबिकेना को हराकर खवातीन सिंगल्स का टाइटल जीत लिया है और इधर अमेरिका के बेन शेल्टन ने मर्दों का सिंगल टाइटल जीता है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 80वीं योम आजादी से कबल आज शाम मुल्क के लोगों से खिताब करेंगी। वजीर खारजा एस जयशंकर और लाइबेरिया की उनकी हमनसब सारा बेसोलो न्यांती ने नई दिल्ली में दो तरफा बातचीत की। पहले भारत इसराइल हैकाथन में हिफ्जान सेहत और बाज़ाबादकारी से मुतालिक चैलेंजों का हल तकनीक के जरिए निकालने में दोनों मुल्कों के नौजवान इख्तराकारों ने सरगर्मी के साथ हिस्सा लिया। और कनाडा ओपन टेनिस में ईगा स्वायटेक ने खवातीन सिंगल्स का टाइटल जीता है, जबकि अमरीका के बेन शेल्टन ने मर्दों का सिंगल्स टाइटल हासिल किया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप हमारी नशियात सुन रहे हैं।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं। या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाए।
0: आरबीआई कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोताओं, फिल्म लम्हे के संगीत के बारे में अगर हम बात करें तो इसका संगीत शिव कुमार शर्मा और हरि प्रसाद चौरसिया, जिन्हें शिव हरि के नाम से जाना जाता है, इन्होंने तैयार किया था और गीत आनंद बख्शी ने लिखे थे। इस फिल्म का गीत मोरनी बागा मां बोले और कभी मैं कहूं आज भी उतना ही लोकप्रिय है जितना पहले हुआ करता था। साथ ही आपको बता दें कि इस फिल्म ने 37वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में कुल 5 पुरस्कार जीते, जिसमें कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए यश चोपड़ा जी को फिल्मफेयर अवार्ड मिला, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए श्रीदेवी जी को, सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए हनी ईरानी को, सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के लिए अनुपम खेर को और सर्वश्रेष्ठ संवाद के लिए राही मसूम रजा ने पुरस्कार प्राप्त किए। और प्राप्त हो भी क्यों ना, फिल्म थी ही इतनी बेहतरीन।

श्रोताओं, लम्हे फिल्म की शूटिंग राजस्थान और लंदन में दो चरणों में की गई थी। हालांकि फिल्म ने घरेलू स्तर पर औसत कारोबार किया, लेकिन समीक्षकों ने इसकी सराहना की। इस फिल्म को बॉलीवुड की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की सूची में शामिल किया गया है और इस फिल्म के निर्देशक यश चोपड़ा जी की बनाई फिल्मों में उनकी निजी पसंदीदा फिल्म बताई गई है।

श्रोताओं, लम्हे फिल्म की कहानी की अगर बात करें तो एक वीरेन नाम का लड़का लंदन से राजस्थान अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए आता है। तभी उसकी मुलाकात जयपुर में एक खूबसूरत लड़की पल्लवी से होती है। उसे देखते ही वीरेन को पल्लवी से पहली नजर में प्रेम हो जाता है, लेकिन पल्लवी सिद्धार्थ नाम के लड़के से प्रेम करती है और उससे शादी कर लेती है। ये देखकर वीरेन का दिल टूट जाता है। कुछ दिनों बाद एक हादसे में पल्लवी और उसके पति की मौत हो जाती है और ये वीरेन को अंदर से झंझोर देता है। मरने

सबसे पहले पल्लवी एक बेटी को जन्म देती है जिसका नाम पूजा होता है। वीरेन पूजा की परवरिश की जिम्मेदारी लेता है, लेकिन वो पल्लवी की यादों से बाहर नहीं आ पाता। साल बीतता है और पूजा बड़ी होकर बिल्कुल अपनी माँ पल्लवी जैसी दिखने लगती है। पूजा वीरेन से प्रेम करने लगती है, लेकिन वीरेन अपने मन में सिर्फ पूजा की माँ पल्लवी के प्रति अपनी वफादारी बनाए रखता है। उसके बाद पूजा वीरेन से प्यार को पाने की जिद करती है। फिल्म के अंत में वीरेन को एहसास हो जाता है कि पूजा की भावनाएं सच्ची है। वीरेन अपनी पुरानी यादों से बाहर निकलकर पूजा के प्रेम को स्वीकार करता है और कहानी एक सुखद मोड़ पर खत्म हो जाती है।

श्रोताओं, फिल्म लम्हे अपनी अनूठी कहानी और बेहतरीन गीतों के लिए जानी जाती है। पिछले कुछ वर्षों में ये फिल्म एक कल्ट क्लासिक मूवी बन गई और अब फिल्म अपने समय से आगे थी।

इसी के साथ संपन्न होता है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आशा करती हूँ फिल्म से जुड़ी जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी। अब अपनी होस्ट रिया को दीजिए अनुमति।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को है, कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार
1: खबर।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। सरबजीत कौर पैलेस बुलेटिन दिया खास खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 80वें आजादी दिवस तो पहला दी शाम राष्ट्र नु संबोधन करेंगे। 2026 दे स्वतंत्रता दिवस के मौके ते केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई दे 21 अधिकारियों नु विलक्षण सेवा ले राष्ट्रपति मेडल अते शानदार सेवा ले मेडल नाल सम्मानित किया गया है। चंडीगढ़ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभपात्रियों लई सीबीडीसी आधारित भोजन सबसिडी के सीधे लाभ तबादले नूं पूरी तरह लागू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बनिया। 1947 की वंड दौरान आपणियां जानां गवाउण अते जुल्मां खिलाफ संघर्ष करने वालियां दी याद विच अज विभाजन विभीषिका यादगारी दिवस मनाया जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों दौरान पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ समेत उत्तर पूर्वी भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है। खबरां विस्तार नाल। राष्ट्र बल्कि अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 80वें आजादी दिवस तो पहला दी शाम राष्ट्र नूं संबोधन करेंगे। राष्ट्रपति दा भाषण आकाशवाणी दे सारे राष्ट्रीय चैनलों ते शाम 7 प्रसारित किया जाएगा। ए सारे दूरदर्शन चैनलों ते हिंदी विच प्रसारित किया जाएगा, जिस तों बाद अंग्रेजी रूप भी प्रसारित होगा। दूरदर्शन ते हिंदी अते अंग्रेजी विच संबोधन दे प्रसारित होने तों बाद इस नूं दूरदर्शन दे खेतरी चरणा ते खेतरी भाषावां विच भी प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी के श्रोतियां नूं सूचित किया जाता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के देश के नाम संदेश के मद्देनजर पंजाबी खबरां दा शाम 7:30 प्रसारित होने वाला राष्ट्रीय बुलेटिन आज शाम 8 प्रसारित होगा। देश भर के अपना सेवा स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के इतिहासक लाल किले तो जश्न की अगुवाई करेंगे। भारतीय हवाई फौज के 2 MI-17 हैलीकाप्टर समागम स्थान ते फुलों की वर्खा करेंगे। राष्ट्रीय झंडा लहराया जाएगा ते 21 तोपां की सलामी दी जाएगी। फुलों की वर्खा तो बाद प्रधानमंत्री लाल किले की फसील तो राष्ट्र नूं संबोधन करेंगे। पहली बार लाल किले विखे जश्न दौरान वंदे मातरम गाया जाएगा। नैशनल कैडेट कोर अते माई भारत वलंटियर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाउणगे अते उस तो बाद राष्ट्रगान गाया जाएगा। फौज समुद्री फौज अते हवाई फौज के कुल 2500 कैडेट अते माई भारत वलंटियर जिन्हां च कुड़ियां अते मुंडे दोवें शामिल ने जश्न विच हिस्सा लैणगे। लाल किले विखे जश्न देखण लई वख वख खेतरां दे करीब 5000 विशेष मेहमानां नूं सद्दा दित्ता गया है। इस समारोह के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी विच सुरक्षा के व्यापक प्रबंध भी कीते ने। सरकार ने दिल्ली के लाल किले विखे 80वें आजादी दिवस समारोह नूं देखण लई राष्ट्रीय राजधानी खेतर दिल्ली तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के 100 लाभपात्रियों नूं विशेष मेहमान वजो सद्दा दित्ता है। सूखम छोटे ते दरमियाने उद्यम बारे मंत्रालय MSME ने किया है कि लाभपात्रियों नूं सत्कार ते प्रशंसा के प्रतीक वजो यादगारी तोहफे प्राप्त होंगे, जिस तों बाद अज MSME अधिकारियों नाल गलबात होगी। सद्दे गए लाभपात्री प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अधीन आउंदे 18 रवायती कित्यां नाल जुड़े हुए ने। इन्हां विच दर्जी, तरखान, सुनियारे, लोहार, ताला बनाउण वाले ते होर कारीगर शामिल ने। इन्हां लाभपात्रियों नूं इस योजना के तहत कई लाभ प्राप्त होए ने, जिस विच रजिस्ट्रेशन, बुनियादी हुनर सिखलाई, टूल किट अते योजना के तहत होर सहायता शामिल है। इन्हां विशेष मेहमानां विच वख वख रवायती कित्यां विच रुझियां औरत कारीगर भी शामिल ने। पंजाब च स्वतंत्रता दिवस का मुख राजपदरी समारोह फिरोजपुर विखे होगा, जिथे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान राष्ट्रीय झंडा लहराउणगे। पंजाब विधानसभा के स्पीकर श्री कुलतार सिंह संधवा रूपनगर विखे अते डिप्टी स्पीकर तरनतारण विखे होने वाले समारोहां विच राष्ट्रीय झंडा लहरा के जश्नां च हिस्सा लैणगे। बाकी जिलों विच भी पंजाब दे मंत्रियां अते नाल ही डिवीजनल कमिश्नरां अते डिप्टी कमिश्नरां वल्लों आजादी दिवस के समारोहां की प्रधानगी की जाएगी। आजादी दिहाड़े के मद्देनजर पंजाब भर विच सुरक्षा दे पुख्ता इंतजाम किए गए ने। किसान सुखावी घटना होने तो रोकने लई पुलिस वल्लों थां थां ते नाके ला के वाहनों की जांच की जा रही है। बाजार, बस अड्डियां, सड़कां, रेलवे स्टेशनों समेत संवेदनशील थावां ते पुलिस वल्लों गश्त की जा रही है। कई जिलों च झंडा मार्च भी कटे जा रहे ने। 2026 ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ 21 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਸੇਵਾ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 6 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਸੇਵਾ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ੋਭਾ ਦੱਤਾ, ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰੀਟੈਂਡ

0: मनोज बनर्जी, विधेयक पुलिस सुप्रिंटेंडेंट गिन्नी राणा ते पुलिस डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट संजय कुमार समाल शामिल ने। सरकार ने आजादी दिवस के मौके ते पुलिस हक बुझाऊ अमले, होमगार्ड्स अते सिविल सुरक्षा ते सुधार सेवावां दे 1057 मुलाजमां नूं बहादुरी अते सेवा मैडल देण दा ऐलान कीता है। गृह मंत्रालय ने अज 301 बहादुरी मैडलां दी सूची जारी कीती है। इनां विच पुलिस मुलाजमां लई 272 ते हक बुझाऊ अमले दे मुलाजमां लई 29 मैडल शामिल ने। बहादुरी मैडल जान मान दी रक्षा करन, अपराध नूं रोकण जां अपराधियां नूं फड़न विच असाधारण हिम्मत दिखाउण लई दित्ते जांदे ने। आकाशवाणी तो सुन रहे हो साडा एक्स हैंडल @AIRRNE जलंधर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 80वें आजादी दिवस तो पहला दी शाम आज शाम 5:10 ते सैनिकां नूं संबोधन करनगे। उन्हां दा संबोधन आकाशवाणी दे FM गोल्ड ते इंद्रप्रस्थ चैनल ते प्रसारित कीता जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तहत केंद्रीय बैंक डिजिटल करंसी CBDC सीधे लाभ तबादले DBT लई डिजिटल रूपिया अज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ विच जारी किया गया। यह पहल भारत सरकार वलों भलाई योजनावां विच सबसिडी वाले अनाज दे भौतिक वंड तो सीधे लाभ तबादले अते हुण CBDC राहीं उद्देश पर डिजिटल डिलीवरी तक ते अगले विकास नूं दर्शाउंदी है। अधिकारत हलकां दे हवाले नाल साडे पत्रकार ने दस्सिया कि चंडीगढ़ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दे लाभपात्रियों लई CBDC आधारित भोजन सबसिडी के सीधे लाभ तबादले में पूरी तरह लागू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इस समारोह की प्रधानगी पंजाब के राज्यपाल ते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया ने की थी। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य मेहमान अते खपतकार मामले खुराक ते जनतक वंड बारे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी विशेष मेहमान वजो शामिल हुए। इस मौके अपने संबोधन विच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खुराक सुरक्षा सब तो वड्डी तरजीह है।
1: खाद्य सुरक्षा सबसे पहली चीज है, पैदा करेंगे इतना कि देश की जनता का तो पेट भरेंगे, जरूरत पड़ेगी तो दुनिया का भी पेट भर के दिखाएंगे। तो अन्न का भंडार भरपूर है, मैं बहुत विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन खेतों में किसान जो अन्न पैदा कर रहा है वो गरीब की थाली तक समय पर पहुंच जाए।
0: ये पहलकदमी दादरा ते नगर हवेली लई भी चंडीगढ़ तो ही वर्चुअल माध्यम राही शुरू की गई। आज विभाजन विभीषिका यादगारी दिवस है। इस मौके देश 1947 दी वंड दौरान अपनी जाना गवाउण अते जुल्मां खिलाफ संघर्ष करने वालियां नूं श्रद्धांजलि भेंट कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह ते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वंड दौरान अपनी जाना गवाउण वालियां अते जुल्म खिलाफ संघर्ष करने वालियां नूं श्रद्धांजलि भेंट की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट विच वंड नूं इतिहास का एक अजिहा पल दस्सिया जिसने कई परिवार बेघर कर दिते अते लोकां नूं बेअंत दुख झलने पए। प्रधानमंत्री ने इस गल ते जोर दिता कि उन्हां दीआं जीवन यात्रावां सारिआं नूं मनुखी भावना दी ताकत दी याद दवांदीआं ने। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ने भगौड़े नशा तस्कर सरगना वीरेंद्र सिंह बासोया की संयुक्त अरब अमीरात तो वापसी यकीनी बना ली है। आज सवेरे नवी दिल्ली के IGA हवाई अड्डे ते पहुंचने ते उसनों हिरासत विच लै लिया गया। भारतीय एजेंसियां वलों संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों लगातार तालमेल राही उसकी भारत वापसी संभव बनाई गई है। श्री शाह ने कहा कि नशीले पदार्थों खिलाफ सरकार की बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने वाली नीति विच एक नवा मील पत्थरे। सरकार ने जम्मू कश्मीर विच 18.60 करोड़ के 3 विरासती इस्तेमाल प्रोजेक्टा नूं मंजूरी दित्ती। इन्हां प्रोजेक्टा दा उद्देश इतिहासक ते सभ्याचारक महत्व वाले स्थानां नूं बहाल करना ते खेतर दी विरासती सैर सपाटा संभावना नूं मजबूत करना है। भारतीय मौसम विभाग MD ने अज हिमाचल प्रदेश ते उत्तराखंड समेत उत्तर पूर्वी भारत के कई इलाकों विच भारी तो बेहद भारी बारिश लई ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली ते भारत के होर उत्तर पूर्वी हिस्सों विच भी भारी बारिश होने की संभावना है। आखिर च खास खबरां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अज 80वें आजादी दिवस तो पहला दी शाम राष्ट्र नूं संबोधन करेंगे। 2026 दे स्वतंत्रता दिवस के मौके ते केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI दे 21 अधिकारियों नूं विलखण सेवा लई राष्ट्रपति मैडल अते शानदार सेवा लई मैडल नाल सम्मानित किया गया है। चंडीगढ़ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभपात्रियों लई CBDC आधारित भोजन सबसिडी के सीधे लाभ तबादले नूं पूरी तरह लागू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बनिया। इस नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन शाम 6:20 होगा। नमस्कार।
2: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान।

0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 80वीं यौम आजादी के मौके पर आज शाम कौम से खिताब करेंगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल दिल्ली में तारीखी लाल किले से यौम आजादी की तकरीबात में कौम की क़यादत करेंगे। आज मुल्क की तकसीम की हौलनाकी की याद का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर दिफा ने उन लोगों को खराज अक़ीदत पेश किया जिन्होंने मुल्क की तकसीम के दौरान अपनी जानें कुर्बान की थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रोन बरामद पर 100% तक के नए महसूल का ऐलान किया है और छत्तीसगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज बहुत शदीद बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 80वें यौम आजादी से कबल आज शाम मुल्क के लोगों से खिताब करेंगी। सदर जमहूरिया का यह खिताब आकाशवाणी के पूरे कौमी नेटवर्क पर शाम 7 बजे से नशर किया जाएगा। दूरदर्शन के सभी चैनलों पर पहले यह खिताब हिंदी में टेलीकास्ट किया जाएगा और उसके बाद अंग्रेजी में होगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में इस खिताब के टेलीकास्ट के बाद दूरदर्शन के इलाकाई चैनलों पर इसे इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। इधर आकाशवाणी से भी सदर जमहूरिया का यह खिताब मुतालिका इलाकाई नेटवर्क पर रात 9:30 बजे इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। कई पूरे मुल्क में 80वां यौम आजादी मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दिल्ली में तारीखी लाल किले से यौम आजादी की तकरीबात की क़यादत करेंगे। कौमी परचम लहराने के साथ साथ 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इस मौके पर भारतीय फिजाइया के 2 हेलीकॉप्टर फूलों की पत्तियां बरसाएंगे जिसके बाद वज़ीर आज़म लाल किले की फसील से कौम से खिताब करेंगे। मज़ीद तफ़सील हमारे नामनिगार से।
1: इस अज़ीम शान तकरीब के साथ साथ कौमी गीत वंदे मातरम की शानदार विरासत के 150 साल मुकम्मल होने और 2047 तक विकसित भारत की समत भारत के सफर को आगे बढ़ाने में युवा शक्ति की तवानाई, उमंगों और उनके ग्रह कद ताबुन का जश्न भी मनाया जाएगा। लाल किले पर तकरीबात के दौरान पहली मरतबा वंदे मातरम गाया जाएगा। एनसीसी के कैडेट्स और माई भारत के रजाकार पहले कौमी गीत वंदे मातरम और फिर कौमी तराना गाएंगे। फौज, बहरिया और भारतीय फजाइया के 2500 लड़के लड़कियां और माई भारत के रजाकार इन तकरीबात में हिस्सा लेंगे। इनके अलावा जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 5000 खसूसी मेहमानों को भी लाल किला तकरीबात का नजारा करने की दावत दी गई है। दिल्ली पुलिस ने इस मौके पर कौमी राजधानी में सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए हैं। मुख्तलिफ एजेंसियों के तकरीबन 15000 सिक्योरिटी एहलकारों को भी तैनात किया गया है। लाल किला और उसके आसपास 1000 सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए हैं। इसके अलावा शहरियों में हुब्बुल वतनी के जज्बे को फरोग देने और यौम आजादी का जश्न मनाने की गरज से मुल्क भर में 343 अहम मकाम पर बहुत से बैंड अपने फन का मुजाहरा करेंगे। नई दिल्ली से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक।
0: कल यौम आजादी के मौके पर दिल्ली मेट्रो के तमाम टर्मिनल स्टेशनों से खिदमत सुबह सवेरे 4 बजे से शुरू होंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ने कहा है कि यह फैसला इसलिए किया गया है ताकि यौम आजादी की तकरीब में शिरकत करने के लिए खसूसी मेहमानों, मुगलीन और आम लोगों को आने जाने में सहूलत फराहम हो सके। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ने कहा है कि मेट्रो खिदमत सभी लाइनों पर 30-30 मिनट के वक्फे से चलेंगी, इसके बाद वो बाजाब्ता तौर पर चलाई जाएंगी। हुकूमत ने दिल्ली के लाल किले पर यौम आजादी की 80वीं तकरीब का नजारा करने के लिए खसूसी मेहमानों की हैसियत से दिल्ली एनसीआर खित्ते से पीएम विश्वकर्मा के 100 मुस्तफेदीन को मधु किया है। बहुत छोटी छोटी और औसत दर्जे की सनातों की वजारत ने बताया कि इन मुस्तफेदीन को आज एमएसएमईज की वजारत के अफसरों के साथ बातचीत के बाद कदर शनासी और कदरदानी के अलामत के तौर पर सोनियर भी पेश किए जाएंगे। मधु किए गए मुस्तफेदीन में दर्जी, कारपेंटर, सोनार, लोहार, तालासाज समेत पीएम विश्वकर्मा के तहत आने वाले 18 रिवायती कारोबार की नुमाइंदगी करते हैं। मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में यौम आजादी की तकरीब के सिलसिले में मुनासिब तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं ताकि पुरान और खुश उसलूबी से यौम आजादी तकरीबात को यकीनी बनाया जा सके। शहरी इंतजामिया की तरफ से दीगर जरूरी तैयारियां और इंतजाम के साथ सभी मकाम पर सिक्योरिटी के कसीर सतही इंतजाम किए गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: इस साल यौम आजादी की तकरीबात के मौके पर पूरे कश्मीर में बड़े पैमाने पर तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी और हुब्बुल वतनी से मुतालिक सरगर्मियां अंजाम दी जाएंगी। श्रीनगर से टीटवा में लाइन ऑफ कंट्रोल तक तिरंगा रैलियां और हुब्बुल वतनी के नगमे इन तकरीबात का खास हिस्सा होंगे। इस दौरान मरकज के जेर इंतजाम इस पूरे इलाके में कसीर सतही सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। खास तकरीब श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में मुनक्किद की जाएगी, जहां वजीर आला उमर अब्दुल्ला मेहमान खसूसी की हैसियत से इस तकरीब में शिरकत करेंगे। न्यूज डेस्क से उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आज मुल्क की तकसीम की हौलनाकी की याद का दिन है। आज उन सभी लोगों को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है जिन्होंने 1947 में मुल्क की तकसीम के दौरान नाकाबिल तसव्वुर दुख और तकलीफ का सामना किया और अपनी जान कुर्बान कर दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने उन सभी लोगों को खराज अकीदत पेश किया जिन्होंने मुल्क की तकसीम के दौरान अपनी जानें कुर्बान की थी और जिन्होंने मुल्क की तकसीम की हौलनाकी की याद के दिन के मौके पर जुल्म सितम के खिलाफ जद्दोजहद की थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने मुल्क की तकसीम को तारीख में एक ऐसा लम्हा करार दिया जिसमें बहुत से जानें कुर्बान हुई, जहां बहुत से कुंबे उजड़ गए, लोगों के अजीज व अकारीब की जानें गईं और जबरदस्त तकालीफ और मुसीबत का सामना किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रोन्स और उनके कलपुर्जों की दरामद पर 100% तक के नए महसूल का ऐलान किया है और कहा है कि इस कदम का मकसद मजकूरा सनअत में गैर मुल्की सप्लायर्स पर अमरीका का इन्हिसार कम करना है, जबकि बड़ी हद तक इस सनअत में चीन का गलबा है। व्हाइट हाउस के एक बयान के मुताबिक कौमी सलामती वजूहात से यह फैसला किया गया है। व्हाइट हाउस के एक बयान के मुताबिक यह फैसला कौमी सलामती की बुनियादों पर किया गया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मनशियात की रोकथाम के ब्यूरो एनसीबी ने मुत्तहिदा अरब अमारात से मनशियात के मफरूर सरगना वीरेंद्र सिंह बसोया की मुल्क वापसी और हवालगी को यकीनी बना लिया है। उन्होंने कहा कि मनशियात के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की हुकूमत की पॉलिसी में एक नए संगमील की हैसियत रखता है। झारखंड की रांची में एहतजाज करने वाले तलबा आज 21वें दिन भी सरकारी भर्तियों में शफाफियत की मांग कर रहे हैं। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में इस मुजाहरे के दौरान तलबा लीडरों और हुकूमत के दरमियान तातुल में इजाफा हो गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: पिछले तीन हफ्तों से रांची में जारी तलबा का एहतजाज अब एक हसास मरहले में दाखिल हो गया है। तलबा के लीडर देवेंद्र नाथ महतो ने जो भूख हड़ताल की वजह से अस्पताल में दाखिल है एक वीडियो मैसेज जारी किया है जिसमें वो तहरीक को मजबूत और जारी रखने की अपील कर रहे हैं। खराब सेहत के बावजूद उन्होंने इल्जाम लगाया कि कुछ लोग तहरीक को कमजोर करने और उसे किसी और सम्त में मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान हुकूमत के एक वजीर की तरफ से तलबा के वफद की सदाकत पर सवाल उठा जाने के बाद तलबा के लीडर रविन्द्र पासवान ने रद्दअमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि वफद के सभी अरकान सही हैं और सच्चे हैं। इस दौरान मुमताज माहिर तालीम अलका पांडे ने तलबा के एहतजाज की हिमायत में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम का दौरा किया। रांची से पूनम करकेटा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: जम्मू कश्मीर में हुकूमत ने 18 करोड़ 60 लाख रुपए मालियत के विरासत के तहफ्फुज़ के लिए तीन बड़े प्रोजेक्टों को मंजूरी दे दी है। इनका मकसद तारीखी और सकाफती लिहाज से अहमियत के हामिल मकामात की अजमत को बहाल करना और खित्ते के विरासती सियाहती मकामात को मुस्तहकम बनाना है। जून मगरबी मानसून आज से हिमाचल प्रदेश के बहुत से हिस्सों में एक बार फिर सरगर्म हो गया है। आज सुबह से कुछ इलाकों में शदीद बारिश की इतलात मौसूल हो रही है। बहुत से अजला में तूफानी बारिश से दरियाओं और नदियों में पानी की सतह में इजाफा हो गया है। इंतजामिया ने आवाम से अपील की है कि वह एहतियात बरते। द्रौपदी मुर्मू 80वें यौम आजादी के मौके पर आज शाम कौम से खिताब करेंगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल दिल्ली में तारीखी लाल किले से यौम आजादी की तकरीबात में कौम की क़यादत करेंगे। आज मुल्क की तकसीम की हौलनाकी की याद का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर दिफा ने उन लोगों को खराज अकीदत पेश किया जिन्होंने मुल्क की तकसीम के दौरान अपनी जानें कुर्बान की थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रोन दरामदाद पर 100% तक के नए महसूल का ऐलान किया है और छत्तीसगढ़, मशीकी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज बहुत शदीद बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है।

0: like selfie points have also been set up at the several places, including Chuna Bhatti, where messages about giving up addiction and creating awareness among the youth are being shared. Abhinav Goyal, Akashvani News, Bhopal.
1: In Jammu and Kashmir, preparations are on across the Union Territory with elaborate arrangements in place to ensure smooth and peaceful Independence Day celebrations. More in this report.
2: The overall build-up to this year's Independence Day has been marked by widespread Tiranga rallies and patriotic activities across Jammu and Kashmir. From Srinagar to the line of control in Titwal, the Tiranga rallies and patriotic songs have remained at the center of celebrations. Among the highlights this year were the mega Tiranga Yatra along the Dal Lake in Srinagar, Tiranga Yatra along line of control in Titwal, display of a 2 kilometer long tricolor at the Vular Lake, and Shikara rallies in Dal and Manasbal Lakes. Across all districts, students, government employees, security forces and locals enthusiastically took part in the rallies and related programs. The main event will be held at Srinagar's Bakshi Stadium, while in Jammu, the function will be held at MA Stadium. Ishfaq Shah, Akashvani News, Srinagar.
1: Today is Partition Horrors Remembrance Day. The nation is paying homage to all those who sacrificed their lives and suffered unimaginable pain during the partition in 1947. Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah and Defence Minister Rajnath Singh have paid homage to all those who lost their lives in the partition and to those who struggled against atrocities. In a social media post, Mr. Modi termed the partition as a moment of history that tore apart several lives, where families were uprooted, loved ones were lost and immense suffering was endured. He also wished that the day deepens everyone's resolve to preserve harmony and brotherhood in the country and work collectively towards building a Vikasit Bharat. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. India has dispatched the first tranche of the 20 metric ton relief supplies to Colombia to support ongoing post-earthquake recovery efforts. In a social media post, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said assistance includes medicines and medical equipment, temporary shelter and hygiene support, and other essential items needed in the aftermath of the disaster. He noted that India stands in solidarity with the people of Colombia during these difficult times. Union Home Minister Amit Shah has said the Narcotics Control Bureau has secured the return of fugitive drug kingpin Virinder Singh Basoya from the UAE. He was taken into custody upon his arrival at the IGI airport, New Delhi, early this morning. His return to India was secured through sustained coordination with the UAE authorities by Indian agencies. Mr. Shah said this marks a new milestone in the government's policy of zero tolerance against narcotics. In a social media post, Mr. Shah said the Narendra Modi government is relentlessly tracking down drug traffickers hiding abroad and destroying their entire ecosystem with a ruthless approach. The Office of the Registrar General of India under the Ministry of Home Affairs has notified the questionnaire for the household schedule for the census 2027. The questionnaire has a list of 40 questions. This included parents' details, Aadhaar, mobile number, total number of bank accounts, travel to place of work, religion and caste. The census remains a vital tool for governance, providing a foundation for India's development planning for the next decade. The last census was conducted in 2011. The National Human Rights Commission has issued notice to the Union Home Secretary and Director General, Central Reserve Police Force, CRPF, over the reported death of 19 CRPF personnel by suicide between January to May this year. Taking Shivamoto cognizance of the incident, the Commission has called for a detailed report on the matter within 2 weeks. According to a media report, a total of 281 CRPF personnel died by suicide in the last 5 years. The student protest in Ranchi, Jharkhand, demanding transparency in government recruitment, continues for the 21st day today. Amidst the demonstration at Jaipal Singh Munda Stadium, a standoff between student leaders and the government has intensified. Here is a report.
3: The ongoing student protest in Ranchi for the past 3 weeks has now reached a sensitive phase. Student leader Devendranath Mehto, who was admitted in the hospital after illness due to a hunger strike, released a video message appealing to keep the movement strong and ongoing. Meanwhile, after minister questioned the authenticity of the student delegation, student leader Ravindra Paswan hit back. He stated that all members of the delegation are genuine students and have admit cards as proof. To exert pressure on the government and demonstrate their rock-solid unity, the students have announced a grand Tiranga march tomorrow on the occasion of Independence Day. For Akashwani News, Poonam Kolkata from Ranchi.
1: The Intermeteorological Department, IMD, has issued an orange color warning for heavy to very heavy rainfall for Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, Jharkhand, Uttar Pradesh and Uttarakhand today. Heavy rainfall conditions are also likely to prevail over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, West Madhya Pradesh, Madhya Maharashtra, Odisha, Vidarbha, Sub-Himalayan, West Bengal and northeastern parts of India during the next 2 days. The southwest monsoon has once again become active in several parts of Himachal Pradesh from today, with heavy rainfall being reported in some areas since morning. Torrential rains in several districts have led to a rise in the water levels of rivers and streams. The administration has urged people to exercise caution. A report.
4: The Meteorological Center Shimla has issued an orange alert for heavy rainfall in several areas of Mandi and Sirmaur districts today. A yellow alert for heavy rainfall has also been issued for isolated places in Kangra, Chamba, Bilaspur and Una districts. Meanwhile, the Chamba district administration has advised devotees undertaking the famous Mani Mahesh Yatra to proceed only when weather conditions are favorable. According to the State Emergency Operations Center, 140 roads are currently blocked due to landslides, 46 power transformers, while 244 drinking water supply schemes have also been disrupted. Besides, 177 people have so far lost their lives in rain-related incidents in Himachal Pradesh during the current monsoon season. Ritesh Kapoor, Akashwani News, Shimla.
1: In Odisha, 2 days of incessant rain have triggered a fresh flood threat in northern parts of the state, with several rivers swelling rapidly and crossing danger levels. More from our correspondent.
5: The flood situation on the ground is grim in several parts of northern Odisha. Flood water is spreading into low-lying areas, roads are submerged and swollen rivers are cutting off connectivity. The Baitarani is flowing above the danger mark at Anantpur and Patna in Kemsar district, while the Jalaka at Mathani in Baleswar district is flowing at 7.84 meters against the danger level of 6.50 meters. Flood water has again entered through a breach in the Anantpur ring embankment. Joda and Balwil in Kemsar district are also waterlogged. In Mayurbhanj, the Buddha Balanga has spilled into parts of Baripada while several roads are underwater. The Subarnarekha and Baitarani rivers are above danger levels. With more rainfall forecast, residents in low-lying and riverbank areas have been advised to remain alert. Prakash Das for Akashwani News, Bhubaneswar.
1: And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu to address the nation on the eve of 80th Independence Day. Prime Minister Narendra Modi to lead the nation in Independence Day celebrations from the iconic Red Fort in Delhi tomorrow. Partition Horrors Remembrance Day being observed today. Prime Minister, Home Minister and Defence Minister pay homage to all those who lost their lives during partition. India dispatches first tranche of 20 metric ton relief supplies to Colombia to support ongoing post-earthquake recovery efforts. And alert issued for very heavy rainfall over Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, Jharkhand, Uttar Pradesh and Uttarakhand today. With that, we end the midday news. नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद पुनः निर्माण कार्यों में सहयोग के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। और छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र कल अपना 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे।
6: लाल किले में होने वाले इस समारोह में पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रगान होगा। यह भव्य कार्यक्रम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 साल पुरानी गौरवशाली विरासत को याद करने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में सेना, नौसेना और वायुसेना के करीब 2500 कैडेट और माई भारत के स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे। इस समारोह में देश के अलग अलग क्षेत्रों से 5000 विशेष अतिथियों को भी लाल किला में आमंत्रित किया गया है। इनमें पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर, पीएम मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के रेहड़ी पटरी वाले और भारत टैक्सी के टैक्सी चालक शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने समारोह को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के करीब 15,000 जवानों को तैनात किया गया है और 1,000 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा देशवासियों में देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए देशभर में 343 प्रमुख स्थानों पर बैंड प्रस्तुतियां भी आयोजित की जा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने वाले विशेष अतिथियों और आम जनता की आवाजाही के लिए विस्तारित मेट्रो सेवाओं की घोषणा की है। यात्री सुबह 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशनों पर उतरकर लाल किले तक पहुंच सकते हैं। सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
7: गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदकों की सूची जारी की। इनमें पुलिस कर्मियों के लिए 272 और अग्निशमन सेवा के कर्मियों के लिए 29 पदक शामिल हैं। वीरता पदक जीवन और संपत्ति की रक्षा, अपराध रोकने या अपराधियों को पकड़ने में उल्लेखनीय साहस दिखाने के लिए प्रदान किया जाता है। 301 वीरता पदकों में से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 197 कर्मी, जम्मू कश्मीर के 51 तथा पूर्वोत्तर के 12 और अन्य क्षेत्रों के 41 कर्मी शामिल हैं। विशिष्ट सेवा के लिए कुल 92 राष्ट्रपति पदकों की भी घोषणा की गई है। इनमें पुलिस सेवा के 83, अग्निशमन सेवा के 4, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड सेवा के 3 तथा सुधार सेवा के 2 पदक शामिल हैं। इसके अलावा 664 सराहनीय सेवा पदकों की भी घोषणा की गई है। इनमें पुलिस सेवा के 606, अग्निशमन सेवा के 28, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड सेवा के 18 तथा सुधार सेवा के 12 कर्मी शामिल हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के 21 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक तथा सराहनीय सेवा के लिए पदक प्रदान किए जाने की भी घोषणा की गई है। 6 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिया जाएगा। इनमें सहायक पुलिस महानिरीक्षक शोभा दत्ता, अपर पुलिस अधीक्षक मनोज बैनर्जी, अपर पुलिस अधीक्षक गिन्नी राणा और पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार सामल शामिल हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम 5:10 पर सैनिकों को संबोधित करेंगे। उनका संबोधन आकाशवाणी के FM गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होगा।
8: देश भर में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए सभी प्रमुख आयोजन स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
2: शहरों से लेकर सरहदी इलाकों तक इस साल पूरे जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर तिरंगा रैलियां और देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम आयोजन किए गए। श्रीनगर में डल झील के किनारे निकाली गई मेगा तिरंगा यात्रा हो या लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक रैलियां, वलर झील के किनारे 2 किलोमीटर लंबे तिरंगे की नुमाइश हो या डल और मानसबल झीलों में राष्ट्रीय ध्वज लहराती हुई शिकारा रैलियां, इस साल स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां बड़ी अनोखी रही। सभी जिलों में छात्रों, सरकारी कर्मचारियों, सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों ने रैलियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस बीच पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
8: उधर तमिलनाडु में बस टर्मिनल, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जैसे सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय चेन्नई के पोर्ट सेंट जॉर्ज के प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। चेन्नई के महत्वपूर्ण स्थानों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कों पर आज तिरंगा यात्रा के दौरान पूरे शहर में देशभक्ति का उत्साह देखने को मिल रहा है।
9: भोपाल में आज हर घर तिरंगा अभियान के तहत विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हैं। कोलार 6 लेन स्थित मदर टेरेसा स्कूल के सामने से शुरू हुई ये यात्रा करीब 32 किलोमीटर का सफर तय कर भैंसाखेड़ी मंडी पहुंचेगी। आयोजकों का दावा है कि यात्रा में करीब 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं। पूरे रास्ते में 2500 जगह पर स्वागत की व्यवस्था की गई है। बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं और सामाजिक संगठनों के लोग हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हो रहे हैं। चूना भट्टी कई जगहों पर सेल्फी प्वाइंट बनाए गए हैं। यहाँ नशा मुक्ति और युवाओं को जागरूक करने के संदेश भी दिए जा रहे हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
8: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है।
10: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर करने तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
8: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने आज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा सीबीडीसी ई रुपए का शुभारंभ किया। इस शुभारंभ के साथ चंडीगढ़ देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसने खाद्य सब्सिडी के लिए सीबीडीसी आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को पूरी तरह से लागू किया है। सरकार ने जम्मू कश्मीर में 18 करोड़ 60 लाख रुपए की 3 विरासत संरक्षण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनका उद्देश्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों को पुनः स्थापित करना और क्षेत्र की विरासत पर्यटन क्षमता को मजबूत करना है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने जनगणना 2027 के लिए परिवार अनुसूची से संबंधित प्रश्नावली अधिसूचित कर दी है। इसमें माता पिता का विवरण, आधार, मोबाइल नंबर, कुल बैंक खातों की संख्या, काम के स्थानों तक आने जाने का विवरण, धर्म और जाति से संबंधित 40 सवाल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने फरार ड्रग सरगना वीरेंद्र सिंह बसोया को संयुक्त अरब अमीरात से वापस लाने में सफलता हासिल की है। आज सुबह नई दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे पर पहुंचते ही उसे हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा कि ये मादक पदार्थों के खिलाफ सरकार की कतई बर्दाश्त न करने की नीति में एक नया मील का पत्थर है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया है।
3: छात्र कल राजधानी रांची की सड़कों पर एक भव्य तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं, जिसमें पूरे राज्य से हजारों युवाओं के जुटने की उम्मीद है। स्वतंत्रता दिवस समारोह और छात्र विरोध को देखते हुए रांची जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। संवेदनशील इलाकों और छात्रों के तिरंगा मार्च के रास्ते पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। छात्रों की मांगे हैं 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरह रद्द किया जाए, पूरे मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच के आदेश दिए जाएं, सरकार राज्य की सीआईडी से मामले की जांच करा रही है और इस संबंध में जेपीएससी के एक पूर्व अध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम करकेट्टा।
8: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस वर्ष जनवरी से मई के बीच कथित तौर पर आत्महत्या से 19 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर्मियों की मृत्यु के संबंध में केंद्रीय गृह सचिव और सीआरपीएफ के महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद राहत कार्यों में सहयोग के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि इस सहायता में दवाएं, चिकित्सा उपकरण, अस्थायी आश्रय और स्वच्छता सहायता तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत इस कठिन समय में कोलंबिया के साथ एकजुटता से खड़ा है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले में सुरंग हादसे के बाद आज घटनास्थल पहुंचे और राहत तथा बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने बचाव अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
11: 22 लोग काम कर रहे थे, इसमें से 3 लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग रेस्क्यू हो गए हैं। जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको यहाँ एडमिट किया है अस्पताल में। यहाँ पर बचाव के लिए और कुछ दिन के लिए सभी प्रकार की एजेंसियां यहाँ पर हैं। हमारा प्रयास है कि सभी को जल्दी से जल्दी निकाला जाए।
8: पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन सुरंग हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुरंग ढहने से हुई जान हानि पर दुख व्यक्त किया है। ओडिशा में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के कारण उत्तरी हिस्सों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
12: उत्तरी ओडिशा के कई इलाकों में बाढ़ के हालात गंभीर है। बाढ़ का पानी निचले इलाकों में फैल रहा है, सड़कें डूब गई हैं और उफनती नदियों के वजह से संपर्क टूट गया है। केंद्र जिले के आनंदपुर और पटना में बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि बालेश्वर जिले में मथानी में जलका नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आनंदपुर रिंग तटबंध में दरार आने से बाढ़ का पानी फिर से अंदर आ गया है। केंद्र जिले के जोड़ा और बड़बिल में भी जल भराव की स्थिति है। मयूरभंज में बूढ़ा बलंगा नदी का पानी बारीपदा के कुछ हिस्सों में फैल गया है। सुवर्णरेखा और बैतरणी नदियों के खतरे के निशान से ऊपर बहने के कारण अधिकारियों ने जोखिम वाले इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना और निगरानी बढ़ाना शुरू कर दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
8: घरेलू शेयर बाजार में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख है। सेंसेक्स 212 अंक गिरकर 77,868 पर और निफ्टी 45 अंक फिसलकर 24,351 पर आ गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और रक्षा मंत्री ने विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद निर्माण कार्यों में सहयोग के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी और छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, दोपहर के 2:30 हुए हैं और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार।

0: चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे।
1: तो दोस्तों, इस याहू के अंदाज को सुनने के बाद आपको ये तो पता चल गया होगा कि आज हम बात किसकी करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त आरती कौर और आप जुड़े हैं आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ पर, सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। दोस्तों, 14 अगस्त का जो ये दिन है, ये भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक ऐसा पन्ना है जब हमने उस सितारे को खो दिया था जिसने बॉलीवुड को डांस करना सिखाया। जी हाँ, आज बात करेंगे उसी अदाकार की जिनके आते ही पर्दे पर बिजली सी कौंध जाती थी, जिनकी आंखों में एक शरारत और चाल में एक अनूठा अंदाज था। आज हमारी जो ये खास पेशकश है वो समर्पित है याहू स्टार शम्मी कपूर जी की पुण्यतिथि पर। जी हाँ, शम्मी कपूर जी की आज पुण्यतिथि है, आज 14 अगस्त है और आज हम कर रहे हैं उन्हीं को याद उन्हीं के अंदाज में।
0: चाहे कोई मुझे

0: दोस्तों, सन 21 अक्टूबर 1931 की ये बात है। मुंबई में जन्मे थे एक बेटे जिनका नाम था शमशेर राज कपूर। जी हाँ, शम्मी कपूर का असली नाम एक्चुअली में यही था और उन्हीं को प्यार से हम कहते हैं शम्मी कपूर, लेकिन शम्मी कपूर नाम फिल्मी नाम है। असलियत में वो शमशेर राज कपूर के नाम से इस दुनिया में आए थे। महान थिएटर थे और फिल्म अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के बेटे, जिन्होंने मुगले आजम में अकबर का रोल किया है, याद है आपको? जी हाँ, और उन्हीं के एक और भाई थे राज कपूर, और राज कपूर के छोटे भाई शम्मी कपूर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने बड़े फिल्मी घराने से ताल्लुक रखने के बावजूद, मतलब जब हमें लगता है कि सब कुछ लाइफ में इनके सेटल्ड है, तो फिर इन्हें क्या दिक्कत आई होगी? आराम से फिल्मों में आ गए, आराम से सब कुछ मौका मिल गया। लेकिन नहीं, क्योंकि आपको फिल्मों में मौका तो आराम से मिल सकता है, एक फिल्मी फैमिली में पैदा होने का फायदा मिल सकता है, लेकिन आपको पसंद तो दर्शक करेंगे ना। और उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ, उनका जो शुरुआती जो सफर था वो आसान नहीं था। कैसे नहीं था ये भी बताऊंगी, लेकिन पहले ये गीत सुनते हैं।
1: हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ।

जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे शम्मी कपूर साहब की असफलता के दौर की, क्योंकि वो फिल्मी फैमिली में पैदा हुए थे, इसलिए उन्हें फिल्मों में काम तो बहुत आसानी से मिला, लेकिन लोगों के बीच जो पहचान थी वो बनाने में उन्हें काफी वक्त लग गया। 1953 में एक फिल्म आई थी जीवन ज्योति, जिससे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। शुरुआती दौर में उन्होंने लगातार 18 फ्लॉप फिल्में दी। उस समय लोग उन्हें राज कपूर की परछाई मानने लगे थे, लेकिन शम्मी कपूर जो थे वो अपने आप को एक पहचान दिलाना चाहते थे। वो चाहते थे कि लोग उन्हें उनके भाई के नाम से नहीं, उनके परिवार के नाम से नहीं, बल्कि उनके खुद के नाम से, उनके खुद की पहचान से जाने। और उन्होंने हार नहीं मानी और कोशिश करते रहे। फिर आया साल 1957, रिलीज हुई एक फिल्म तुमसा नहीं देखा। अपनी मूछें कटवा कर, हेयर स्टाइल बदल कर और एक बिंदास अंदाज में जब वो पर्दे पर आए तो एक नए शम्मी कपूर का जन्म हुआ। और इसके बाद 1961 की फिल्म जंगली आई, जिसका गीत आपने इसी कार्यक्रम के दौरान सबसे पहले सुना है। उस फिल्म ने उन्हें रातों रात भारत का एल्विस प्रेस्ली बना दिया। एल्विस प्रेस्ली जो थे वो अमेरिका के एक बहुत बड़े एक्टर सिंगर थे। उन्हें रॉक एंड रोल के सम्राट की उपाधि दी गई थी। तो सोचिए, हमारे देश में ये उपाधि मिली थी शम्मी कपूर को, क्योंकि उनका जो डांस का अंदाज था, उनका जो बॉडी की थिरकन थी, वो अपने आप में ही अलग थी। उन्हें किसी कोरियोग्राफर की जरूरत नहीं पड़ती थी। उनका कहना था कि जब भी कोई संगीत बजता है, पता नहीं मेरी बॉडी में क्या होता है कि मैं अपने आप ही उसकी बीट के साथ डांस करने लगता हूँ। फिलहाल उन्होंने हम सबको डांस करना सिखाया और इसी के बाद से हमने कहना शुरू किया कि तुमसा नहीं देखा।

दोस्तों, ये जो गीत अभी आप सुन रहे हैं ये है फिल्म राजकुमार से, जिसमें शम्मी कपूर ने इस गीत के अंदर जो पिक्चराइजेशन है वो हाथी के ऊपर किया है और वो हाथी के ऊपर बैठे हैं और गीत गाते हुए मस्त मौला अंदाज में अपने वो इस गीत को बना रहे हैं। लेकिन पता है इस गीत के दौरान एक ऐसा हादसा हुआ था जिसके बाद से उनकी जिंदगी काफी बदल गई, क्योंकि इस गीत में जहाँ पर वो हाथी के ऊपर बैठे हैं, हाथी ने जब चिंघाड़ा और अपनी सूंड को ऊपर किया तो उसके बाद उनके घुटने जो हाथी के कान के पास ही थे और वो दब गए और उनके घुटनों से काफी तेज ओब्वियसली दर्द होने की आवाज भी आई। सबको पता चल गया कि कुछ गड़बड़ हो गई है।

लेकिन शम्मी कपूर साहब तब भी नहीं रुके, उन्होंने इस गीत को फिनिश किया। अपना उन्होंने ये बात बताने की कोशिश की कि मैं अपने काम के प्रति कितना डेडिकेटेड हूँ। लेकिन इसके बाद उन्हें काफी टाइम रेस्ट करना पड़ा और उसके साथ ही उनका जो फिल्मों में आने का जो जज्बा था वो तो बरकरार रहा, लेकिन उनका जो बॉडी का जो साइज था वो बढ़ता गया, यानी कि उनका वजन वो बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि काफी समय तक वो बिस्तर पर थे और इसके बाद से उनकी हालत में काफी जो चेंजेस थे वो आप सबको देखने को मिले होंगे।

दोस्तों, अभी तक आपने जितने भी गीत शम्मी कपूर के सुने, एक बात आपने शायद नोटिस की या नहीं की, मुझे नहीं पता, लेकिन आपने अगर ध्यान दिया होगा तो इन सभी गीतों के पीछे जो आवाज है, यानी जो प्लेबैक सिंगिंग है, वो किसकी है? वो है मोहम्मद रफी की। जी हाँ, शम्मी कपूर और महान गायक मोहम्मद रफी की जोड़ी को हिट जोड़ी माना जाता था। बॉलीवुड की ये सबसे सफल जोड़ियों में उस वक्त गिनी जाती थी, और रफी साहब जो शम्मी जी की आवाज बन गए थे, और शम्मी जी खुद रिकॉर्डिंग स्टूडियो जाकर रफी साहब को बताते थे कि वो पर्दे पर कैसे एक्सप्रेशंस देंगे और आपको अपने गाने को उसी तरीके से गाना है। यानी कि उनकी जो जोड़ी थी वो एक मिसाल जोड़ी थी। उन्होंने इतने अच्छे अच्छे गीत दिए, चाहे वो जंगली का, चाहे कोई मुझे जंगली कहे ये गीत हो, इसके अलावा कश्मीर की कली का, तारीफ करूं क्या उसकी, तीसरी मंजिल का वो हसीना जुल्फों वाली, एन इवनिंग इन पेरिस, या फिर ब्रह्मचारी, या ये गीत जो अभी आप सुन रहे हैं, ये सारे गीत बहुत ही दिल से, बहुत ही प्यार से मोहम्मद रफी साहब ने उनके लिए गाए। और सच में ऐसा लगता था जैसे शम्मी कपूर ही इस गीत को गा रहे हैं, क्योंकि उनके एक्सप्रेशंस ही ऐसे होते थे।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, जिसमें हम बात कर रहे हैं रॉक एंड रोल कलाकार शमी कपूर की। शमी कपूर जी ने अपने 4 दशक से भी लंबे करियर में कई सम्मान और कई पुरस्कार भी हासिल किए। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला उन्हें फिल्म ब्रह्मचारी में उनके शानदार अभिनय के लिए। इसके अलावा उन्हें सहायक अभिनेता का भी जो अवार्ड था वो मिला फिल्म विधाता के लिए 1982 में। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी उन्हें फिल्म फेयर का मिला भारतीय सिनेमा में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए 1995 में, और जी सिने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी वो हासिल कर पाए 1999 में। यानी कि उन्होंने काफी सारे जो अवार्ड्स थे वो हासिल किए। और उनका जो ये जीवन है ये हमें ये सिखाता है कि हार नहीं माननी चाहिए। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि 18 फिल्में फ्लॉप हुई थी उनकी, इतने के बाद बहुत सारे लोगों ने तो उन्हें टोकना शुरू कर दिया था कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में, वो तो सिर्फ अपने भाई की परछाई बन के रह जाएंगे। लेकिन इन अवार्ड्स की सूची जानने के बाद और सबसे बड़ी चीज उनके फिल्मों की जो कामयाबी है वो जानने के बाद, आज भी यानी उस दौर से लेकर आज तक हम उन्हें याद कर रहे हैं उनके गीतों से, उनके डांस से, उनके कला के अभिनय से, इन सब से हम उन्हें याद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान बनाई और हार नहीं मानी।

दोस्तों, शमी कपूर साहब ने लंबे समय तक अभिनय किया। कभी कैरेक्टर आर्टिस्ट के रूप में और अपने समय में वो तो एक्टर बन के आए ही थे, लेकिन 14 अगस्त सन 2011 को शमी जी इस दुनिया को अलविदा कह गए। पर जब भी उनके गीत आप सुनेंगे, जब भी आप उनका डांस देखेंगे और जब भी ये खूबसूरत गीत, जितने भी मैंने अभी आपको सुनवाए, इनके अलावा भी बहुत सारे गीत हैं, बहुत सारी फिल्में हैं, उनका अभिनय है, ये सब आप देखेंगे तो आप उस याहू स्टार को भूल नहीं पाएंगे। उसकी गूंज आपके सीने में सुनाई देगी, क्योंकि शम्मी कपूर हमारे दिलों में जिंदा हो उठते हैं। उनका आखिरी ऑन स्क्रीन जो काम था वो था 2011 की फिल्म रॉकस्टार में उन्हीं के पोते रणवीर कपूर के साथ। दोस्तों, कार्यक्रम तो समाप्त हो गया है। बहुत सारी बातें हैं जो शमी कपूर साहब के बारे में मुझे आपसे कहनी थी, लेकिन क्या करें, वक्त नहीं है। शमी जी को उनकी पुण्यतिथि पर रेडियो परिवार की तरफ से शत शत नमन। आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। फिलहाल आप इसी तरीके से इस चैनल से जुड़े रहिए और सुनते रहिए। फिलहाल अपनी दोस्त आरती को इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमें आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 71 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर। 3:05 हुए हैं, अब खबरें नशर होंगी।
1: हुसैन अख्तर से खबरें सुनिए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 80वीं यौम आजादी के मौके पर आज शाम कौम से खिताब करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल दिल्ली में तारीखी लाल किले से यौम आजादी की तकरीबात में कौम की क्यादत करेंगे। आज मुल्क की तकसीम की होलनाकी की याद का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म, वजीर दाखिला और वजीर दिफा ने उन लोगों को खिराज अकीदत पेश किया जिन्होंने मुल्क की तकसीम के दौरान अपनी जानें कुर्बान की थी। भारत ने कोलंबिया में आए तबाहकुन जलजले के बाद वहां जारी बागावतकारी के कामों में तआवुन की गरज से 20 मैट्रिक टन इमदादी सामान की पहली खेप रवाना की है और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रोन दरामदात पर 100% तक के नए महसूल का ऐलान किया है। खबरें तफसील से। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू 80वीं यौम आजादी से कबल आज शाम मुल्क के लोगों से खिताब करेंगी। सदर जमहूरिया का यह खिताब आकाशवाणी के पूरे कौमी नेटवर्क पर शाम 7 बजे से नष्ट किया जाएगा। दूरदर्शन के सभी चैनलों पर पहले यह खिताब हिंदी में टेलीकास्ट किया जाएगा और इसके बाद अंग्रेजी में होगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में इस खिताब के टेलीकास्ट के बाद दूरदर्शन के इलाकाई चैनलों पर इसे इलाकाई जबानों में नष्ट किया जाएगा। इधर आकाशवाणी से सदर जमहूरिया का यह खिताब मुतल्लिका

0: बहाली शामिल है। मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में यौम आजादी की तकरीब के सिलसिले में मुनासिब तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं ताकि पुरम और खुशअसलूबी से यौम आजादी की तकरीबात को यकीनी बनाया जा सके। शहरी इंतजामिया की तरफ से दीगर जरूरी तैयारियां और इंतजाम के साथ साथ सभी मुकाम पर सिक्योरिटी के कसीर सतही इंतजाम किए गए हैं। इस साल यौम आजादी की तकरीबात के मौके पर पूरे कश्मीर में बड़े पैमाने पर तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी और हुब्बुल वतनी से मुतालिक सरगर्मियां अंजाम दी जाएंगी। श्रीनगर से टीटवा में लाइन ऑफ कंट्रोल तक तिरंगा रैलियां और हुब्बुल वतनी के नगमे इन तकरीबात का खास हिस्सा होंगे। इस दौरान मरकज के जेर इंतजाम इलाके में कसीर सतह सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। खास तकरीब श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में मुनक्की होगी जहां वजीर आला उमर अब्दुल्ला मेहमान खसूसी की हैसियत से तकरीब में शिरकत करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मनशियात की रोकथाम के ब्यूरो NCB ने मुत्तहिदा अरब अमारात से मनशियात के मफरूर सरगना वीरेंद्र सिंह बासोया की मुल्क वापसी और हवालगी को यकीनी बना लिया है। उन्होंने कहा कि ये मनशियात के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की हुकूमत की पॉलिसी में एक नए संग मील की हैसियत रखता है। कड़ियों में आजादी के मौके पर दिल्ली मेट्रो के तमाम टर्मिनल स्टेशनों की खिदमत सुबह सवेरे 4 बजे से शुरू हो जाएंगी। CBI के 21 अफसरों को यौम आजादी 2026 के मौके पर आला खिदमत और काबिल तारीफ और गैर मामूली खिदमत के लिए सदर जमहूरिया के तमगे से नवाजा गया है। 6 अफसरों को इम्तियाजी और गैर मामूली खिदमत के लिए प्रेसिडेंस मेडल से नवाजा गया। इनमें पुलिस की असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल शोभा दत्ता, पुलिस के एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट मनोज बनर्जी और पुलिस के असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट जिमी राणा और पुलिस के डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट CBI के संजय कुमार शामिल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रोन्स और उनके कलपुर्जों की दरामद पर 100% तक के नए महसूल का ऐलान किया और कहा है कि इस इकदाम का मकसद मजकूरा सनत में गैर मुल्की सप्लायर्स पर अमरीका का इंहसार कम करना है जबकि बड़ी हद तक इस सनत में चीन का गलबा है। व्हाइट हाउस के एक बयान के मुताबिक कौमी सलामती वजूहात से यह फैसला किया गया है। व्हाइट हाउस के एक बयान के मुताबिक यह फैसला कौमी सलामती की बुनियादों पर किया गया है। खास खबरें एक बार फिर सुनिए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 80वीं यौम आजादी के मौके पर आज शाम कौम से खिताब करेंगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल दिल्ली में तारीखी लाल किले से यौम आजादी की तकरीबात में कौम की क़यादत करेंगे। आज मुल्क की तकसीम की हौलनाकी की याद का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर दिफा ने उन लोगों को खिराज अकीदत पेश किया जिन्होंने मुल्क की तकसीम के दौरान अपनी जानें कुर्बान की थी। भारत ने कोलम्बिया में आए तबाहकुन जल्जले के बाद वहां जारी बाजाबादकारी के कामों में ताउन की गरज से 20 मैट्रिक टन इमदादी सामान की पहली खेप रवाना की है और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रोन और दरामदात पर 100% तक के नए महसूल का ऐलान किया है। खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। तमाम सामईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब।

ला अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला संसार चला और आगे बढ़ा यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया भगवान।

पूरब और पश्चिम इस फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में। नगमा निगार थी इंदिवर, मौसीकार कल्याण जी आनंद जी। प्रोग्राम की अगली पेशकश आप तमाम सामयीन के लिए शहीद फिल्म का नगमा मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में।

हर के

பக்கத்துல

सामने भी आप हमारा एक खसूसी प्रोग्राम सुन रहे थे, हर घर तिरंगा। तहरीर पेशकश नवीन कुमार की थी, रानी थी सबिया फजल। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, पेश खिदमत है फिल्मी नगमे। प्रोग्राम की पहली पेशकश जागृति फिल्म का नगमा, प्रदीप और साथियों की आवाजों में, मौसिकार हैं हेमंत कुमार।

और लीजिए सामने, अब सुनिए महेंद्र कपूर, मदार, हेमलता और साथियों को फिल्म राजपूत, मौसीकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

सिलसिला लेके हाजिर होवांगे चलकी। आज दी चलकी होगी विचोलन। इसके बाद चंद पंजाबी गीत थोड़ी नजर करांगे।

लाजी अगला गीत सुन दिया सतिंदर सरताज की आवाज च गीदे बोलने कि ते नहीं तेरा रुतबा घटदा जे हस के मना ले यार नू जिसे विच गल कीती गई है उस परमात्मा दी उस उस्ताद दी रब दी जिसनू मनाउण दी गल कीती है कहिंदे जिन्हां दे सिरां दे असीसां दा हत्थ हुंदा है उन्हां दा हर कदम इज्जत नाल उठदा है समय दे चक्कर चाहे किन्ने भी झूल जाण पर सच्चियां रूहां दा रुतबा कदे भी नहीं घटदा सो दुनिया विच कुछ अजिहे रिश्ते कुछ शख्सियतां ते कुछ रुतबे अजे हुंदे हन जो वक्त दीआं सरहदां तों बहुत उपर हुंदे हन चाहे वह मां बाप की ममता होवे या गुरु की सिख्या होवे जां परवरदिगार की रहमत इन्हां दी अहमियत अते सत्कार हमेशा अमर हुंदे ने सो आओ सुणदे हां गीत सतिंदर सरताज की आवाज़

मीडियम वेव 873 किलोहर्ट्ज, एफएम रेनबो 102.7 मेगाहर्ट्ज, डीडीएच आकाशवाणी पंजाब, डीआरएम जलंधर 864 किलोहर्ट्ज, विविध भारती जलंधर 100.6 मेगाहर्ट्ज, एआईआर अमृतसर एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज,

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे विशेष प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: माफी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: कुणाल सा। न्याय सबके लिए कानूनी सहायता के लिए कॉल कीजिए 1500 पर।
1: This is Akashvani. On the eve of Independence Day, we now bring you Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu's address to the nation.
2: ये आकाशवाणी है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अब प्रस्तुत है भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश।

मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को मैं इस राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक बधाई देती हूँ। अब से कुछ घंटों बाद हमारे देश की स्वाधीनता के 80वें वर्षों का शुभारंभ होगा। देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीय ये पर्व उल्लास के साथ मनाते हैं। हमारा तिरंगा हमारी स्वाधीनता का प्रतीक है, इसे हम पूरी शान से फहराते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत माता पराधीनता के बेड़ियों से मुक्त हुई। सभी देशवासी स्वतंत्र भारत की नियति के निर्माता बने। हम भारत के लोग अपने सपनों को साकार करने के अवसरों का उपयोग कर सके और भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने की भावना से कार्य करें, इसी में स्वतंत्रता की सार्थकता है। निष्ठावान विद्यार्थी और शिक्षक, विकास के लिए तत्पर वैज्ञानिक और इंजीनियर, स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी, मेहनती श्रमिक और अन्नदाता किसान अपने प्रयासों से राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। प्रतिभावान खिलाड़ी, शिल्पकार तथा कलाकार, मार्गदर्शक बुद्धिजीवी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की टीमों के कर्मठ सदस्य, जनहित में सेवारत जनप्रतिनिधि, न्याय व्यवस्था से जुड़े न्यायकर्मी, कार्यनिष्ठ सिविल सेवक, अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले छोटे बड़े सभी निवेशक, निस्वार्थ समाजसेवी और स्वच्छता अभियान के अग्रणी कार्यकर्ता हमारे सभी सफाई मित्र देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अन्य क्षेत्र में सक्रिय असंख्य देशवासी तथा संविधान में निहित मूल कर्तव्यों का पालन करने वाले सभी नागरिक राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भागीदार है। मैं उन सभी के हृदय से सराहना करती हूँ। तीनों सेनाओं के जवानों, सभी सशस्त्र पुलिस बलों एवं पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा के लिए मैं उनकी विशेष सराहना करती हूँ। विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों और दूतावासों में कार्यरत देशवासियों की मैं प्रशंसा करती हूँ। प्यारे देशवासियों, स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अंत्योदय की भावना के साथ हमारा संकल्प है कि विकास के लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। अपनी समृद्ध विरासत और स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों को अपनाते हुए हम आधुनिक विकास के मार्ग पर अग्रसर हैं। वयं राष्ट्रे जागरूयाम, ये वेदवाक्य हमें प्रेरणा देता है कि हम राष्ट्र के लिए सदैव जागरूक रहे। हमारे स्वाधीनता संग्राम में संघर्षरत अलग अलग विचारधाराओं के लोगों का लक्ष्य एक ही था, भारत की स्वतंत्रता। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम जन जन के गीत बन गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में अनगिनत देशवासी स्वाधीनता संग्राम से जुड़ गए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज सुधार तथा राष्ट्र निष्ठा के उच्च आदर्श प्रस्तुत किए। भारत माता की उन सभी महान संतानों को मैं सादर नमन करती हूँ जिनके आदर्श पर चलते हुए हमारा देश स्वतंत्र हुए और आगे बढ़ा। आज 14 अगस्त के दिन को हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। हम उन लाखों देशवासियों को याद करते हैं जो विभाजन से जुड़े हिंसा में मारे गए या विस्थापन की त्रासदी झेलने को मजबूर हुए। सांप्रदायिक हिंसा की वजह से लाखों लोगों को शरणार्थी बनना पड़ा और बंटवारे की विभीषिका सहन करनी पड़ी। फिर भी उन्होंने अपनी पहचान नहीं छोड़ी। जब हमारा देश स्वतंत्र हुई उस समय देश के विभाजन के गंभीर परिणामों के साथ साथ 550 से अधिक रियासतों को नव स्वाधीन भारत के साथ जोड़ना भी एक असाधारण चुनौती थी। सरदार पटेल ने राजशाही व्यवस्थाओं को

माफ करके हमारे स्वाधीन लोकतंत्र में उनका विलय किया। एक कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से आधुनिक भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पावन स्मृति को मैं सादर नमन करती हूँ। प्यारे देशवासियों, भारत के लोगों द्वारा निर्मित हमारे संविधान नागरिकों की भागीदारी पर आधारित है। लोकतंत्र की जननी भारत भूमि के निवासियों में जन भागीदारी की भावना सदा से विद्यमान रही है। उस भावना को नई ऊर्जा के साथ हमारे देशवासी आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय अभियानों को जन भागीदारी से आगे बढ़ाया जा रहा है, ये हमारे लोकतंत्र की प्रेरक उपलब्धि है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्रों में असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरी भी कर सकता है। हमारे संविधान में कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका के उत्तरदायित्व का स्पष्ट उल्लेख है। जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि वे विधायिका में जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करें। कार्यपालिका का कर्तव्य है कि जनहित और राष्ट्रहित की नीतियों को कार्य रूप दे। न्याय व्यवस्था से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि अभाव के कारण कोई व्यक्ति न्याय से वंचित ना रहे। हर नागरिक को, विशेषकर वंचित वर्गों के लोगों को समानता के आधार पर सम्मान के साथ समय से न्याय मिलना चाहिए। प्यारे देशवासियों, पिछले एक दशक से कुछ अधिक समय में हमारे देश ने तेज गति से समावेशी विकास किया है। विरासत और विकास के समन्वय को प्राथमिकता दी है तथा विकास में बाधक दशकों पुराने अनेक अवरोधों को दूर किया है। हमारे देशवासी महात्मा ज्योतिबा फुले की 100वीं जयंती मना रहे हैं। महात्मा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक न्याय, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समानता के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया है। उनके आदर्शों के अनुसार विगत कुछ वर्षों के दौरान वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्यों को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है। महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के नए प्रतिमान स्थापित हुई है। 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाने में सफलता मिली है। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेश की योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लगभग 59 करोड़ खाता धारक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुके हैं। उनमें 32 करोड़ से अधिक महिला खाता धारक शामिल है। 80 करोड़ लोगों के लिए निःशुल्क राशन की व्यवस्था द्वारा उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपया तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए गए हैं। किसान सम्मान निधि तथा किसान क्रेडिट कार्ड से खेती, डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन जैसे गतिविधियों से जुड़े किसान भाई बहनों को संबल मिला है। विश्व का इतिहास साक्षी है कि सांस्कृतिक आत्मबल पर आधारित विकास गतिमान और स्थायी होता है। आज देश में ये चेतना बलवती हो रही है कि सांस्कृतिक गौरव का भाव देश की संप्रभुता को आत्मिक शक्ति प्रदान करता है। हमारे पूर्वजों ने ज्ञान विज्ञान, कला संस्कृति, अध्यात्म और सदाचार की अनमोल विरासत सौंपी है। हम विरासत और विकास के समन्वय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सरकार ने जन कल्याण की सुविधाओं को पारदर्शी तरीके से जन जन तक पहुंचाया है। हमारे देश में हाईवेज, वाटरवेज, रेलवेज और एयरवेज के रूप में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का
अभूतपूर्व

इससे नए उद्यमों के लिए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, नए रोजगारों का सृजन हो रहा है तथा निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा है। प्यारे देशवासियों, विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध एवं अस्थिरता का सभी देशों पर प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रही है। आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर की तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है। आधुनिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी भारत विश्व स्तर पर अग्रणी योगदान दे रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 के कुछ लक्ष्यों को हमारे देश ने समय से पहले ही प्राप्त कर लिया है। रिन्यूएबल एनर्जी के विकास को पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व गति मिली है। हमारी विदेश नीति देश हित पर आधारित है। शांति, सहयोग, संवाद तथा वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श हमारी विदेश नीति के स्तंभ है। आर्थिक सहयोग बढ़ाने तथा पारस्परिक संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए हमने अनेक देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। ग्लोबल साउथ के देशों में हम अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। विश्व पटल पर हमारे देश का सम्मान बढ़ा है। हम रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर में विश्वास रखते हैं। हमारे प्रयास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सहित मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस में विश्व समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व हो। हमारे इस प्रयास को अनेक देशों का प्रबल समर्थन मिल रहा है। प्यारे देशवासियों, प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो। हमारे प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें। पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी आस्था हमारी परंपरा का हिस्सा है। संताली भाषा के एक सरल गीत में हमें गहरा संदेश मिलता है। पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा रचित उस गीत के कुछ शब्द इस प्रकार है। दारे गुजुक कान नेलते मिरु चणे राग बया दाया हाया गे गुजुक कान अबुआ ज्योति धर्म दारे चेदा बाबन राग बया आबो ओना नेलते। इस गीत में एक पेड़ के पूरी तरह सूख जाने के कारण रोते हुए एक तोते का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं, हे मेरे भाइयों, मरते हुए पेड़ को देखकर तोता पक्षी दुख भरी आवाजों में रो रहा है। हे मेरे भाइयों, मानव संस्कृति रूपी वृक्षों का विनाश होता देखकर हम मानव समाज के लोग विलाप क्यों नहीं कर रहे। इस गीत का संदेश ये है कि सभी मनुष्यों को मानवीय मूल्यों और प्रकृति के संरक्षण के लिए तत्पर रहना चाहिए। एक हरा हरा पेड़ मानव समाज के नैतिक और स्वस्थ रहने का प्रतीक है। एक पेड़ माँ के नाम तथा लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट यानी लाइफ जैसे अभियानों की भावना के अनुरूप सभी को पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास करना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता होती है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बेटियां प्रभावशाली प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही कृषि उत्पादकता बढ़ाने में योगदान देने वाले ड्रोन दीदी से लेकर वायुसेना में फाइटर कॉम्बैट लीडर बनने तक विभिन्न क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। हाल ही में ग्लासगो में संपन्न हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के कुल 13 स्वर्ण पदकों में 8 स्वर्ण पदक बेटियों ने जीते हैं। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। स्वयं सहायता समूह की 10 करोड़ से अधिक महिला सदस्य है। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया था। इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा चुका है। अब हमारे देश 3 करोड़ महिलाओं को नई लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मुद्रा योजना के तहत सहायता प्राप्त करने वाले उद्योग

कमियों में लगभग दो तिहाई लाभार्थी महिलाएं हैं। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता के प्रयासों के साथ साथ हम देख रहे हैं कि वे विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। मतदान में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी हमारे गणतंत्र की विशेष सफलता है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं का 33% प्रतिनिधित्व आरक्षित करने के लिए वर्ष 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया जा चुका है। इस अधिनियम के लक्ष्य को प्राप्त करने से महिलाओं का नेतृत्व बढ़ेगा तथा हमारे लोकतंत्र और अधिक समावेशी बनेगा। देश की कुल आबादी में 65% लोगों की आयु 35 वर्ष से कम है। ये युवा आबादी हमारी सबसे मूल्यवान संपदा है। हमारे देश के युवा टैलेंटेड है, कमिटेड है और स्किल्ड है। जमीनी स्तर पर युवाओं द्वारा किए गए विभिन्न समस्याओं के इनोवेटिव और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को देखकर मुझे समाज और देश के लिए उनकी प्रतिबद्धता का परिचय मिलता है। केवल 28 वर्ष के औसत आयु वाली युवा टीम द्वारा हाल ही में रॉकेट का सफल प्रक्षेपण करके अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए चरण का शुभारंभ किया गया है। हमारे अनेक युवा स्वरोजगार के मार्ग पर चलते हुए रोजगार प्रदान करने की संस्कृति को अपना रहे हैं। युवा उद्यमियों की भागीदारी से हमारे देश में एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित हुआ है। विश्व के बड़े बड़े उद्यम भारत के युवाओं की प्रतिभा और लगन से प्रभावित रहते हैं तथा उन्हें नेतृत्व की भूमिकाओं में नियुक्त करते हैं। ऐसे युवाओं ने विश्व समुदाय में भारत की युवा शक्ति की साख बढ़ाए है। हमारी युवा पीढ़ी भारत के स्वर्णिम भविष्य के प्रति मेरी आस्था को और प्रबल बनाती है। हमारे विद्यार्थी भारत के भविष्य निर्माता है। जिस तरह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सरकार और समाज का एकजुट रहना जरूरी है, उसी तरह विद्यार्थियों के वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा के लिए भी सभी के सम्मिलित प्रयास जरूरी है। सार्वजनिक परीक्षाएं विद्यार्थियों के लिए अवसर के द्वार खोलती है, इसीलिए सरकार इन परीक्षाओं में सुधार के लिए व्यापक कदम उठा रही है। इन सुधारों का उद्देश्य है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर पूरी तरह से अंकुश लगे, परीक्षा प्रणाली और अधिक पारदर्शी तथा युवाओं के लिए सुरक्षित एवं भरोसेमंद हो। सरकार के प्रयासों तथा नई आर्थिक गतिविधियों से युवाओं के लिए अनेक प्रकार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करके हमारे युवा सफलता के नए मार्ग चुन सकते हैं। हमारे युवाओं का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य देश के भविष्य का आधार है। परिवार और समाज की भी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहे। खेल कूद को युवाओं के विकास और राष्ट्र निर्माण के माध्यम के रूप में अपनाया जा रहा है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक देश के सभी क्षेत्र के लिए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम उपलब्ध कराया जा रहा है। खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। इन प्रयासों के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा में हमारे खिलाड़ी प्रदर्शन और उपलब्धियां के उच्च शिखरों तक पहुंच रहे हैं। एक ओर हमारे देश में सबसे बड़ी युवा आबादी है तो दूसरी ओर वरिष्ठ नागरिकों की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। 70 साल और उससे अधिक आयु के लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं उपलब्ध है। वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपनेपन की भावना तथा उनके आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए पूरे समाज को संवेदनशील रहना चाहिए। प्यारे देशवासियों, सत्य और न्याय के पक्ष में मानवता विरोधी शक्तियों पर विजय प्राप्त करने की भारतीय परंपरा पर हम गर्व करते हैं। 26 जुलाई को हमने कारगिल विजय दिवस मनाया है। उसके पहले 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के आरंभ का 1 वर्ष पूरा होने पर हमने अपनी सेनाओं के अतुल्य पराक्रमों को

आतंकवाद के विरुद्ध ऐतिहासिक ऑपरेशन भारतीय सेनाओं की अचूक क्षमता का प्रमाण है। आतंकियों और उनके समर्थकों को यह कठोर संदेश दिया गया कि वे चाहे कहीं भी जाकर छुप जाए, लेकिन उन्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। आतंकवाद को संरक्षण देने वाले देश के साथ अतीत में की गई सिंधु जल संधि का निलंबन करना हमारे देश के, विशेषकर किसानों के हित में एक निर्णायक कदम है। दशकों से नक्सलवाद देश के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ था। भारत को नक्सल मुक्त बनाना एक बड़ी उपलब्धि है। आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र में उत्साह का वातावरण है तथा विकास की सर्वस्पर्शी धारा प्रवाहित हो रही है। बस्तर ओलंपिक्स में खिलाड़ियों ने, बस्तर पंडुम में कलाकारों ने तथा इन आयोजनों में दर्शकों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। राष्ट्र गौरव की रक्षा हेतु निर्मित मराठा सैन्य परंपरा से जुड़े 12 दुर्गों को पिछले वर्ष यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में स्थान दिया गया है और इस वर्ष भगवान बुद्ध के प्रथम प्रवचन के स्थल सारनाथ को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। भारत भूमि में एक और भगवान बुद्ध से जुड़े आध्यात्मिक स्मारक है तो दूसरी ओर आत्मसम्मान तथा अपनी गौरवशाली परंपराओं की रक्षा हेतु युद्ध करने की हमारी प्रभावशाली क्षमता के प्रतीक भी विद्यमान है। मेरे प्यारे देशवासियों, सभी भारतवासियों का विकास और कल्याण ही विकसित भारत के निर्माण का वास्तविक लक्ष्य है। तेलुगु भाषा में रचना करने वाले महान राष्ट्रवादी साहित्यकार गुर्जाड़ा अप्पा राव ने अपने एक गीत में सभी भारतवासियों को देश प्रेम का अमूल्य संदेश दिया है। उन्होंने कहा है, देश मुन्नु प्रेमिंचु मन्ना, मंची अन्नदे पेंचु मन्ना, देश मंटे मट्टी का दोई, देश मंटे मनुष्य लोए। इन पंक्तियों का भाव है, देश से प्रेम करो, भलाई को बढ़ाओ। देश का अर्थ केवल मिट्टी ही नहीं है, देश का अर्थ समस्त जन समुदाय है। मुझे विश्वास है कि समाज की भागीदारी और सरकार के प्रयासों से गांव-गांव में, नगर-नगर में, भारत के घर-घर में रहने वाले सभी लोग स्वस्थ, सुखी और समृद्ध बनेंगे। आइए देश प्रेम की इसी सर्वसमावेशी भावना के साथ हम सब स्वतंत्र भारत को विकसित भारत बनाने की राष्ट्रीय साधना में स्वयं को समर्पित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माय डियर फेलो सिटीजन्स, नमस्कार। ऑन द ईव ऑफ आवर इंडिपेंडेंस डे, आई कन्वे माय वार्म ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस नेशनल फेस्टिवल। इन ए फ्यू आवर्स फ्रॉम नाउ, आवर कंट्री विल विटनेस द ऑस्पिशियस बिगिनिंग ऑफ द 80th ईयर सिंस इट्स इंडिपेंडेंस। ऑल इंडियंस लिविंग इन द कंट्री एंड अब्रॉड celebrate this festival with great joy. Our tricolor is the symbol of our freedom. We unfurl it with immense pride. On the 15th of August 1947, Bharat Mata was liberated from the shackles of subjugation. Every citizen became an architect of the destiny of independent India. The true meaning of freedom lies in ensuring that all citizens are able to utilize opportunities to fulfill their aspirations and work towards the goal of making India the foremost nation in the world. Dedicated students and teachers, scientists and engineers committed to development, doctors and healthcare workers providing health services, industrious workers and our annadata farmers are all contributing to nation building through their efforts. Talented sportspersons, craft persons and artists, visionary intellectuals, diligent members of the workforce in the private and public sectors, people's representatives devoted to serving them, officials in the judicial system, dutiful civil servants, big and small investors contributing to our economy, selfless social workers and all Safai Mitra who are frontline workers of the Swachhata Abhiyan are all playing an important role.

0: We're listening to Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu's address to the nation.
1: स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अभी आप भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश सुन रहे थे।
2: एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 8 बजे हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे गीत मालिका कार्यक्रम।

इवनिंग, सलाम, नमस्ते, स्वागत है आपका आज के अपने फिल्मी संगीत के कार्यक्रम गीत मालिका में। आज का गीत मालिका का रोलर कोस्टर राइड लेकर हम हाजिर हैं आपके लिए कुछ बहुत प्यारी बातें, बहुत खास बातें और कुछ चुनिंदा गीतों के संग। और गीत मालिका की इस रोलर कोस्टर राइड में आज आप एंजॉय करेंगे ये सफर आपकी मित्वा आपके साथ ही आपकी दीप्ति के संग।

दोस्तों, कुछ शामें सिर्फ शामें नहीं होती, उनमें मौसम की खुमारी भी होती है और त्योहारों की तैयारी भी। और होती हैं कुछ यादें जिन्हें हम ताउम्र अपने साथ लेकर चलते हैं। और आज की शाम दोस्तों, आज की शाम भी कुछ ऐसी ही है। एक नई उम्मीद, एक नई उड़ान और खुद की खुद से पहचान की शाम। तो आइए जिंदगी को थोड़ा और करीब से महसूस करते हैं और करते हैं खुद से एक मुलाकात, रूबरू होते हैं अपने जुनून से, उस जुनून से जो हमें हर पल हर दम आगे बढ़ना सिखाता है।

0: रूबरू होकर खुद से मिलो तो कुछ ऐसा लगता है कि जिंदगी ना सिर्फ मंजिलों का नाम नहीं है, ये तो नाम है छोटी छोटी खुशियों को जीने का। और इमेजिन करिए, सावन की फुहार, हाथों में मेहंदी, झूले और देश डूबा है त्योहार के रंग में, आजादी के रंग में, तो ये खुशी कैसी होगी। आज की शाम में आजादी की खुली हवा है और साथ ही रौनक है, रौनक त्योहारों की। तो चलिए इस रौनक में थोड़ा सा रंग डालते हैं, थोड़ी सी मस्ती डालते हैं और मिलाते हैं कुछ ऐसे गीत से कि बस पाओ ना अपने आप ही तिरक उठेंगे।
1: राई माझी लाड़ा ची गा।

पर जोश, जिस जोश के साथ ये गीत सुना, ये जोश तभी मुकम्मल होगा जब उसके साथ उम्मीद भी हो, है ना? और जब उम्मीद मुस्कुराने लगे तो हर सफर एक जश्न बन जाता है। दोस्तों, कुछ जज्बे ऐसे होते हैं ना जिन्हें किसी एक दिन या किसी एक मौके का मोहताज नहीं होना पड़ता, वो तो बस दिल में होते हैं। उमंग बनकर, हौसला बनकर, अपनी पहचान पर गर्व बनकर। तो चलिए जीते हैं थोड़ा सा इसी जोश को, थोड़ा और खुलकर। कदमों में रफ्तार, दिल में जुनून, और होठों पर बस एक ही आवाज़।

दोस्तों जिद और जोश ये सिर्फ जीतने के लिए नहीं होता। जोश वो ताकत है जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता दिखाती है या रास्ता आसान बना देती है। कभी सपने बड़े होते हैं, कभी रास्ते मुश्किल होते हैं, लेकिन जब इरादा पक्का हो तो मुश्किलें छोटी लगने लगती हैं। क्योंकि जिंदगी में कुछ मुकाम ऐसे होते हैं ना जहां पहुंचने के लिए सिर्फ ख्वाब देखना काफी नहीं, उन्हें हर हाल में हासिल करने का जुनून होना चाहिए। हर हाल में हासिल करने का जुनून। चलिए देते हैं अपने इसी जुनून को आवाज़।

जिन्होंने अभी अभी हमारा चैनल ट्यून इन किया है उनको हम बता दें कि आप जुड़े हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के संग। कार्यक्रम चल रहा है गीत मालिका और आज इस कार्यक्रम की रोलर कोस्टर राइड को लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी साथी आपकी मित्वा आपकी अपनी दीप्ति। और आज की ये शाम है कुछ खास क्योंकि हम साथ मिलकर मना रहे हैं अपने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या। तो क्यों ना इस शाम को थोड़ा सा और कलरफुल बना लें, थोड़ी सी फिक्र को किनारे रखें और आजादी की इस खूबसूरत हवा में खुशी और मस्ती के कुछ पल बांट लें। तो चलिए भाई हमारे दोस्तों हमारे श्रोताओं हमारे लवली लिसनर्स के लिए आज की ये शाम ये मुस्कान और ये जश्न ओवरऑल आज की ये पार्टी मेरी तरफ से।

दोस्तों, आज की खूबसूरत शाम हम बिता रहे हैं कुछ यादगार पलों को साथ में, अपनी ही धुन पर, अपनी ही मस्ती में हम बांट रहे हैं कुछ कुछ मुस्कुराहटें और कर रहे हैं कुछ कुछ बातें। और चलिए, अब वक्त है कि इन पलों को आसमान में थोड़ा सा खुला छोड़ दिया जाए, ताकि ये यादें थोड़ी और भी खूबसूरत हो जाए। क्योंकि जिंदगी का असली मजा भी तो इसी में है, जब हम कुछ देर के लिए मंजिल की दौड़, रास्तों की उलझन और कल की फिक्र को पीछे छोड़कर बस इस पल में जीना सीख लेते हैं, जहां ना तो कोई जल्दी होती है, ना कोई बोझ हो, बस एक सुकून होता है। तो चलिए, आज की इस शाम को बनाते हैं और भी खास, करते हैं थोड़ा सा हल्का महसूस, थोड़ा दिल से मुस्कुराते हैं, थोड़ा सुकून को पास लाते हैं और छोड़ देते हैं खुद को इस खूबसूरत माहौल की धुन पर।

हवाओं के साथ चलते चलते चलिए बदलते हैं थोड़ा सा रास्ता, क्योंकि हर सफर में थोड़ा सा ठहरना जरूरी है, लेकिन ठहराव के साथ आगे बढ़ना भी जरूरी है। मतलब क्या हुआ इस बात का? तो जनाब, बात किसी मंजिल की नहीं होती, बात तो बस उन पलों की होती है जिन्हें याद करके बाद में मुस्कुराया जा सके। ये जिंदगी बिना बड़ी अजीब होती है, कभी हमें किसी मंजिल तक पहुंचने की जल्दी होती है और कभी बस मन करता है कि रास्ता थोड़ा सा लंबा और हो जाए, कुछ देर बस यूं ही साथ चलते रहे बिना ये सोचे कि अगला पड़ाव कैसा है, कहाँ है। क्योंकि असल में याद तो वही पल रह जाते हैं जिनमें हमने कुछ हासिल करने के लिए नहीं बल्कि अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकाला हो। दोस्तों के साथ हंसी, बेवजह की बातें, वो छोटी छोटी खुशियां जिनका कोई हिसाब नहीं, जिनका कोई मतलब भी नहीं। तो चलिए आज कुछ ऐसा ही करते हैं, मंजिल की बात हम बाद में करेंगे, फिलहाल जिंदगी को थोड़ा सा अपने अंदाज में जीते हैं।

पर दोस्तों देखिए ना, आपसे बातें करते करते इस रोलर कोस्टर राइड को विदा कहने का वक्त आ गया। लेकिन विदाई अगर ऐसी हो कि चेहरे पर मुस्कान रह जाए तो वो विदाई कहलाएगी क्या? बताइएगा मुझे। वैसे आज की इस मुलाकात में कभी जिंदगी के रंग थे, कभी सपनों की बातें, कभी मिट्टी से, अपनी मिट्टी से जुड़ा गर्व, और फिर बहुत सारी ढेर सारी हंसी मस्ती ठहाके भी। असल जश्न की सबसे अच्छी बात यही तो है कि उसे अकेले नहीं, साथ मिलकर जिया जाता है। तो बस जाते जाते कोई टाटा बबाए नहीं, एक बार आखिरी बार आज के इस प्रोग्राम में दिल खोल कर मुस्कुराते हैं और इस शाम को एक बार फिर से साथ में सेलिब्रेट करते हैं।

आज की गीत मालिका की रोलर कोस्टर राइड आपने एंजॉय करी आपकी अपनी दीप्ति पाठक निधीश के संग। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने की मुझे इजाजत दीजिए। बहुत जल्द मिलूंगी आपसे फिर किसी यूं ही संगीतमय मोड़ पर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल।

0: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। राष्ट्रपति ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना हमारा संकल्प। सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति का भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान। राष्ट्रपति ने डिजिटल क्रांति को विकास का महत्वपूर्ण कारक बताया। कहा, डिजिटल तकनीक से विकास और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की घोषणा। और उड़ीसा में लगातार मूसलाधार वर्षा से बाढ़ की स्थिति गंभीर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
3: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
2: राष्ट्रपति ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके आदर्शों के आधार पर ही वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है।
3: महात्मा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक न्याय, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समानता के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया है। उनके आदर्शों के अनुसार विगत कुछ वर्षों के दौरान वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है।
2: राष्ट्रपति मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया।
3: हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेडी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है।
2: राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
3: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
2: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है।
3: प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी न हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें।

0: राष्ट्रपति ने भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अंत्योदय की भावना के साथ विकास का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने का संकल्प सुदृढ़ है। अपने संबोधन के अंत में राष्ट्रपति ने महान तेलुगु साहित्यकार गुरजाड़ा अप्पा राव के एक गीत का उल्लेख किया। इसका भाव है, अपने देश से प्रेम करो, सर्वहित बढ़ाओ, देश का अर्थ केवल मिट्टी नहीं बल्कि समस्त जन समुदाय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रेरणादायक और सुविचारपूर्ण भाषण दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू के विचार राष्ट्र की शक्ति और प्रत्येक भारतीय की आकांक्षाएं दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश देशवासियों को विकसित भारत के लिए नए दृढ़ संकल्प के साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री बिरला ने कहा कि देश की आजादी के लिए प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करने का अवसर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रेल भवन परिसर में तिरंगा रैली का नेतृत्व किया। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य रेलवे संगठन में देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का आयोजन वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चल रहे तीसरे चरण के साथ किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया।
1: हमारी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आज भारत केवल अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने वाला देश ही नहीं रहा, बल्कि हम ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस एक्सपोर्ट्स के क्षेत्र में एक उभरती हुई शक्ति बन चुके हैं। हमारा घरेलू रक्षा उत्पादन जो 2014 तक मात्र 46,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, वो वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला की प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पहली बार लाल किले पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। इस भव्य आयोजन के माध्यम से राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150 वर्ष पुरानी विरासत को याद किया जाएगा। साथ ही 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में देश की यात्रा में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाया जाएगा। समारोह में 2500 सेना, नौसेना और वायुसेना के कैडेट तथा मेरा युवा भारत के स्वयंसेवक भाग लेंगे। इस वर्ष लाल किले पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में देश के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 5,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। इनमें समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभार्थी महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर, स्वच्छ भारत मिशन के शहरी सफाई कर्मचारी, राष्ट्रीय नवाचार कार्यक्रम के युवा नवोन्मेष, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के प्रशिक्षित उत्कृष्ट युवा और पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी कारीगर इस समारोह में शामिल होंगे। समारोह के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। विभिन्न एजेंसियों के लगभग 15,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। लाल किले पर 1,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवा की घोषणा की है। ये सेवा सवेरे 4 बजे से दिन के 10 बजे तक प्रभावी रहेगी। यात्री सवेरे 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन पर उतरकर लाल किला तक पहुंच सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। एक रिपोर्ट।
3: इनमें से 13 पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए हैं। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल है। लेफ्टिनेंट कर्नल मनियो फ्रांसिस और मेजर जितेंद्र राठी को कीर्ति चक्र के लिए चुना गया है। हवलदार गजेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल जगबीर सिंह, बशीर अहमद, कांस्टेबल जसवंत सिंह, बलविंदर सिंह, तारिक हुसैन और इंस्पेक्टर सुनील कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया जाएगा। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्र वर्ष 1947 में देश के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले लोगों का स्मरण कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर हम उन लाखों देशवासियों को याद कर रहे हैं जो विभाजन से जुड़ी हिंसा में मारे गए या विस्थापित की त्रासदी झेलने को मजबूर हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि आज हमें जिस स्वतंत्रता का सुख प्राप्त हुआ है वो पिछली पीढ़ियों के महान बलिदान से मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित लोगों के साहस का स्मरण किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उन लोगों को याद करने का अवसर है जिन्होंने विभाजन के दौरान अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनों को खोया और पलायन करने के लिए मजबूर हुए। हरियाणा के गुरुग्राम में इस अवसर पर एक कार्यक्रम में श्री नवीन ने उन सभी परिवारों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया और विस्थापन का दर्द सहा।
4: जब 1940 में लाहौर प्रस्ताव में द्वीय राष्ट्र के सिद्धांत की चर्चा हुई उसी समय इस देश के लोगों को अंदाजा मिलने लगा था कि इस देश में जब आजादी मिलेगी तो आजादी का दंश हमें विभाजन के रूप में देखना पड़ेगा। मैं आज उन सभी परिवारों को जिन्होंने अपने परिवार जनों को खोया, जिन्होंने विस्थापन का दर्द झेला, मैं उन सबको आज नमन करता हूं।
0: रांची में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 21वें दिन भी जारी है। वरिष्ठ अधिकारी आज जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित धरना स्थल पर पहुंचे और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों से मुलाकात कर कल प्रस्तावित तिरंगा यात्रा के संबंध में जानकारी ली। बड़ी संख्या में छात्रों की यात्रा में शामिल होने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की है। छात्रों ने कहा है कि तिरंगा यात्रा शांतिपूर्ण रूप से निकाली जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए आज प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए केंद्रीय डिजिटल बैंक मुद्रा डिजिटल रूपया शुरू किया। इस अवसर पर खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार जरूरतमंदों को मुफ्त राशन वितरण पर 2,10,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है। इस अवसर पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है। भुवनेश्वर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओडिशा में लगातार घनघोर वर्षा जारी है। वर्षा के कारण बालेश्वर, भद्रक, क्योंझर और मयूरभंज के कुछ हिस्से प्रभावित हुए हैं।
5: आज उत्तरी ओडिशा में चारों तरफ पानी ही पानी है। बैतरणी, जलका, बूढ़ा बुलंगा, सुवर्ण रेखा और सालंदी नदियों का एक बार फिर उफान पर है। खेत पानी में डूब गए हैं और सड़कें व गांव में पानी भरा हुआ है। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। कई लोग राहत शिविरों में हैं और कुछ इलाकों के निवासी राहत सामग्री और गाँव में बाढ़ का पानी घुसने को लेकर चिंता जता रहे हैं। IMD ने आज सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़ और संबलपुर के लिए ऑरेंज वार्निंग और 14 जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: जल जीवन मिशन के 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को इसे शुरू किया था। योजना का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध कराना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। राष्ट्रपति ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। कहा, विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना हमारा संकल्प। सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति का भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान। राष्ट्रपति ने डिजिटल क्रांति को विकास का महत्वपूर्ण कारक बताया। कहा, डिजिटल तकनीक से विकास और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की घोषणा और उड़ीसा में लगातार मूसलाधार वर्षा से बाढ़ की स्थिति गंभीर। इसके साथ ही

तिरंगा मुहिम वंदे मातरम के 150वें साल के नाम वक्फ है। हिंदुस्तान का कौमी परचम सिर्फ एक परचम नहीं है, ये हिंदुस्तान की आजादी की कहानी है, ये हमारे जाबाजों की कुर्बानियों की याद है, ये मुल्क के फख्र, इत्तेहाद और सालमियत की अलामत है। ज़ाफ़रानी रंग हिम्मत और कुर्बानी के जज्बे का पैगाम देता है। सफेद रंग अमन और सच्चाई की अलामत है। सब्ज रंग खुशहाली और तरक्की की उम्मीद को जाहिर करता है और इन तीनों रंगों के दरमियान मौजूद अशोक चक्र हमें मुसलसल आगे बढ़ते रहने की तहरीक देता है। हिंदुस्तानी कौमी परचम जिसे हम प्यार से तिरंगा कहते हैं आवाम के जज्बात और कौमी शऊर में एक खास मुकाम रखता है। कौमी परचम की मौजूदा शक्ल मशहूर मुजाहिद आजादी माहिर तालीम और कई जबानों के आलिम पंगली वेंकैया ने डिजाइन की थी। पंगली वेंकैया की पैदाइश 2 अगस्त सन 1876 को हुई थी और उनका इंतकाल 4 जुलाई सन 1963 को हुआ। उन्होंने 1 अप्रैल सन 1921 को विजयवाड़ा में महात्मा गांधी से मुलाकात के दौरान कौमी परचम का डिजाइन पेश किया था। इसके बाद 22 जुलाई सन 1947 को दस्तूरसाज असेंबली के इजलास में हिंदुस्तान के कौमी परचम को इसकी मौजूदा शक्ल में इख्तियार किया गया। यौम आजादी और यौम जमहूरिया जैसे कौमी त्योहारों पर तिरंगे को पूरे एहतराम और वकार के साथ लहराया जाता है। आज हर घर तिरंगा सिर्फ एक मुहिम नहीं है, ये उस जज्बे का जश्न है जो हमें अलग अलग जबानों सकाफतों और रवायात के बावजूद एक कौम के तौर पर जोड़ता है। जब किसी घर की छत पर तिरंगा लहराता है तो वहां सिर्फ एक परचम नहीं लहराता, वहां हिंदुस्तान का फख्र लहराता है। आइए इस यौम आजादी पर तिरंगे को अपने घर लाएं, इसकी अजमत को समझें और मुल्क की तामीर में अपने किरदार का अहद करें, क्योंकि तिरंगा हमारा फख्र है, तिरंगा हमारी पहचान है और तिरंगा ही हमारे मुल्क के प्रति हमारे एहतराम और अहद की शान है। हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा और हर हिंदुस्तानी के दिल में हिंदुस्तान के लिए अटूट मोहब्बत और फख्र।

ああ、

आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस के शरियात। सामने अब पेश है गजलों पर मबनी प्रोग्राम। एक फनकार आज की फनकार है चित्रा सिंह।

देशवासियों नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को मैं इस राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक बधाई देती हूँ। अब से कुछ ही घंटों बाद हमारे देश की स्वाधीनता के 80वें वर्षों का शुभारंभ होगा। देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीय ये पर्व उल्लास के साथ मनाते हैं। हमारा तिरंगा हमारी स्वाधीनता का प्रतीक है, इसे हम पूरी शान से फहराते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत माता स्वाधीनता की बेड़ियों से मुक्त हुई। सभी देशवासी स्वतंत्र भारत की नियति के निर्माता बने। हम भारत के लोग अपने सपनों को साकार करने के अवसरों का उपयोग कर सके और भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने की भावना से कार्य करें, इसी में स्वतंत्रता की सार्थकता है। निष्ठावान विद्यार्थी और शिक्षक, विकास के लिए तत्पर वैज्ञानिक और इंजीनियर, स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत डॉक्टर

तथा संविधान में निहित मूल कर्तव्यों का पालन करने वाले सभी नागरिक राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भागीदार है। मैं उन सभी के हृदय से सराहना करती हूँ। तीनों सेनाओं के जवानों, सभी सशस्त्र पुलिस बलों एवं पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा के लिए मैं उनकी विशेष सराहना करती हूँ। विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों और दूतावासों में कार्यरत देशवासियों की मैं प्रशंसा करती हूँ। प्यारे देशवासियों, स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अंत्योदय की भावना के साथ हमारा संकल्प है कि विकास के लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचे। अपने समृद्ध विरासत और स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों को अपनाते हुए हम आधुनिक विकास के मार्ग पर अग्रसर है। ब्रह्म राष्ट्र जागरूयम, ये वेदवाक्य हमें प्रेरणा देता है कि हम राष्ट्र के लिए सदैव जागरूक रहे। हमारे स्वाधीनता संग्राम में संघर्षरत अलग अलग विचारधाराओं के लोगों का लक्ष्य एक ही था, भारत की स्वतंत्रता। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम जन जन के गीत बन गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में अनगिनत देशवासी स्वाधीनता संग्राम से जुड़ गए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज सुधार तथा राष्ट्र निष्ठा के उच्च आदर्श प्रस्तुत किए। भारत माता की उन सभी महान संतानों को मैं सादर नमन करती हूँ जिनके आदर्श पर चलते हुए हमारा देश स्वतंत्र हुए और आगे बढ़ा। आज 14 अगस्त के दिन को हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। हम उन लाखों देशवासियों को याद करते हैं जो विभाजन से जुड़े हिंसा में मारे गए या विस्थापन की त्रासदी झेलने को मजबूर हुए। सांप्रदायिक हिंसा की वजह से लाखों लोगों को शरणार्थी बनना पड़ा और बंटवारे की विभीषिका सहन करनी पड़ी। फिर भी उन्होंने अपनी पहचान नहीं छोड़ी। जब हमारा देश स्वतंत्र हुए उस समय देश के विभाजन के गंभीर परिणामों के साथ साथ 550 से अधिक रियासतों को नव स्वाधीन भारत के साथ जोड़ना भी एक असाधारण चुनौती थी। सरदार पटेल ने राजशाही व्यवस्थाओं को समाप्त करके हमारे स्वाधीन लोकतंत्र में उनका विलय किया। एक कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से आधुनिक भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पावन स्मृति को मैं सादर नमन करती हूँ। प्यारे देशवासियों, भारत के लोगों द्वारा निर्मित हमारे संविधान नागरिकों की भागीदारी पर आधारित है। लोकतंत्र की जननी भारत भूमि के निवासियों में जन भागीदारी की भावना सदा से विद्यमान रही है। उस भावना को नई ऊर्जा के साथ हमारे देशवासी आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय अभियानों को जन भागीदारी से आगे बढ़ाया जा रहा है। ये हमारे लोकतंत्र की प्रेरक उपलब्धि है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्रों में असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरी भी कर सकता है। हमारे संविधान में कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका के उत्तरदायित्व का स्पष्ट उल्लेख है। जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि वे विधायिका में जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करें। कार्यपालिका का कर्तव्य है कि जनहित और राष्ट्रहित की नीतियों को कार्य रूप दे। न्याय व्यवस्था से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का एक कर्तव्य है कि अभाव के कारण कोई व्यक्ति न्याय से वंचित ना रहे। हर नागरिक को, विशेषकर वंचित वर्गों के लोगों को समानता के आधार पर सम्मान के साथ समय से न्याय मिलना चाहिए। प्यारे देशवासियों, पिछले एक दशक से कुछ अधिक समय में हमारे देश ने तेज गति से समावेशी विकास किया है। विरासत और विकास के समन्वय को प्राथमिकता दी है तथा विकास में बाधक दशकों पुराने अनेक अवरोधों को दूर किया है। हमारे देशवासी महात्मा ज्योतिबा फुले की 100वीं जयंती मना रहे हैं। महात्मा फुले

और क्रांति ज्योति सावित्री बाई फुले ने सामाजिक न्याय, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समानता के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया है। उनके आदर्शों के अनुसार विगत कुछ वर्षों के दौरान वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्यों को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है। महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के नए प्रतिमान स्थापित हुई है। 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाने में सफलता मिली है। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेश की योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लगभग 59 करोड़ खाता धारक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुके हैं। उनमें 32 करोड़ से अधिक महिला खाता धारक शामिल है। 80 करोड़ लोगों के लिए निःशुल्क राशन की व्यवस्था द्वारा उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपया तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई है। किसान सम्मान निधि तथा किसान क्रेडिट कार्ड से खेती, डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन जैसे गतिविधियों से जुड़े किसान भाई बहनों को संबल मिला है। विश्व का इतिहास साक्षी है कि सांस्कृतिक आत्मबल पर आधारित विकास गतिमान और स्थायी होता है। आज देश में ये चेतना बलवती हो रही है कि सांस्कृतिक गौरव का भाव देश की संप्रभुता को आत्मिक शक्ति प्रदान करता है। हमारे पूर्वजों ने ज्ञान विज्ञान, कला संस्कृति, अध्यात्म और सदाचार के अनमोल विरासत सौंपी है। हम विरासत और विकास के समन्वय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेडी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सरकार ने जन कल्याण की सुविधाओं को पारदर्शी तरीके से जन जन तक पहुंचाया है। हमारे देश में हाईवेज, वाटरवेज, रेलवेज और एयरवेज के रूप में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। इससे नए उद्यमों के लिए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, नए रोजगारों का सृजन हो रहा है तथा निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा है। प्यारे देशवासियों, विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध एवं अस्थिरता का सभी देशों पर प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रही है। आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर की तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है। आधुनिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी भारत विश्व स्तर पर अग्रणी योगदान दे रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 के कुछ लक्ष्यों को हमारे देश ने समय से पहले ही प्राप्त कर लिया है। रिन्यूएबल एनर्जी के विकास को पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व गति मिली है। हमारी विदेश नीति देश हित पर आधारित है। शांति, सहयोग, संवाद तथा वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श हमारी विदेश नीति के स्तंभ है। आर्थिक सहयोग बढ़ाने तथा पारस्परिक संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए हमने अनेक देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। ग्लोबल साउथ के देशों में हम अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। विश्व पटल पर हमारे देश का सम्मान बढ़ा है। हम रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर में विश्वास रखते हैं। हमारे प्रयास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सहित मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस में विश्व समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व हो। हमारे इस प्रयास को अनेक देशों का प्रबल समर्थन मिल रहा है। प्यारे देशवासियों, प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किस

किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो। हमारे प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें। पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी आस्था हमारी परंपरा का हिस्सा है। संताली भाषा के एक सरल गीत में हमें गहरा संदेश मिलता है। पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा रचित उस गीत के कुछ शब्द इस प्रकार है। दारे गुजुकान नेलते मेरु चरे राग बया दाया हायागे, गुजुकान अबुआ ज्योति धर्म दारे चेदा बाबन राग बया अबो ओना नेलते। इस गीत में एक पेड़ के पूरी तरह सूख जाने के कारण रोते हुए एक तोते का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं, हे मेरे भाइयों, मरते हुए पेड़ को देखकर तोता पक्षी दुख भरी आवाजों में रो रहा है। हे मेरे भाइयों, मानव संस्कृति रूपी वृक्षों का विनाश होता देखकर हम मानव समाज के लोग विलाप क्यों नहीं कर रहे हैं? इस गीत का संदेश ये है कि सभी मनुष्यों को मानवीय मूल्यों और प्रकृति के संरक्षण के लिए तत्पर रहना चाहिए। एक हरा हरा पेड़ मानव समाज के नैतिक और स्वस्थ रहने का प्रतीक है। एक पेड़ माँ के नाम तथा लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट यानी लाइफ जैसे अभियानों की भावना के अनुरूप सभी को पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास करना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता होती है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बेटियां प्रभावशाली प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही कृषि उत्पादकता बढ़ाने में योगदान देने वाले ड्रोन दीदी से लेकर वायुसेना में फाइटर कॉम्बैट लीडर बनने तक विभिन्न क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। हाल ही में ग्लासगो में संपन्न हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के कुल 13 स्वर्ण पदकों में 8 स्वर्ण पदक बेटियों ने जीते हैं। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। स्वयं सहायता समूह की 10 करोड़ से अधिक महिला सदस्य है। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया था। इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा चुका है। अब हमारे देश 3 करोड़ महिलाओं को नई लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मुद्रा योजना के तहत सहायता प्राप्त करने वाले उद्यमियों में लगभग 2/3 लाभार्थी महिलाएं हैं। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता के प्रयासों के साथ साथ हम देख रहे हैं कि ये विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। मतदान में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी हमारी गणतंत्र की विशेष सफलता है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं का 33% प्रतिनिधित्व आरक्षित करने के लिए वर्ष 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया जा चुका है। इस अधिनियम के लक्ष्य को प्राप्त करने से महिलाओं का नेतृत्व बढ़ेगा तथा हमारे लोकतंत्र और अधिक समावेशी बनेगा। देश की कुल आबादी में 65% लोगों की आयु 35 वर्ष से कम है। ये युवा आबादी हमारी सबसे मूल्यवान संपदा है। हमारे देश के युवा टैलेंटेड है, कमिटेड है और स्किल्ड है। जमीनी स्तर पर युवाओं द्वारा किए गए विभिन्न समस्याओं के इनोवेटिव और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को देखकर मुझे समाज और देश के लिए उनकी प्रतिबद्धता का परिचय मिलता है। केवल 28 वर्षों की औसत आयु वाली युवा टीम द्वारा हाल ही में रॉकेट का सफल प्रक्षेपण करके अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए चरण का शुभारंभ किया गया है। हमारे अनेक युवा स्वरोजगार के मार्ग पर चलते हुए रोजगार प्रदान करने की संस्कृति को अपना रहे हैं। युवा उद्यमियों की भागीदारी से हमारे देश में एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित हुआ है। विश्व के बड़े बड़े उद्यम भारत के युवाओं की प्रतिभा और लगन से प्रभावित रहते हैं तथा उन्हें नेतृत्व की भूमिकाओं में नियुक्त करते हैं। ऐसे युवाओं ने विश्व समुदाय में भारत की युवा शक्ति के साथ बढ़ाए हैं। हमारी युवा पीढ़ी भारत के स्वर्णिम भविष्य के प्रति मेरी आस्था को और प्रबल बनाती है। हमारे विद्यार्थी भारत के भविष्य निर्माता है। जिस तरह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सरकार और समाज का एकजुट रहना जरूरी है,
उसी तरह विद्यार्थियों के वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा के लिए भी सभी के सम्मिलित प्रयास जरूरी है। सार्वजनिक परीक्षाएं विद्यार्थियों के लिए अवसर के द्वार खोलती है, इसीलिए सरकार इन परीक्षाओं में सुधार के लिए व्यापक कदम उठा रही है। इन सुधारों का उद्देश्य है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर पूरी तरह से अंकुश लगे, परीक्षा प्रणाली और अधिक पारदर्शी तथा युवाओं के लिए सुरक्षित एवं भरोसेमंद हो। सरकार के प्रयासों तथा नई आर्थिक गतिविधियों से युवाओं के लिए अनेक प्रकार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करके हमारे युवा सफलता के नए मार्ग चुन सकते हैं। हमारे युवाओं का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य देश के भविष्य का आधार है। परिवार और समाज की भी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहे। खेल कूद को युवाओं के विकास और राष्ट्र निर्माण के माध्यम के रूप में अपनाया जा रहा है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक देश के सभी क्षेत्र के लिए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम उपलब्ध कराया जा रहा है। खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। इन प्रयासों के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा में हमारे खिलाड़ी प्रदर्शन और उपलब्धियां के उच्च शिखरों तक पहुंच रहे हैं। एक ओर हमारे देश में सबसे बड़ी युवा आबादी है तो दूसरी ओर वरिष्ठ नागरिकों की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। 70 साल और उससे अधिक आयु के लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं उपलब्ध है। वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपनेपन की भावना तथा उनके आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए पूरे समाज को संवेदनशील रहना चाहिए। प्यारे देशवासियों, सत्य और न्याय के पक्ष में मानवता विरोधी शक्तियों पर विजय प्राप्त करने की भारतीय परंपरा पर हम गर्व करते हैं। 26 जुलाई को हमने कारगिल विजय दिवस मनाया है। उसके पहले 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के आरंभ का 1 वर्ष पूरा होने पर हमने अपने सेनाओं के अतुल्य पराक्रमों को स्मरण किया। आतंकवाद के विरुद्ध वो ऐतिहासिक ऑपरेशन भारतीय सेनाओं की अचूक क्षमता का प्रमाण है। आतंकियों और उनके समर्थकों को एक कठोर संदेश दिया गया कि ये चाहे कहीं भी जाकर छुप जाए, लेकिन उन्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। आतंकवाद को संरक्षण देने वाले देश के साथ अतीत में की गई सिंधु जल संधि का निलंबन करना हमारे देश के विशेषकर किसानों के हित में एक निर्णायक कदम है। दशकों से नक्सलवाद देश के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ था। भारत को नक्सल मुक्त बनाना एक बड़ी उपलब्धि है। आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र में उत्साह का वातावरण है तथा विकास के सर्वस्पर्शी धारा प्रवाहित हो रही है। बस्तर ओलंपिक्स में खिलाड़ियों ने, बस्तर पंडुम में कलाकारों ने तथा इन आयोजनों में दर्शकों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। राष्ट्र गौरव की रक्षा हेतु निर्मित मराठा सैन्य परंपरा से जुड़े 12 दुर्गों को पिछले वर्ष यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में स्थान दिया गया है और इस वर्ष भगवान बुद्ध के प्रथम प्रवचन के स्थल सारनाथ को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। भारत भूमि में एक और भगवान बुद्ध से जुड़े आध्यात्मिक स्मारक है तो दूसरी ओर आत्मसम्मान तथा अपने गौरवशाली परंपराओं की रक्षा हेतु युद्ध करने की हमारी प्रभावशाली क्षमता के प्रतीक भी विद्यमान है। मेरे प्यारे देशवासियों, सभी भारतवासियों का विकास और कल्याण ही विकसित भारत के निर्माण का वास्तविक लक्ष्य है। तेलुगु भाषा में रचना करने वाले महान राष्ट्रवादी साहित्यकार गुर्जरा अप्पा राव ने अपने एक गीत में सभी भारतवासियों को देश प्रेम का अमूल्य संदेश दिया है। उन्होंने कहा है, देश मुन्नु प्रेमिंचु मन्ना मंची अन्नदे
पेंचुमन्ना।

त्यौहार की दिली मुबारकबाद पेश करती हूं। अब से चंद ही घंटों बाद हमारे मुल्क की आजादी के 80वें साल का मुबारक आगाज होगा। मुल्क और बैरून मुल्क मुकीम तमाम भारतीय इस त्यौहार को जोशो खरोश के साथ मनाते हैं। हमारा तिरंगा हमारी आजादी की अलामत है, हम इसे पूरी शान के साथ लहराते हैं। 15 अगस्त सन 1947 के दिन भारत माता गुलामी की जंजीरों से आजाद हुई। तमाम अहले वतन आजाद भारत की तकदीर के मेमार बने। हम भारत के लोग अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के मौके से फायदा उठा सकें और भारत को बेहतरीन मुल्क बनाने के जज्बे के साथ काम करें, इसी में आजादी की मानवीयत है। फर्ज शनास तलबा और असातिज़ा तरक्की के लिए कोशा साइंसदान और इंजीनियर, सेहत के शोबे में खदमात अंजाम देने वाले डॉक्टर और तिब्बी कारकुन, मेहनती मजदूर और अनाज उगाने वाले किसान अपनी कोशिशों से कौम की तामीर कर रहे हैं। बासलाहियत खिलाड़ी, कारीगर और फनकार, रहनुमाई करने वाले दानिश्वर, निजी और सरकारी शोबों की टीमों के मेहनती अरकान, मफाद आमा में खदमात अंजाम देने वाले अवामी नुमाइंदगान, निजामे इंसाफ से वाबस्ता अदालती अहलकार, फर्ज शनास सिविल सर्वेंट्स, मईशत में तावुन देने वाले छोटे बड़े तमाम सरमायाकार, बेलौस समाजी कारकुन और सफाई मुहिम से मुंसलिक सरकर्दा कारकुन, हमारे सभी सफाई मित्र मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। दीगर शोबों में सरगर्म बेशुमार हम वतन, नीज आईन में दर्ज बुनियादी फराइज की पाबंदी करने वाले तमाम शहरी कौम की तामीर में अहम शराकतदार हैं। मैं उन सब की दिल की गहराइयों से सताइश करती हूं। तीनों अफवाज के जवानों, तमाम मुसल्ले पुलिस दस्तों और पुलिस अहलकारों की फर्ज शनासी के लिए मैं उनकी खास तौर पर तारीफ करती हूं। आलमी सतह पर भारत का वकार और इज्जत बढ़ाने वाले गैर मुकीम भारतीयों और सिफारतखानों में खिदमात अंजाम देने वाले अपने हम वतनों को भी मैं खराज तहसीन पेश करती हूं। प्यारे हम वतनों, आजादी की सद साला सालगिरह यानी 2047 तक एक तरक्की याफ्ता भारत की तामीर के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अंत्योदय के जज्बे के साथ हमारा अज्म है कि तरक्की का फायदा हर फर्द तक पहुंचे। अपनी शानदार विरासत और तहरीक आजादी के नजरियात को अपनाते हुए हम जदीद तरक्की की राह पर गामजन हैं। वैम राष्ट्रीय जागरियाम वैदकाया मंत्र हमें तरगीब देता है कि हम मुल्क के लिए हमेशा बेदार रहें। हमारी तहरीक आजादी में जद्दोजहद करने वाले मुख्तलिफ नजरियात के हामिल लोगों का मकसद एक ही था, भारत की आजादी। स्वदेशी तहरीक के दौरान वंदे मातरम हर शख्स का गीत बन गया। बाबा कौम महात्मा गांधी की कयादत में बेशुमार हम वतन तहरीक आजादी से वाबस्ता हो गए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाजी इस्लाह और वतन से वफादारी के आला उसूल पेश किए। भारत माता के इन सभी अजीम सपूतों को मैं अकीदत के साथ सलाम पेश करती हूं, जिनके उसूलों पर चलते हुए हमारा मुल्क आजाद हुआ और आगे बढ़ा। आज 14 अगस्त के दिन को हम तकसीम की हौलनाकी की याद का दिन के तौर पर मनाते हैं। हम उन लाखों हम वतनों को याद करते हैं जो तकसीम से मुताल्लिक तशद्दुद में मारे गए या नकल मकानी के अलमिये को झेलने पर मजबूर हुए। फिरका वाराना तशद्दुद की वजह से लाखों लोगों को पनाह गुजी बनना पड़ा और तकसीम की हौलनाकी बर्दाश्त करनी पड़ी। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शिनाख्त नहीं छोड़ी। जब हमारा मुल्क आजाद हुआ उस वक्त मुल्क की तकसीम के संगीन नतीज के साथ साथ 550 से ज्यादा रियासतों को नौ आजाद भारत के साथ जोड़ना भी एक गैर मामूली चैलेंज था। सरदार पटेल ने राजशाही निजामों का खात्मा करके उन्हें हमारी आजाद जमहूरियत में जम किया। एक ममनून कौम की जानिब से जदीद भारत के इतिहाद के मेमार मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल की मुकद्दस याद को मैं अकीदत के साथ खराज तहसीन पेश करती हूं। प्यारे हम वतनों,
भारत के लोगों के जरिए तश्कील दिया गया हमारा आईन शहरियों की शराकतदारी पर मबनी है। जमहूरियत की जाय पैदाइश सरजमीन हिंद के बाशिंदों में अवामी शराकतदारी का जज्बा हमेशा से मौजूद रहा है। इसी जज्बे को नई तवानाई के साथ हमारे हम वतन आगे बढ़ा रहे हैं। कौमी मुहिमात को अवामी शराकतदारी के जरिए आगे बढ़ाया जा रहा है। यह हमारी जमहूरियत की एक हौसला अफजा कामयाबी है। वकार और मवाक़े की मसावात नीज फर्द की अजमत हमारे आइन के अहम उसूल हैं। आज आम पस मंजर से ताल्लुक रखने वाले लोग मुख्तलिफ शोबों में गैर मामूली खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इससे मेरा ये यकीन मजीद पुख्ता होता है कि आज के भारत में हर शख्स बड़े ख्वाब देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। हमारे आईन में इंतजामिया मुकन्नना और अदलिया की जिम्मेदारियों का वाज़ेह जिक्र है। अवामी नुमाइंदों का फर्ज है कि वो मुकन्नना में अवामी उमंगों की तर्जुमानी करें। इंतजामिया का फर्ज है कि अवामी मफाद और कौमी मफाद की पॉलिसियों को अमली जामा पहनाए। निजाम इंसाफ से वाबस्ता हर फर्द का ये फर्ज है कि वसाइल की कमी के बाइस कोई शख्स इंसाफ से महरूम न रहे। हर शहरी को खुसूसन महरूम तबकात के लोगों को मसावात की बुनियाद पर इज्जत और वकार के साथ बर वक्त इंसाफ मिलना चाहिए। प्यारे हम वतनों, गुज़श्ता एक दहाई से कुछ ज्यादा अरसे में हमारे मुल्क ने तेज रफ्तारी से जामे और हमागीर तरक्की की है। विरासत और तरक्की के इम्तिजाज को तरजीह दी है। इस तरक्की की राह में हायल होने वाली कई दहाइयों पुरानी रुकावटों को दूर किया है। हमारे हमवतन महात्मा ज्योतिबा फूले की 200वीं जयंती मना रहे हैं। महात्मा फूले और क्रांति ज्योति सावित्री बाई फूले ने समाजी इंसाफ, तालीम, खवातीन को बाइख्तियार बनाने और मसावात के शोबों में तारीखी खिदमात अंजाम दी हैं। उनके उसूलों के मुताबिक गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान महरूम तबकात को आगे बढ़ाने के मकसद को कौमी तरजीह दी गई है। ख़वातीन की तालीम के मैदान में कामयाबी के नए मयारात कायम हुए हैं। 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी से निजात दिलाने में कामयाबी हासिल हुई है। दुनिया के सबसे बड़े माली शमूलियत के मंसूबे प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत तकरीबन 59 करोड़ खातेदार बैंकारी निजाम से मुंसलिक हो चुके हैं। इनमें 32 करोड़ से ज्यादा खवातीन खातेदार शामिल हैं। 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त राशन की फराहमी के जरिए उनकी गजाई सलामती यकीनी बनाई गई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ लोगों को हर साल 5 लाख रुपए तक की मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम कराई गई है। किसान सम्मान निधि और किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए खेती बाड़ी, डेयरी, मुर्गी परवरी, माही परवरी और शहद की मक्खियों की परवरिश जैसी सरगर्मियों से वाबस्ता किसान भाई बहनों को सहारा मिला है। दुनिया की तारीख इस बात की गवाह है कि सकाफती खुद एतमादी पर मबनी तरक्की तेज रफ्तार और पायदार होती है। आज मुल्क में ये शऊर मजबूत हो रहा है कि सकाफती फख्र का जज्बा मुल्क की खुद मुख्तारी को रूहानी ताकत अता करता है। हमारे आबाओ अजदाद ने इल्म और साइंस, फन और सकाफत, रूहानियत और आला अखलाक की अनमोल मीरास हमारे सुपुर्द की है। हम विरासत और तरक्की के इम्तिजाज के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे मुल्क में दुनिया का सबसे बड़ा और बेहतरीन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों और रेहड़ी पटरियों पर भी डिजिटल अदायगियां हो रही हैं। दुनिया में होने वाली निस्फ से ज्यादा रियल टाइम डिजिटल लेन देन भारत में हो रहे हैं। हमारे हम वतनों और हुकूमत ने मिलकर डिजिटल इनकलाब की एक मिसाल आलमी बिरादरी के सामने पेश की है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हुकूमत ने अवामी फलाह बहबूद की सहूलियात को शफाफ तरीके से हर फर्द तक पहुंचाया है। हमारे मुल्क में शाहराहों, आबी गुजरगाहों, रेलवे और फजाई रास्तों की शक्ल में जदीद बुनियादी ढांचे में गैर मामूली तौसी हुई है। इससे नए कारोबारी मंसूबों के लिए गुंजाइश पैदा हो रही है, नए रोजगार के मौके पैदा हो रहे हैं और सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। प्यारे हम वतनों,
دنیا کے متعدد خطوں میں جنگ اور عدم استحکام کے اثرات تمام ممالک پر پڑ رہے ہیں. ایسی صورتحال میں بھی ہمارے ملک کی معیشت دنیا کی سب سے تیز رفتار ترقی کرنے والی بڑی معیشت کے طور پر آگے بڑھ رہی ہے. اقتصادی اندازوں کے مطابق بھارت کی شرح نمو دنیا کی اوسط شرح نمو کے مقابلے میں 2 گنا سے بھی زیادہ رہے گی. آتم نربھر بھارت مہم سے ہماری اقتصادی ترقی اور قومی سلامتی کی بنیاد مزید مضبوط ہوئی ہے. جدید ترقی کی راہ پر آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی تحفظ کے شعبے میں بھی بھارت عالمی سطح پر نمایاں کردار ادا کر رہا ہے. پائیدار ترقی کے اہداف 2030 کے بعض مقاصد ہمارے ملک نے مقررہ وقت سے پہلے ہی حاصل کر لیے ہیں. قابل تجدید توانائی کی ترقی کو گزشتہ چند برسوں میں غیر معمولی رفتار حاصل ہوئی ہے. ہماری خارجہ پالیسی قومی مفاد پر مبنی ہے. امن، تعاون، مکالمہ اور وسودیو کٹمبکم کے اصول ہماری خارجہ پالیسی کے ستون ہیں. اقتصادی تعاون بڑھانے اور باہمی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ہم نے متعدد ممالک کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدے کیے ہیں. گلوبل ساؤتھ کے ممالک میں ہم قائدانہ کردار ادا کر رہے ہیں. عالمی سطح پر ہمارے ملک کا احترام بڑھا ہے. ہم قواعد پر مبنی بین الاقوامی نظام پر یقین رکھتے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ اقوام متحدہ سمیت کثیر جہتی اداروں میں عالمی برادری کی مناسب نمائندگی ہو. ہماری اس کوشش کو متعدد ممالک کی بھرپور حمایت حاصل ہو رہی ہے. پیارے ہم وطنوں، قدرتی وسائل پر ہماری آنے والی نسلوں کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا ہمارا ہے. ہمیں یہ یقینی بنانا ہے کہ ہمارے کسی بھی عمل سے آنے والی نسلوں کے ذریعے اس حق کے استعمال میں ذرہ برابر بھی کمی نہ ہو. ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ان کو اور بھی زیادہ مالا مال قدرتی وسائل فراہم کریں. ماحول کے تحفظ کے تئیں ہماری وابستگی ہماری روایت کا حصہ ہے. سنتالی زبان کے ایک سادہ سے گیت میں ہمیں ایک گہرا پیغام ملتا ہے. پنڈت رگھوناتھ مرمو کے تخلیق کردہ اس گیت کے چند الفاظ اس طرح ہیں: دارے گجوگ کان نیلتے میڑو چنے راگ بائیہ دایا ہایا گے گجوگ کان آبوا جاتی دھرم دارے چیداگ بابون راگ بائیہ آبو انا نیلتے. اس گیت میں ایک درخت کے پوری طرح سوکھ جانے پر غمزدہ ایک طوطے کا ذکر کرتے ہوئے شاعر کہہ رہے ہیں: اے میرے بھائیوں، مرتے ہوئے درخت کو دیکھ کر طوطا پرندہ دکھ بھری آواز میں رو رہا ہے. اے میرے بھائیوں، انسانی تہذیب کی مانند درخت کو تباہ ہوتے دیکھ کر ہم انسانی معاشرے کے لوگ آخر کیوں ماتم نہیں کر رہے ہیں؟ اس گیت کا پیغام یہ ہے کہ تمام انسانوں کو انسانی اقدار اور قدرت کے تحفظ کے لیے مستعد رہنا چاہیے. ایک ہرا بھرا درخت انسانی معاشرے کے اخلاقی اور صحت مند رہنے کی علامت ہے. ایک پیڑ ماں کے نام اور لائف سٹائل فار انوائرمنٹ یعنی لائف جیسی مہمات کے جذبے کے مطابق سبھی کو ماحول کے تحفظ کے لیے انفرادی اور اجتماعی کوشش کرنی چاہیے. میرے پیارے ہم وطنوں، مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ تعلیم کے میدان میں ہماری بیٹیاں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ زرعی پیداوار بڑھانے میں تعاون کرنے والی ڈرون دیدی سے لے کر فضائیہ میں فائٹر کامبیٹ لیڈر بننے تک مختلف شعبوں میں خواتین کی حصہ داری بڑھ رہی ہے. حال ہی میں گلاسگو میں منعقد ہوئے دولت مشترکہ کھیلوں میں بھارت کے مجموعی 13 طلائی تمغوں میں سے 8 طلائی تمغے ہماری بیٹیوں نے جیتے ہیں. خواتین کے اقتصادی خود انحصاری بڑھ رہی ہے. خود امدادی گروپوں کی 10 کروڑ سے زیادہ خواتین ارکان ہیں. 3 کروڑ خواتین کو لکھپتی دیدی بنانے کا ہدف مقرر کیا گیا تھا. یہ ہدف حاصل کیا جا چکا ہے. اب ہمارا ملک مزید 3 کروڑ خواتین کو نئی لکھپتی دیدی بنانے کے ہدف کی جانب آگے بڑھ رہا ہے. مدرا یوجنا کے تحت امداد حاصل کرنے والے کاروباری افراد میں تقریباً 2/3 مستفیدین خواتین ہیں. خواتین کی معاشی خود انحصاری کی کوششوں کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ مختلف شعبوں میں قیادت فراہم کر رہی ہیں.
इंतखाबात में खवातीन की बढ़ती हुई हिस्सेदारी हमारी जमहूरिया की एक नुमाया कामयाबी है। लोकसभा और रियासती असम्बलियों में खवातीन के लिए 33% नुमाइंदगी महफूज।

करने के लिए साल 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम मंजूर किया जा चुका है। इस कानून के मकसद को हासिल करने से खवातीन की क्यादत में इजाफा होगा और हमारी जमहूरियत मजीद शमूलियत वाली बनेगी। मुल्क की कुल आबादी में 65% लोगों की उम्र 35 साल से कम है। ये नौजवान आबादी हमारी सबसे कीमती दौलत है। हमारे मुल्क के नौजवान बासलाहियत, पुरअज़्म और हुनरमंद हैं। जमीनी सतह पर नौजवानों की जानिब से मुख्तलिफ मसाइल के इख्तराई और अमली हल देखकर मुझे मुआशरे और मुल्क के लिए उनकी वाबस्तगी का अंदाजा होता है। सिर्फ 28 साल की औसत उम्र रखने वाली एक नौजवान टीम ने हाल ही में रॉकेट को कामयाबी के साथ खला में रवाना करके खलाई तहकीक के एक नए मरहले का आगाज किया है। हमारे बहुत से नौजवान खुद रोजगार की राह इख्तियार करते हुए रोजगार फराहम करने के कल्चर को अपना रहे हैं। नौजवान कारोबारी अफराद की हिस्सेदारी से हमारे मुल्क में एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम तश्कील पाया है। दुनिया के बड़े बड़े कारोबारी इदारे भारत के नौजवानों की सलाहियत और लगन से मुतासिर रहते हैं और उन्हें क्यादत के ओहदों पर फाइज करते हैं। ऐसे नौजवानों ने आलमी बिरादरी में भारत की नौजवान ताकत की साख को मजीद मुस्तहकम किया है। हमारी नौजवान नस्ल भारत के सुनहरे मुस्तकबिल के तय मेरे यकीन को मजीद पुख्ता करती है। हमारे तलबा भारत के मुस्तकबिल के मेहमान हैं। जिस तरह कौमी सलामती के लिए हुकूमत और मुआशरे का मुत्तहिद रहना जरूरी है, उसी तरह तुलबा के हाल और मुस्तकबिल के तहफ्फुज़ के लिए भी सबकी मुश्तरका कोशिशें जरूरी हैं। अवामी इम्तहानात तुलबा के लिए मौके के दरवाजे खोलते हैं, इसीलिए हुकूमत इन इम्तहानात में इस्लाह के लिए वसी पैमाने पर इकदाम कर रही है। इन इस्लाहात का मकसद ये है कि अवामी इम्तहानात में गैर मुनासिब ज़राए के इस्तेमाल पर मुकम्मल तौर पर रोक लगाई जाए, इम्तहानी निज़ाम मजीद शफाफ हो और नौजवानों के लिए महफूज और काबिल एतमाद बने। हुकूमत की कोशिशों और नई मुआशी सरगर्मियों से नौजवानों के लिए मुख्तलिफ नौयत के नए मौके पैदा हो रहे हैं। ऐसे मौके के बारे में मालूमात हासिल करके हमारे नौजवान कामयाबी की नई राहें इख्तियार कर सकते हैं। हमारे नौजवानों की जिस्मानी और जहनी सेहत मुल्क के मुस्तकबिल की बुनियाद है। खानदान और मुआशरे की भी ये जिम्मेदारी है कि हमारे नौजवान जोश और जज्बे के साथ आगे बढ़ते रहें। खेलकूद को नौजवानों की तरक्की और कौम की तामीर के वसीले के तौर पर अपनाया जा रहा है। खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत मुकामी सतह से लेकर कौमी सतह तक मुल्क के तमाम खितों के लिए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम फराहम किया जा रहा है। खेलों को फरोग देने के लिए हुकूमत गैर मामूली सरमायाकारी कर रही है। इन कोशिशों के अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं। बैनुल अक्वामी खेलों के मुकाबलों में हमारे खिलाड़ी कारकर्दगी और कामयाबियों की नई बुलंदियों तक पहुंच रहे हैं। एक तरफ हमारे मुल्क में दुनिया की सबसे बड़ी नौजवान आबादी है तो दूसरी तरफ बुजुर्ग शहरियों की तादाद भी मुसलसल बढ़ रही है। हुकूमत ने बुजुर्ग शहरियों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मुतअद्दिद इकदाम किए हैं। 70 साल और इससे ज्यादा उम्र के तकरीबन 6 करोड़ बुजुर्ग शहरियों के लिए हर साल 5 लाख रूपये तक की मुफ्त तिब्बी सहूलियात दस्तियाब हैं। बुजुर्ग शहरियों के तहत अपनाइयत के जज्बे और उनकी इज्जत नफ्स को बरकरार रखने के लिए पूरे मुआशरे को हसास रहना चाहिए। प्यारे हमवतनों, सच्चाई और इंसाफ के हक में इंसानियत मुखालिफ ताकतों पर फतेह हासिल करने की हिंदुस्तानी रवायत पर हमें फख्र है। 26 जुलाई को हमने कारगिल विजय दिवस मनाया। इससे कबल 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के आगाज को 1 साल मुकम्मल होने पर हमने अपनी अफवाज की बेमिसाल बहादुरी को याद किया। दहशतगर्दी के खिलाफ वो तारीखी ऑपरेशन हिंदुस्तानी अफवाज की अचूक सलाहियत का सबूत है। दहशतगर्दों और उनके हामियों को ये सख्त पैगाम दिया गया कि वो चाहे कहीं भी जाकर छुप जाएं, लेकिन उन्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। दहशतगर्दी को तहफ्फुज़ देने वाले मुल्क के साथ माजी में की गई सिंधु आबी मुआहिदे को मुअत्तल करना हमारे मुल्क खासतौर पर किसानों के मफाद में एक फैसलाकुन कदम है।
कई दहाइयों से नक्सलिज्म मुल्क के लिए एक संगीन चैलेंज बना हुआ था। भारत को नक्सलिज्म से पाक बनाना

दुनिया के कई हिस्सों में जंग और अग्नि इस्तेहकाम के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली बड़ी मईशत है। 80वें योम आजादी के मौके पर आज शाम कौम से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भारतीय मईशत की शरह नमू औसत आलमी शरह नमू से दुगना से भी ज्यादा रहने की तवक्को है। सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत ने पायदार तरक्याती अहदाफ 2030 में से बाज अहदाफ मुकर्रा वक्त से पहले ही हासिल कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि कौमी मफाद भारत की खारजा पॉलिसी की बुनियाद है, जबकि अन्य ताउन मुजाकरात और वसुधैव कुटुंबकम का नजरिया भारत की खारजा पॉलिसी के सुतून है। उन्होंने कहा कि भारत ने इक्तिसादी ताउन बढ़ाने और बाहिमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए कई मुल्कों के साथ आजाद तजारती समझौते किए हैं। सदर जमहूरिया ने उजागर किया कि मुल्क को नक्सलिज्म से पाक बनाना एक बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा कि आज वो इलाके जो काफी नक्सलिज्म से मुतासिर थे वहां अब जोश और जज्बा नजर आ रहा है। अपने खिताब में मोहतरमा मुर्मू ने कहा कि तलबा भारत के मुस्तकबिल के मेहमान हैं और हर फर्द को अपने मुस्तकबिल की हिफाजत और उसे संवारने में अपना रोल अदा करना चाहिए। पब्लिक मसाबकते इम्तिहानात तलबा के लिए मौके के दरवाजे बन गए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि हुकूमत इन इम्तिहानात में इस्लाहात की खातिर जामे इकदाम कर रही है। इन इस्लाहात का मकसद पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों के इस्तेमाल को मुकम्मल तौर पर रोकना, इम्तिहान के निजाम को मजीद शफाफ महफूज और नौजवानों के लिए काबिल एतमाद बनाना है। माशरे के महरूम तबकात की फलाह बहबूद के बारे में सदर जमहूरिया ने कहा कि 25 करोड़ से ज्यादा अफराद को गुर्बत की सतह से निकाला गया है। उन्होंने मजीद कहा कि मुफ्त राशन के जरिए 80 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए खुराक की फराहमी को यकीनी बनाया गया है और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ लोगों को हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम की गई है। मुल्क के डिजिटल बुनियादी ढांचे के बारे में सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा और बेहतरीन डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार किया है और दुनिया भर में होने वाले बरवक्त डिजिटल लेनदेन नेस्फ से ज्यादा भारत में होते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तालीम के मैदान में लड़कियों की गैर मामूली कारकर्दगी पर भी खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा और रियासती कानून साज असम्बलियों में खवातीन के लिए 33% नुमाइंदगी मुख्तस करने की गरज से 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को मंजूर किया। उन्होंने कहा कि इस कानून के मकासद हासिल होने से क्यादत में खवातीन का रोल मजीद मजबूत होगा और हमारी जमहूरियत ज्यादा जामे बनेगी। खेलों के फरोग के बारे में सदर जमहूरिया ने कहा कि खेलों को नौजवानों की तरक्की और मुल्क की तामीर के एक वसीले के तौर पर अपनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया मुर्मू ने कहा कि मुल्क 2047 में आजादी की सदसाला तकरीब तक विकसित भारत की तामीर की जानी गामजन है। मोहतरमा मुर्मू ने कहा कि अंतोदिया के जज्बे से तहरीक हासिल करते हुए मुल्क का अज्म है कि तरक्की के सम्राट हर फर्द तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि आजादी की तहरीक की अजीम विरासत और उसके नजरियात को अपनाते हुए मुल्क जदीद तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि वेद का कौल वयम राष्ट्रीय जागरम हमतों को हमेशा मुल्क की खिदमत के लिए तैयार रहने की तरगीब देता है। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि सदर जमहूरिया ने यौमे आजादी के मौके पर मुल्क के नाम एक फिक्र अंगेज और हौसला बख्श खिताब पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आज़म ने कहा कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का खिताब मुल्क की ताकत और हर भारतीय की उमंगों की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि सदर जमहूरिया का पैगाम मुल्क के लोगों को विकसित भारत के लिए नए जज्बे और पुख्ता अज़म के साथ काम करने की तरगीब देता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने यौमे आजादी 2026 के मौके पर डिफेंस फोर्सेज और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज के अमले के लिए बहादुरी के 78 अवार्ड्स को मंजूरी दी है। 13 अवार्ड्स बाद अजमर्ग दिए जाएंगे। इनमें 9 कीर्ति चक्र, 1 बार 2 शौर्य चक्र, 19 शौर्य चक्र, 5 बार 2 सेना मेडल्स, 36 सेना मेडल शामिल हैं। कीर्ति चक्र के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल मैनुओ फ्रेंड पीएफ मेजर जितेंद्र राठी को नामजद किया है, जबकि हवलदार गजेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल जगबीर सिंह, बशीर अहमद, एसजी कांस्टेबल जसवंत सिंह, बलेंद्र सिंह, तारिक हुसैन और इंस्पेक्टर एसटीएफ सुनील कुमार को कीर्ति चक्र बाद अजमर्ग दिए जाएंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आईजीआरएमएस भोपाल जनूबी वस्ती जोन सकाफती मरकज और संगीत नाटक एकेडमी के कलाकारों के ग्रुप के साथ आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। सोशल मीडिया के पोस्ट में सदर जमहूरिया ने कहा कि इन कलाकारों के शाहकारों की कल राष्ट्रपति भवन में मुनक्दा यौमे आजादी के इस्तकबाली में नुमाइश की जाएगी।
پارسیوں کے سارے نو نوروز کے موقع پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو

स्टेट बैंक ईश्वर कॉलोनी नंगली डेरी नजफगढ़ से मैथिली कुमारी लड्डू कुमारी और टुक टुक, पटेल नगर मुलौट से डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गगनदीप जजोरिया, आरजू जजोरिया, अरविंद कुमार गुड़िया कुमारी, भव्य कुमारी, बिनी भट्टी मधुबनी बिहार से, जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार बल्लू निषाद, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतन माला सुरलकर, आरती कुमारी, पाकुड़ झारखंड से उद्धव कुमार भगत, किशुताशु मोदीचक, भागलपुर बिहार से दिलीप कुमार सोनी, सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके, शराबिया रामटेके।

Nada de lacanose são do Jesval, mas do Jesval ou Aman Jesval. ये फरमाइश हमें इरशाल की है कर्नाटक गुलबर्ग से मोहम्मद उर्दू मठा शब्बीर बरहट्टी और आसिफ इकबाल ने कृष्ण कॉलोनी हाथी से सुभाष योगी अजमिलानी बब्बू और डब्बू तो ये जमीन आप सबकी पसंद पे हुआ आप सबकी खिदमत में जमीन अपने छोटी बहन पर उनकी तफसीलात सुनेंगे बाबुल फिल्म का नगमा हम आपको सुनवाएंगे तलत महमूद शमशाद बेगम की आवाजों में बोलो कलमत के शकील बदायूं ने मौसीकी तरतीब दी है नौशाद ने फरमाइश अब सबकी हमें मौसूल हुई रमेश कामले गणेश कामले अकोला महाराष्ट्र से ये फरमाइश हमें इरशाद की है

मंसूरी, फिर मंसूरी, आमिना भी मंसूरी, पालदाना का इंदौर मध्य प्रदेश से, दिल्ली से चौंसीना बिया टेलर, सुमन सरिता, सूरत गुजरात से मैं बुंदी अयुब मुल्ला जी, याकूब मुल्ला जी, मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, आसमा अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी, बुढ़ाना वार्ड सिंह महाराष्ट्र से, अमोल मनकर, शुभदाई मनकर, श्लोक कुमार, अनार कली बाजार, जगनौर से पाठक, कमल पाठक, गव्य मल्होत्रा, मनमोहन राजावत कॉम्प्लेक्स देशवा के एमपी शाजापुर से, मनमोहन राजावत, राम मधु राजावत और राशि रक्षित। तो ये सामने अब सबकी पसंद, आप सबकी खिदमत में है।

अरे सवेरा प्रोग्राम में आपको सुनवाते हैं तीसरी मंजिल फिल्म का दो गाना, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। मजनू सुल्तानपुरी नगमा निगार राहुल देव बर्मन ने मौसीकी सजाया है और फरमाइश आप सबकी है।

0: के पोस्टमैन सदर जमुरिया ने कहा कि इन कलाकारों के शाहकारों की आज राष्ट्रपति भवन में मुनकदा योम आजादी के इस्तकबालिया में नुमाइश की जाएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि सदर जमुरिया ने योम आजादी के मौके पर मुल्क के नाम एक फिक्रंगेज और हौसला बख्श खिताब पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आज़म ने कहा कि सदर जमुरिया द्रौपदी मुर्मू का खिताब मुल्क की ताकत और हर भारतीय के उमंगों की अक्कासी करता है। योम आजादी के मौके पर दिल्ली मेट्रो के तमाम टर्मिनल स्टेशनों से खिदमत सुबह सवेरे 4 बजे शुरू हो जाएंगी ताकि योम आजादी की तकरीब में शिरकत करने के लिए खसूसी मेहमानों मदवीन और आम लोगों को आने जाने में सहूलत फराहम हो सके। सभी लाइनों पर मामूल के मुताबिक बाकायदा सर्विस शुरू होने के वक्त तक मेट्रो ट्रेनें 30-30 मिनट के वक्फे से चलेंगी। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर परमंडा ने अपने पिछले राउंड की शिकस्त के बाद शानदार वापसी करते हुए सिंक फील्ड कैप के चौथे राउंड में डच खिलाड़ी जॉर्डन वैन फॉरिस्ट के खिलाफ फैसला कुन कामयाबी हासिल की। इस जीत के बाद परमंडा के 4 मुकाबलों में 2.5 पॉइंट्स हुए हैं और वो 10 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल 9 राउंड के टूर्नामेंट में मुश्तरका तौर पर दूसरे मुकाम पर पहुंच गए हैं। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि दुनिया की गैर यकीनी की सूरत हाल में भारतीय मईशत तेजी के साथ तरक्की करती हुई अहम मईशत के तौर पर आगे बढ़ रही है। योम आजादी के मौके पर कौम से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अंत्योदय के जज्बे के साथ हर सब तक तरक्की के सम्राट को पहुंचाना मुल्क का अज्म है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के बहुत से हिस्सों से एहतजाज की खबरें मिली हैं। मुल्क आज अपना 80वां योम आजादी मनाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तारीखी लाल किले से तकरीबात की क़यादत करेंगे। दिफाई फोर्सेस और मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेस के अमले के लिए 78 बहादुरी के अवार्ड्स का ऐलान किया गया है। आलमी खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। निजामिन अब पेश है क्लासिकी मौसीकी। आइए अब चंद्रमा मजुमदार का सरोद पर बजाया राग भैरव और राग जौनपुरी सुनते हैं। तो सबसे पहले पेश है सरोद पर बजाया राग भैरव।

शमिन सरोद पर बजाया राग भैरव। भैरव आप सुन रहे थे चंद्र इमाम मजुमदार से। भाई अब क्लासिक मौसीकी प्रोग्राम के तहत सरोद पर बजाया राग जौनपुरी सुनते हैं चंद्रमा मजुमदार से।

सविन चंद्रिमा मजुमदार का सरोद पर बजाया राग जौनपुरी आप सुन रहे थे। इसके साथ ही क्लासिकी मौसीकी का प्रोग्राम अब खत्म होता है। यह आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। सविन पेश है सदाबहार फिल्मी नगमों का प्रोग्राम आखिर शब। एक बार फिर तमाम सामीन की खिदमत में अब्दुल्ला की जानिब से पुरखलूस आदाब।

इन 12 o'clock फिल्म का दो गाना आप सुन रहे थे, गीता दत्त मोहम्मद रफी की आवाजों में। आइए अब लता मंगेशकर और तलत महमूद को सुनते हैं, फिल्म है रूप की रानी चोरों का राजा।

रामिन हेमंत कुमार को सुन रहे थे आप, फिल्म अनुपमा। आइए अब बावरे नैन फिल्म का ये दो गाना, गीतरथ और मुकेश की आवाजों में।

0: مستمعين شنو مالك ساعات صدام عارفين من أول برنامج آخر شباب خط موتا هي كشواني أبسون رهي أردو سيرفيس كن شريات بعد أسكو 50 منت من خبرين نشر كي جينجي
1: ये आकाशवाणी है। अब आप अब्दुल हफीज से खबरें सुनिए। सर्वजमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि दुनिया की गैर यकीनी की सूरत हाल में भारतीय मईशत तेजी के साथ तरक्की करती हुई आम मईशत के तौर पर आगे बढ़ रही है। यौम आजादी के मौके पर कौम से खिताब करते हुए सर्वजमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अंत्योदय के जज्बे के साथ हर फर्द तक तरक्की के समरात को पहुंचाना मुल्क का अज़्म है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के बहुत से हिस्सों से एहतजाज की खबरें मिली हैं। मुल्क आज अपना 80वां यौम आजादी मनाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तारीखी लाल किले से तकरीबात की क्यादत करेंगे। दिफाई फोर्सेज और मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेज के अमले के लिए 78 बहादुरी के अवार्ड का ऐलान किया गया है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि दुनिया के कई हिस्सों में जंग और अदम इस्तेहकाम के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली बड़ी मईशत है। अस्सीवें यौम आजादी के मौके पर कल कौम से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भारतीय मईशत की शरह नमू औसत आलमी शरह नमू से दुगना से भी ज्यादा रहने की तवक्को है। सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत ने पायदार तरक्याती अहदाफ 2030 में से बाज़ अहदाफ मुकर्रर वक्त से पहले ही हासिल कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि कौमी मफाद भारत की खारजा पॉलिसी की बुनियाद है, जबकि अमन ताउन मुज़ाकरात और वसुधैव कुटुम्बकम का नजरिया भारत की खारजा पॉलिसी के सुतून है। उन्होंने कहा कि भारत ने इक्तिसादी ताउन बढ़ाने और बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए कई मुल्कों के साथ आजाद तजारती समझौते किए हैं। सदर जमहूरिया ने उजागर किया कि मुल्क को नक्सलिज्म से पाक बनाना एक बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा कि आज वो इलाके जो कभी नक्सलिज्म से मुतासिर थे, वहां अब जोश और जज्बा नजर आ रहा है। अपने खिताब में मोहतरमा मुर्मू ने कहा कि तलबा भारत के मुस्तकबिल के मेमार हैं और हर फर्द को अपने मुस्तकबिल की हिफाजत और उसे संवारने में अपना रोल अदा करना चाहिए। पब्लिक मुसाबिकती इम्तिहानात तलबा के लिए मौके के दरवाजे बन गए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि हुकूमत इन इम्तिहानात में इस्लाहात की खातिर जामे इकदामात कर रही है। इन इस्लाहात का मकसद पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों के इस्तेमाल को मुकम्मल तौर पर रोकना, इम्तिहान के निजाम को मजीद शफाफ महफूज और नौजवानों के लिए काबिल एतमाद बनाना है। माशरे के महरूम तबकात के फलाह बहबूद के बारे में सदर जमहूरिया ने कहा कि 25 करोड़ से ज्यादा अफराद को गुरबत की सतह से निकाला गया है। उन्होंने मजीद कहा कि मुफ्त राशन के जरिए 80 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए खुराक की फराहमी को यकीनी बनाया गया है और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ लोगों को हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम की गई है। मुल्क के डिजिटल बुनियादी ढांचे के बारे में सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा और बेहतरीन डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार किया है और दुनिया भर में होने वाले बरवक्त डिजिटल लेन देन निस्फ से ज्यादा भारत में होते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तालीम के मैदान में लड़कियों की गैर मामूली कारकर्दगी पर भी खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा और रियासती कानून साज असम्बलियों में खवातीन के लिए 33% नुमाइंदगी मुख्तस करने की गर्ज से 2023 में नारी शक्ति वंदम अधिनियम को मंजूर किया गया। उन्होंने कहा कि इस कानून के मकासद हासिल होने से क्यादत में खवातीन का रोल मजीद मजबूत होगा और हमारी जमहूरियत ज्यादा जामे बनेगी। खेलों के फरोग के बारे में सदर जमहूरिया ने कहा कि खेलों को नौजवानों की तरक्की और मुल्क की तामीर के एक वसीले के तौर पर अपनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मुल्क 2047 में आजादी की सरसाला तकरीब तक विकसित भारत की तामीर की जानिब गामजन है। मोहतरमा मुर्मू ने कहा कि अंत्योदय के जज्बे से तहरीक हासिल करते हुए मुल्क का अज़्म है कि तरक्की के सम्राट हर फर्द तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि आजादी की तहरीक की अजीम विरासत और उसके नजरियात को अपनाते हुए मुल्क जदीद तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि वेद का कौल व्यम राष्ट्र जग व्यम बहुमतों को हमेशा मुल्क की खिदमत के लिए तैयार रहने की तरगीब देता है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के बहुत से हिस्सों से एहतजाज की खबरें मिली हैं। मुजाहिरीन बुनियादी हकूक मुबैना हलाकतों के लिए एहतसाब और शहरी आजादी पर मुबैना पाबंदियों को खत्म करने का मुतालबा कर रहे हैं। पाकिस्तान के इस मकबूजा इलाके में जारी बदमनी के दौरान पाकिस्तानी फोर्सेज के जरिए तकरीबन 100 अफराद हलाक किए जा चुके हैं। इससे पहले सुदानतु के मकाम पर एहतजाजी धरना दिया गया। हजीरा मंडोल में तालिब इल्म और मकीन भी सड़कों पर निकल आए। हजारों अफराद ने मुजाहरे में शमूलियत की। वो अपने बुनियादी हकूक का मुतालबा कर रहे थे, नीज हुकाम से अपने मसायब को हल करने पर जोर दे रहे थे। एहतजाजियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से पाकिस्तानी फोर्सेज को हटाने का भी मुतालबा किया। बहुत से ममालिक में पाकिस्तानी एजेंसियों के जरिए सरकार की सरपरस्ती वाली दहशतगर्दी का पर्दाफाश करने की गरज से कश्मीरी कम्युनिटी के जरिए एहतजाज किए गए। ब्रसल्स में पाकिस्तानी सफारतखाने के बाहर एक मुजाहरा किया गया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मुल्क आज अपना 80वां यौम आजादी मनाने जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दिल्ली के तारीखी लाल किले से यौम आजादी की तकरीबात की आज क़यादत करेंगे। भारतीय फिजाइया के 2 MI-17 हेलीकॉप्टरों के जरिए तकरीब के मकाम पर फूल बरसाए जाएंगे। कौमी परचम फहराने के अमल को 21 तोपों की सलामी के साथ हम आहंग किया जाएगा। फूल बरसाए जाने के बाद वजीर आजम लाल किला की फसील से कौम से खिताब करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने यौम आजादी 2026 के मौके पर डिफेंस फोर्सेज और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज के अमले के लिए बहादुरी के 78 अवार्ड को मंजूरी दी है। 13 अवार्ड बाद अजमर्ग दिए जाएंगे। इनमें 9 कीर्ति चक्र, 1 बार्टू शौर्या चक्र, 19 शौर्या चक्र, 5 बार्टू सेना मेडल्स, 36 सेना मेडल्स शामिल हैं। कीर्ति चक्र के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल मनियो फ्रेंड्स PF मेजर जितेंद्र राठी को नामजद किया है, जबकि हवलदार गजेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल जगबीर सिंह, बशीर अहमद, एजी कांस्टेबल जसवंत सिंह, बलविंदर सिंह, तारिक हुसैन और इंस्पेक्टर STF सुनील कुमार को कीर्ति चक्र बाद अजमर्ग दिए जाएंगे। पारसियों के 9.5 नवरोज के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत और बनने मुल्क रहने वाली पारसी बिरादरी के तमाम अफराद को मुबारकबाद दी है और उन्हें ख्वाहिशात का इजहार किया है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि नवरोज नई शुरुआत और नई उम्मीद की अलामत है। सदर जमहूरिया ने वाजे किया कि खुशी और हम आहंगी का ये त्यौहार हम सबको बकाए महमी और इंसानी अकदार की याद दहानी कराता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने IGRMS भोपाल जनूबी वस्ती जोन सकाफती मरकज और संगीत नाटक अकादमी के कलाकारों के ग्रुप के साथ कल राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। आज यौम आजादी के मौके पर दिल्ली मेट्रो के तमाम टर्मिनल स्टेशनों से खिदमत सुबह सवेरे 4 बजे शुरू हो जाएंगी, ताकि यौम आजादी की तकरीब में शिरकत करने के लिए खसूसी मेहमानों, मदोइन और आम लोगों को आने जाने में सहूलत फराहम की जा सके। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर परमानंदा ने अपने पिछले राउंड की शिकस्त के बाद शानदार वापसी करते हुए सिंक फील्ड कप के 4th राउंड में डच खिलाड़ी जॉर्डन वेन फॉरेस्ट के खिलाफ फैसलाकुन कामयाबी हासिल की। इस जीत के बाद परमानंदा के 4 मुकाबलों में 2.5 पॉइंट्स हो गए हैं और वो 10 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल 9 राउंड के टूर्नामेंट में मुश्तरका तौर पर दूसरे मुकाम पर पहुंच गए हैं। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि दुनिया की गैर यकीनी की सूरत हाल में भारतीय मईशत तेजी के साथ तरक्की करती हुई अहम मईशत के तौर पर आगे बढ़ रही है। यौम आजादी के मौके पर कौम से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा, अंत्योदय के जज्बे के साथ हर फर्द तक तरक्की के सम्राट को पहुंचाना मुल्क का अज़्म है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के बहुत से हिस्सों से एहतजाज की खबरें मिल रही हैं। मुल्क आज अपना 80वां यौम आजादी मनाएगा। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी तारीखी लाल किले से तकरीबात की क़यादत करेंगे। इस मौके पर पूरे मुल्क की निगाहें वहां पर मरकूज होंगी। दिफाई फोर्सेस और मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेस के अमले के लिए 78 बहादुरी के अवार्ड्स का ऐलान किया गया है। उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
0: ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस के शुरुआत। सामिन सबका एक बजे चाहता है। उर्दू सर्विस की आज की तीसरी मजलिस की शुरुआत अब इख्तिताम को पहुंचती है। कल सुबह 9:30 पर पहली मजलिस की नशरियात लेकर फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और एक बार फिर तमाम सामईन को योम आजादी बहुत बहुत मुबारक। जय हिंद, जय
2: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिसकर्मियों की कर्तव्य निष्ठा तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष रूप से प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक देशों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है, ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
3: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
2: राष्ट्रपति ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके आदर्शों के आधार पर ही वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
3: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
2: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता में मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता की शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देश को प्रेरणादायक और प्रभावशाली संदेश दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के संबोधन में युवाओं की उम्मीदों, महिलाओं की शक्ति और योगदान तथा देश की आर्थिक प्रगति का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश हर नागरिक से राष्ट्र निर्माण में पूरे समर्पण से योगदान का आह्वान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला की प्राचीर पर ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवा की घोषणा की है। सेवा सवेरे 4 बजे से शुरू होगी। यात्री जामा मस्जिद, लाल किला और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशनों पर उतरकर लाल किला तक पहुंच सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्षों में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया। जल शक्ति मंत्रालय ने केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित परिवारों को मुआवजा और पुनर्वास नहीं मिलने के आरोपों को गलत और भ्रामक बताया। मंत्रालय ने कहा कि ज्यादातर पात्र परिवारों को पूरा मुआवजा और पुनर्वास लाभ मिल चुका है, जबकि कुछ मामलों में केवल प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताएं बाकी हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत केन नदी का अतिरिक्त पानी बेतवा नदी में पहुंचाया जाएगा। इससे बुंदेलखंड में सिंचाई, पेयजल और बिजली की सुविधा बढ़ेगी। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने नई दिल्ली में कौशल विकास पर भारत जापान हितधारक परामर्श का आयोजन किया। इस विचार विमर्श का उद्देश्य दोनों देशों के बीच कौशल विकास सहयोग और कार्यबल की आवाजाही बढ़ाना है। परामर्श के दौरान मुख्य रूप से भारत जापान मानव संसाधन आदान प्रदान और सहयोग कार्य योजना को आगे बढ़ाने पर विचार हुआ। जापान में रोजगार अवसरों के लिए भारतीय युवाओं को तैयार करने और दोनों देशों की संस्थाओं के बीच निकटतम समन्वय पर भी विचार हुआ। भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे से होगा। भारतीय टीम अपना 600वां टेस्ट मैच खेलने उतरेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत बहार। नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक के इस कार्यक्रम में आइए सुने कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिसकर्मियों की कर्तव्य निष्ठा तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष रूप से प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है।
1: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर की तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
0: राष्ट्रपति ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके आदर्शों के आधार पर ही वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
1: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र और साधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता की शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देश को प्रेरणादायक और प्रभावशाली संदेश दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के संबोधन में युवाओं की उम्मीदों, महिलाओं की शक्ति और योगदान तथा देश की आर्थिक प्रगति का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश हर नागरिक से राष्ट्र निर्माण में पूरे समर्पण से योगदान का आह्वान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला की प्राचीर पर ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवा की घोषणा की है। सेवा सवेरे 4 बजे से शुरू होगी। यात्री जामा मस्जिद, लाल किला और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशनों पर उतरकर लाल किला तक पहुंच सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी मौलिक अधिकारों, कथित हत्याओं के लिए जवाबदेही और नागरिक स्वतंत्रता पर लगाए गए कथित प्रतिबंधों को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। क्षेत्र में जारी अशांति के दौरान पाकिस्तानी सेना ने 100 लोगों की हत्या कर दी है। प्रदर्शनकारियों ने अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने पहले के प्रदर्शनों में मारे गए लोगों के लिए जवाबदेही की भी मांग की। उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर से पाकिस्तानी सेना की वापसी की भी मांग की। सर्वोच्च न्यायालय ने कल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और मंत्री पी नारायण के खिलाफ अमरावती विकास योजना में कथित अनियमितताओं से संबंधित आपराधिक मामलों को रद्द करने के आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले में आपराधिक कार्यवाही एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी के कहने पर शुरू की गई थी और कोई भी किसान शिकायत लेकर आगे नहीं आया। पीठ ने कहा कि राजनीतिक लड़ाइयां अदालतों में नहीं लड़ी जानी चाहिए। भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज गॉल स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार 10 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम अपना 600वां टेस्ट मैच खेलने उतरेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। President Draupadi Murmu has said that Indian economy is the fastest growing major economy despite warfare and instability prevailing in several parts of the world. Addressing the nation on the eve of the 80th Independence Day yesterday, the President highlighted that the growth rate of the Indian economy is expected to be more than twice the average global growth rate.
1: Even in such trying circumstances, our economy is moving ahead as the fastest growing major economy in the world. According to economic projections, the growth rate of the Indian economy is expected to be more than twice the average of global growth rate. Atmanirbhar Bharat Abhiyan has further strengthened the foundation of our economic progress and national security.
2: President Draupadi Murmu highlighted that making the country Naxal-free is a major achievement as for decades, Naxalism posed a serious challenge to the nation. She said, yesterday the areas once affected by Naxalism are filled with enthusiasm.
1: For decades, Naxalism posed a serious challenge to the nation. Making India Naxal-free is a major achievement. Today, enthusiasm prevails in the areas once affected by Naxalism. All-inclusive development is underway in these regions. A large number of players took part in the Bostar Olympics and many artists showcased their talent in Bostar Pandum, which were enjoyed by a large number of people.
2: The President said the students are the architects of India's future and emphasized that the government is undertaking comprehensive steps to reform public examinations.
1: Everyone must contribute through joint and concerted efforts to safeguard the present and future of our students. Public examinations become gateways to the opportunities for our students. The government is undertaking comprehensive steps to reform these examinations. The objectives of these reforms are to completely curb the use of unfair means in public examinations, make the examination system more transparent, more secure, and more trustworthy for the youth.
2: Speaking about the country's young population, the President said 65% of the country's population is below the age of 35, which is the most valuable asset. She said many of our youth are embracing the culture of job creation as they pursue the path of self-employment. President Murmu said India is moving ahead towards building a Viksit Bharat by the centenary year of independence in 2047. Vice President C.P. Radhakrishnan has said that the President has given a powerful and inspiring message on the eve of Independence Day, reflecting the aspirations of a confident, growing and vibrant India. In a social media post, Mr. Radhakrishnan said that the President's address offered a broad vision of a stronger and more prosperous nation by touching

0: और इसी गीत के साथ इस कार्यक्रम से मुझे यानी तरन्नुम जहां को दीजिए इजाजत। अब समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष रूप से प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है, ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
2: वैश्विक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
1: राष्ट्रपति ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके आदर्शों के आधार पर ही वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
2: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता की शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देश को प्रेरणादायक और प्रभावशाली संदेश दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के संबोधन में युवाओं की उम्मीदों, महिलाओं की शक्ति और योगदान तथा देश की आर्थिक प्रगति का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश हर नागरिक से राष्ट्र निर्माण में पूरे समर्पण से योगदान करने का आह्वान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 80वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला की प्राचीर पर ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। स्वतंत्रता दिवस से पहले देशभर में हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया गया। देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और तिरंगे के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने के लिए रैलियां, जागरूकता कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किए गए। इस कार्यक्रम को अपार जन समर्थन मिला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी मौलिक अधिकारों, हत्याओं के लिए जवाबदेही और नागरिक स्वतंत्रता पर लगाए गए प्रतिबंधों को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। क्षेत्र में जारी अशांति के दौरान पाकिस्तानी सेना ने 100 लोगों की हत्या कर दी है। प्रदर्शनकारियों ने पहले के प्रदर्शनों में मारे गए लोगों के लिए जवाबदेही की भी मांग की। उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से पाकिस्तानी सेना की वापसी की भी मांग की। सरकार ने टीवी चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने का फैसला किया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि यह फैसला केवल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना जारी होने के बाद लागू होगा। मंत्रालय के अनुसार टीवी प्रसारण में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि के नियमों की समीक्षा की गई है। वर्ष 2006 में जब यह सीमा लागू की गई थी तब देश में 65 टीवी चैनल थे, अब इनकी संख्या 900 से ज्यादा हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में डिजिटल बदलाव के बाद दर्शकों के पास अब चैनलों के ज्यादा विकल्प उपलब्ध हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित परिवारों को मुआवजा पुनर्वास नहीं मिलने के आरोपों को गलत और भ्रामक बताया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। President Draupadi Murmu has said that Indian economy is the fastest growing major economy despite warfare and instability prevailing in several parts of the world. Addressing the nation on the eve of the 80th Independence Day yesterday, the President highlighted that the growth rate of the Indian economy is expected to be more than twice the average global growth rate.
4: In such trying circumstances, our economy is moving ahead as the fastest growing major economy in the world. According to economic projections, the growth rate of the Indian economy is expected to be more than twice the average of global growth rate. Atmanirbhar Bharat Abhiyan has further strengthened the foundation of our economic progress and national security.
3: President Draupadi Murmu highlighted that making the country Naxal-free is a major achievement, as for decades, Naxalism posed a serious challenge to the nation. She said, yesterday the areas once affected by Naxalism are filled with enthusiasm.
4: For decades, Naxalism posed a serious challenge to the nation. Making India Naxal-free is a major achievement. Today, enthusiasm prevails in the areas once affected by Naxalism. All-inclusive development is underway in these regions. A large number of players took part in the Bostar Olympics and many artists showcased their talent in Bostar Pandum, which were enjoyed by a large number of people.
3: The President said that the students are the architects of India's future and emphasized that the government is undertaking comprehensive steps to reform public examinations.
4: Everyone must contribute through joint and concerted efforts to safeguard the present and future of our students. Public examinations become gateways to the opportunities for our students. The government is undertaking comprehensive steps to reform these examinations. The objectives of these reforms are to completely curb the use of unfair means in public examinations, make the examination system more transparent, more secure, and more trustworthy.
3: Speaking about the country's young population, the President said 65% of the country's population is below the age of 35, which is the most valuable asset. She said many of our youth are embracing the culture of job creation as they pursue the path of self-employment. President Murmu said India is moving ahead towards building a Viksit Bharat by the centenary year of independence in 2047. Vice President C.P. Radhakrishnan has said that the President has given a powerful and inspiring message on the eve of Independence Day, reflecting the aspirations of a confident, growing and vibrant India. In a social media post, Mr. Radhakrishnan said that the President's address offered a broad vision of a stronger and more prosperous nation by touching upon the hopes of youth, strength and contribution of women and the country's economic progress. The Vice President said that the President's words served as a call to every citizen to contribute wholeheartedly to nation building. The nation will celebrate its 80th Independence Day today, with Prime Minister Narendra Modi leading the celebrations from the iconic Red Fort in Delhi. As part of the celebrations, two Mi-17 helicopters of the Indian Air Force will shower flower petals at the venue. The unfurling of the national flag will be synchronized with the 21 gun salute. Following the showering of flower petals, Prime Minister Narendra Modi will address the nation from the ramparts of the Red Fort. Services of the Delhi Metro will commence from all terminal stations across its network at 4 a.m. today on Independence Day to facilitate the movement of special guests, invitees and the general public. The services will operate at a 30-minute frequency on all lines until the commencement of regular revenue service.

0: come into effect from the date of notification of the amendment in the Cable Television Network Rules 1994. And that is the end of this news bulletin.
1: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। समय हुआ है रात्रि के 3:10 और ये समय है कार्यक्रम गजलों और गीतों का, जिसमें आज आपके साथ मैं हूं मनोज। श्रोताओं आइए शुरुआत करते हैं पंकज उदास साहब की इस प्यारी सी गजल के साथ।

श्रोताओं, जगजीत सिंह साहब गजलों की दुनिया में वो जाना माना नाम है जिनके बिना गजलें आज भी अधूरी मानी जाती हैं। हालांकि आज वो हमारे बीच में मौजूद नहीं है, लेकिन अपनी गजलों और यादों के जरिए वो हमेशा हमारे जहन में मौजूद रहेंगे। आइए सुनते हैं उन्हीं की आवाज में उनकी ये मशहूर गजल।

श्रोताओं, गजलों की दुनिया में गजल गायिका चित्रा सिंह का भी एक अलग ही मुकाम है। आइए सुनते हैं उनकी प्यारी सी आवाज में ये गजल।

0: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। सुबह के 4 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के 4:20 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 24वीं तिथि, तदनुसार 15 अगस्त सन 2026। सुबह के चार बजकर चौवन मिनट और 7 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से थोड़ी देर में ठीक 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 5:05 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार। 5:10 पर समय होगा कार्यक्रम आओ योग करें का। आओ योग करें कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे योग, उज्जायी प्राणायाम और वृक्षासन। 5:20 पर आप सुन सकते हैं देशभक्ति गीत। 5:30 पर समय होगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी का। सुबह ठीक 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार। 6:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 6:40 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम चिंतन और 6:45 पर आप सुनेंगे रामचरितमानस। रामचरितमानस में आज आप सुनेंगे अयोध्या कांड का भाग 18। 6:55 पर आप संस्कृत समाचार सुन सकेंगे। सुबह 7 बजे से 9 बजे का समय होगा स्वतंत्रता दिवस 2026 समारोह का। और सुबह 8 बजे आप सुनेंगे हिंदी समाचार। 8:15 पर आप अंग्रेजी समाचार सुन सकते हैं। 8:30 पर आप उर्दू समाचार सुनेंगे। सुबह 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका। 9:15 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम धरती आकाश। सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक और 10 बजे आप सुन सकते हैं हिंदी समाचार। 10:05 पर आप अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे और 10:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के 5 बजने वाले हैं। अब समाचार होंगे।

प्रथमे सर्वत खालसा जी की अरदास है जी। सर्वत खालसा जी को वाहे गुरु।

पावन पवित्र स्थान सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास पुल चौक माफ करनी सच्चे पातशाह जीओ जिना जिना गुरमुखा प्रेमिया वलों कड़ाह प्रसाद भेट

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।